मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948, वैशाख मास की 25वीं तिथि। तदनुसार 15 मई सन 2026 इस समय प्रातः के 5:56 और 42 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण आरंभ हो

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ तथा न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुबह के 6 बजने को है। प्रस्तुत है समाचार।

आपके साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज

0: प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एनडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। कल शाम धर्मशाला में मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर जीत हासिल की। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं संवेद सुर में गाए इस देश गान के साथ।

शक्ति का दूसरा रूप है देवी माँ, आदिशक्ति परम कल्याणकारी, परम भगवती पर ब्रह्म है माँ। अज्ञानता व अंधकार रूपी राक्षसों से रक्षा करने वाली हैं, कल्याणकारी हैं देवी माँ।

ईश्वर की सच्चे मन से की गई भक्ति हमारी आत्मा को न सिर्फ शांति देती है बल्कि हमें हर पल दुष्टों से पापों से रक्षण। ईश्वर की सच्चे मन से की गई भक्ति हमारी आत्मा को न सिर्फ शांति देती है बल्कि हमें हर पल दुष्टों से पापों से रक्षण भी करती है। सच्चे मन से किया गया ईश्वर सुमिरन हमें सुख शांति और सन्मार्ग का

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। स्वर थे पंडित भीमसेन जोशी, अनूप जलोटा और चित्रा सिंह के। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 6:25 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के विचार।
1: आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने शहर छोड़कर गांव में वास किया, क्योंकि उनका मानना था कि भारत माता ग्रामवासिनी है। मैं अपनी पैतृक भूमि का कर्ज अदा करने की भावना से यहां आया हूं। ग्रामवासियों के बीच काम करने का अलग ही आनंद है। वो कहते हैं कि साहित्य का काम जनता से जुड़ने पर आगे बढ़ता है। तभी तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी एक युग निर्माता साहित्यकार थे। आधुनिक हिंदी साहित्य को समृद्ध एवं प्रभावशाली बनाने का श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है। कवियों को नवीन काव्य चेतना से अनुप्राणित निश्चित दिशा प्रदान करने में द्विवेदी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। द्विवेदी जी ने अपनी साहित्य साधना का शुभारंभ सन 1903 में किया था। भारतेंदु युग के पश्चात हिंदी साहित्य में जिस नवीन युग का आविर्भाव हुआ उसे द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है, जो कि संवत 1950 से लेकर संवत 1975 तक का समय माना गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व में राष्ट्रीयता एवं देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। द्विवेदी जी की लेखनी में तत्कालीन अंग्रेजी शासन के प्रति आक्रोश, विद्रोह की भावना एवं भारतीय जनता को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रेरित करने वाला क्रांतिकारी स्वर सुनाई देता है, जिसको न निज देश का निज जाति का अभिमान है, वो नर नहीं नर पशु निरा जीवित मृतक समान है। महावीर प्रसाद द्विवेदी समाज का सर्वांगीण उत्थान चाहते थे। द्विवेदी जी के चिंतन में व्यापक धार्मिक भावना देखने को मिलती है। द्विवेदी जी के नेतृत्व में जातिता एवं धर्म आडंबर के विरुद्ध अभियान चलाकर मानव धर्म

0: को प्रोत्साहित किया गया। स्त्रियों को भी पुरुषों के बराबर समान अधिकार दिए जाने की बात सोचे जाने लगी। इस प्रकार परंपरागत धर्म का स्थान मानव प्रेम ने ले लिया। मानवतावाद के आदर्श के कारण शोषित, पीड़ित, दलित एवं दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति प्रकट होने लगी। द्विवेदी जी का विश्वास था कि ईश्वर प्राप्ति मानव प्रेम से ही संभव है और इस प्रकार ईश्वर प्रेम मानव प्रेम में या विश्व प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा। द्विवेदी जी द्वारा अवतारवाद का खंडन करते हुए रामायण नामक निबंध में राम को एक साधारण मानव के रूप में चित्रित किया गया है। उनके अनुसार वाल्मीकि का संदेश नर से नारायण का है, नारायण से नर का नहीं। समाज को आदर्श स्वरूप प्रदान कराने में नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रामायण नामक निबंध में द्विवेदी जी ने राम सीता के दाम्पत्य प्रेम, पुत्र का पिता की आज्ञा का पालन, भाई का भाई के लिए आत्म त्याग, पत्नी के प्रति पति की निष्ठा, राजा का प्रजा के प्रति कर्तव्य आदि सामाजिक मूल्यों को प्रतिष्ठित कर वर्तमान समाज में हो रहे मूल्य संक्रमण को रोकने का सत प्रयास किया गया और उच्च आदर्श स्थापित करने की भरसक कोशिश की गई। हिंदी पत्रकारिता में द्विवेदी जी ने विषय वस्तु के साथ साथ भाव, भाषा एवं अभिव्यक्ति को नई दिशा प्रदान की थी। विषय वस्तु की दृष्टि से उन्होंने भारतीय नारी की शिक्षा, स्वाभिमान, अस्मिता आदि समस्याओं को पत्रकारिता के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया था। द्विवेदी जी ने कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता को प्रकाशित कर रचनाकारों का ध्यान उर्मिला जैसी उपेक्षित नारी जाति के प्रति केंद्रित कराया। इसके बाद उपेक्षित नारियों से संबंधित साहित्य का सृजन अधिकाधिक होने लगा। द्विवेदी जी के अनुसार श्रृंगारिक सृजन से समाज का उत्थान नहीं हो सकता। इस प्रकार साहित्य सृजन में श्रृंगार के स्थान पर भक्ति रस की प्रधानता परिलक्षित होने लगी। द्विवेदी जी की रचनाओं का अभिप्रेत लोक सेवा, लोक रक्षा, कर्तव्य, त्याग, नेतृत्व, संगठन, उन्नयन आदि हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य रूपी वाटिका के ऐसे पुष्प हैं जिसकी सुगंध से सारा उपवन महक उठता है। द्विवेदी जी समाज एवं संस्कृति के क्षेत्र में अपने वैचारिक योगदान की दृष्टि से नव चेतना के संवाहक के रूप में अवतरित हुए थे। उन्होंने हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करके लोगों के हृदय में हिंदी के प्रति प्रेम जागृत किया। द्विवेदी जी का चिंतन सदैव हिंदी साहित्य को नवीन ऊर्जा एवं प्रेरणा प्रदान करता रहेगा।
1: कार्यक्रम चिंतन में अभी आप सुन रहे थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के विचार। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से कुछ ही देर में अर्थात सुबह 6:35 पर सुनिएगा वाणी जयराम के स्वर में श्री रामचरित मानस गान। खेती की बातें कार्यक्रम में सुबह 6:45 पर डॉक्टर यूडी गुप्ता की वार्ता प्रसारित की जाएगी। शीर्षक है डेयरी व्यवसाय हेतु पशुओं का चयन। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुबह 7:10 पर जानकारी दी जाएगी। दाद, खाज, खुजली, कारण और उपचार पर विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर रूपक सक्सेना। सुबह 9:25 का समय है कार्यक्रम गांधी चर्चा का। अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर केंद्रित है हमारा आज का कार्यक्रम। आज के कलाकार जिसे प्रसारित किया जाएगा दिन में 11 बजे। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर केंद्रित है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। विषय है संस्कारों की पाठशाला है परिवार। समय दिन में 11:30। दोपहर 1:15 पर घन संसार कार्यक्रम में चर्चा का विषय है हमारा परिवार हमारा संबल। मेरी पहचान में आज बात होगी दीपा मलिक पर। फैशन ब्यूटी चटपटी रेसिपी के साथ सुनेगा वर्षा।

अग्रवाल से काव्य पाठ। दोपहर 1:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आनंद लीजिए का गजलों का गायक कलाकार हैं भूमिका यादव और दोपहर 3 नश्र किया जाएगा उर्दू कार्यक्रम अंजुमन। सायकालीन सभा में शाम 5:30 पर युववाणी कार्यक्रम में चर्चा का विषय है परमाणु शस्त्रों का अप्रसार एनपीटी। वैज्ञानिकी में बात होगी प्रोजेक्ट नेत्र पर, नई पहल में बात होगी जननी प्लेटफॉर्म पर, साथ ही सुनिएगा साक्षी गुप्ता की वार्ता। शीर्षक है समाज की सबसे मूल्यवान संस्था है परिवार। शाम 6 ग्रामलोक कार्यक्रम में चर्चा होगी पशुओं में टीकाकरण के महत्व पर, बात होगी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर, लोकगीत मौसम की जानकारी व मंडी भाव के साथ प्रसारित की जाएगी भेंट वार्ता। समय शाम 6:00 है।

शाम 6:30 पर मजदूर मंडल कार्यक्रम में चर्चा का विषय है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। आज का प्रश्न, सेहत टिप्स ज्ञान सागर आज की पाती व फिल्म संगीत के साथ सुनिएगा विनोद कुमार गोयल की वार्ता, जिसका शीर्षक है कानूनी वार्ता न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। विविध कार्यक्रम में शाम 7:10 पर आकर्षण का केंद्र है विकास शुक्ला का काव्य पाठ। फिल्मों से कव्वालियों का कार्यक्रम नश्य किया जाएगा शाम 8:00। शीर्षक महफिली कव्वाली। करंट अफेयर्स, ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा रात्रि 9:30 पर। पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम रजनीकंदा सुनिएगा रात्रि 10:00 और रात्रि 10:30 पर सुनिएगा शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में ख्याल गायन, गायक कलाकार होंगी शुभ्रा तलिकावकर। तो ये था हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान, गायक कलाकार हैं वाणी जयराम।

श्री रामचरित मानस की रचना प्रक्रिया में गोस्वामी तुलसीदास ने मानस रूपी एक अद्भुत रूपक की कल्पना की है। कहते हैं, जिनके पास श्रद्धा का पाथेय नहीं है और ना ही जिन्हें संत जनों का साथ प्राप्त है, जिनके हृदय में भगवत प्रीति नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए ये मानस सर्वथा अगम्य अप्राप्य है। यदि कोई कष्ट उठाकर इस सरोवर तक पहुंच भी जाए तो उसे अज्ञान का ज्वर धर दबाता है, जिसके कारण वो इस पवित्र सरोवर में स्नान से वंचित रह जाता है। जो इससे वंचित रहा, जिसने कभी इसके पवित्र जल का पान नहीं किया, वो सरोवर की निंदा के अतिरिक्त और क्या कर सकता है। लेकिन जिन पर प्रभु की अनुकंपा है, उन्हें यह व्याधि नहीं छू पाती। वे दैहिक, दैविक तथा भौतिक तापों में भी नहीं जलते। इस पवित्र

पवित्र सरोवर से राम कथा रूपी कविता निकली है। इस कविता रूपी नदी में प्रभु का यश रूपी जल प्रवाहित होता है। इस कीर्ति नदी का नाम है सरयू, जो सबके लिए सर्वदा मंगलकारिणी है। वेदमत और लोकमत इसके दो किनारे हैं।

0: वाणी जयराम के सुर में अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। संगीत सतीश भाटिया का था। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर यूडी गुप्ता की वार्ता। शीर्षक है डेयरी व्यवसाय हेतु पशुओं का चयन।
1: किसान भाइयों, दूध की बढ़ती कीमतों एवं मांग के कारण आम आदमी का रुझान डेयरी पशुओं को व्यवसाय का रूप देने की तरफ गया है। लंबे समय तक पशुपालन कृषि के सह व्यवसाय के रूप में पनपता रहा है, किंतु पिछले कुछ वर्षों से इसे अलग से व्यवसाय का रूप मिलना शुरू हुआ है। डेयरी व्यवसाय की सफलता के लिए पशुओं के चुनाव पर ध्यान देना आवश्यक है। आमतौर पर एक एकड़ भूमि पर एक गाय या भैंस रखी जाती है, परंतु यदि भूमि उपजाऊ है तो यह संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। संख्या के निर्धारित करने के उपरांत पशुओं की किस्म जैसे भैंस, देसी गाय या संकर गाय के विषय में निश्चय करना भी आवश्यक है। यदि हरा चारा व दाना भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो तो ऐसी स्थिति में संकर गाय को रखना बेहतर रहता है। यदि हरा चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ना हो और सिर्फ भूसे या पुआल पर ही पशु रखने हों तो ऐसी स्थिति में देसी गाय या भैंस का रखना ही ठीक रहता है। किस्म के चुनाव के बाद नस्ल का चयन भी आवश्यक है। बेहतर तो यही है कि फार्म पर एक ही नस्ल के पशु रखे जाएं। एक से अधिक नस्ल के पशु रखे जाने पर पशुओं की कीमत कम मिलती है। नस्ल का चुनाव उसकी उपलब्धता, लोकप्रियता एवं कीमत पर निर्भर करता है। उत्तरी भारत में भैंस की मुर्रा, नीली रावी तथा भदावरी आदि नस्लें, गाय की साहीवाल, हरियाणा थारपारकर, राठी, मेवाती आदि नस्लें तथा संकर गायों की जर्सी, होलिस्टीन फ्रीजियन तथा ब्राउन स्विस से उत्पन्न गायें आसानी से मिल जाती हैं। ये पशु बड़े बड़े डेयरी फार्मों जैसे इज्जतनगर, पंतनगर, करनाल, हिसार तथा लुधियाना आदि से प्राप्त किए जा सकते हैं। दुधारू पशु खरीदते समय पशु में मुख्य गुण जो देखे जा सकते हैं वो हैं, दुधारू पशु का स्वभाव सीधा हो, अत्यधिक सुस्त, तेज व भड़कीले पशु कम दूध देते हैं, पशु का पिछला धड़ भारी तथा अगला धड़ हल्का हो, गर्दन पतली, मस्तक चौड़ा, आंखें तेज, नथुने बड़े, कमर सीधी, पुट्ठे चौड़े एवं समतल, छाती का घेरा बड़ा,

0: आयन बड़ा तथा आगे पीछे की ओर फैला हुआ, थन मध्यम एवं समान आकार वाले तथा दुग्ध सिराएं सुविकसित हों। पशु की टांगें छोटी व मजबूत हों। पशु की ऊंचाई कम तथा लंबाई अधिक से अधिक हो। दुधारू पशु को सामने ऊपर तथा बगल से देखने पर उसकी आकृति त्रिकोणात्मक दिखाई दे। सामने से देखने पर कुंवड़ के पीछे का हिस्सा तथा कंधे के पीछे त्रिकोण बनता हो। यह त्रिकोण जितना बड़ा होगा पशु की छाती उतनी ही चौड़ी होगी। छाती चौड़ी होने पर हृदय तथा फेफड़े को पर्याप्त जगह मिल जाती है। ऐसे पशु अधिक शक्तिशाली तथा उत्पादनशील होते हैं। ऊपर से देखने पर कुंवड़ के ठीक पीछे के हिस्से तथा हुक बोन के बीच एक त्रिकोण बनता है। यह त्रिकोण जितना बड़ा होगा पशु की श्रेणी गुहा उतनी ही बड़ी होगी। श्रेणी गुहा में पशु के जननांग बड़े होंगे तथा ऐसा पशु अधिक प्रजननशील होगा। इन लक्षणों के अतिरिक्त पशु की पतली मुलायम व चिकनी त्वचा, क्रियाशील कान तथा चारा देखते ही उस पर झपटना उसके निरोगी होने के मुख्य लक्षण हैं। पशु खरीदते समय कुछ बीमारी के कीटाणु पशुओं में मौजूद रहते हैं, परंतु उनमें बीमारी के लक्षण न उभरने के कारण वे अन्य पशुओं में भी संक्रामक बीमारी फैला देते हैं। अतः पशु कितना भी स्वस्थ एवं निरोग लगे उसे कम से कम 15 दिन तक अन्य पशुओं से अलग ही रखा जाए। यदि विदेशी नस्ल के पशुओं को फार्म पर रखना हो तो उन्हें देसी नस्ल के पशुओं से अलग रखना चाहिए। साथ ही विदेशी नस्ल के पशुओं के रखरखाव में कुछ विशेष सावधानियां रखी जानी चाहिए, जैसे कि ये पशु आसानी से बीमारियां जो कि हमारे देश में प्रचलित हैं उनको आसानी से पकड़ लेते हैं, अतः इन्हें अन्य पशुओं से अलग रखना ही बेहतर रहता है। साथ ही कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि इन विदेशी नस्ल के पशुओं से हमारे देसी नस्ल के पशुओं में भी आ सकती हैं, अतः इनको अलग अलग रखने से देसी नस्ल के पशुओं में इन बीमारियों को फैलने से बचाया जा सकता है। विदेशी नस्ल के पशु अधिकतर ठंडी जलवायु के होते हैं, अतः विशेषकर गर्मी के मौसम में इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि उन्हें नियमित रूप से नहलाया जाए जिससे कि गर्मी का उन पर बुरा प्रभाव न पड़े। कीमती पशु खरीदने के पश्चात पशुपालकों को उनका बीमा अवश्य कराना चाहिए। आजकल बीमा की सुविधाएं हर जगह उपलब्ध हैं, अतः किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर भी पशुपालकों का मनोबल नहीं टूटता। यदि फार्म पर अच्छी नस्ल के पशु रखने हों तो फार्म पंजीकृत करा लेना चाहिए। पंजीकृत फार्म के पशुओं की कीमत अधिक होती है तथा सरकार से ऐसे फार्मों को प्रजनन व उत्पादन संबंधी नीति निर्धारण में भी सहायता दी जाती है।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वार्ता, डेयरी व्यवसाय हेतु पशुओं का चयन। वार्ताकार थे डॉक्टर यू डी गुप्ता।

0: दब्बर क्षेत्रे भव्य ऐतिहासिक मेलायाः सज्जता कृता वर्तते। केन्द्रसर्वकारेण सुवर्णस्य आयातस्य कृते 100 किलोग्राम परिमितस्य सीमायाः निर्धारणं कृतमस्ति। अग्रिम प्राधिकरण योजनायाः अन्तर्गतं आभूषण निर्यातकाः शून्य शुल्केन असंस्कृत वस्तूनां अथवा निवेश सामग्रीणां आयातं कर्तुं शक्नुवन्ति। आईपीएल इति 20-30 क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ मुंबई इंडियंस दलेन पंजाब किंग्स दलं 6 पराजितम्। अद्य सायं 7:30 लखनऊ सुपर जायंट्स दलं लखनऊ नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा, सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
2: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टुपर्थी में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। श्री राजनाथ सिंह अनकापल्ली जिले के टी सिरसापल्ली गांव में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की नई अत्याधुनिक नौसेना प्रणाली निर्माण सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी

0: अनिल धीरूभाई अंबानी एडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों में तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम मंजूरी योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिन में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल में भी हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुंग गोंगा को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलो और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। ताउलो जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट का मिश्रण है। इसमें प्रतियोगियों को उनके मूवमेंट के आधार पर अंक दिए जाते हैं। आईपीएल क्रिकेट में प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा और मुंबई इंडियंस ने कल पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल एम्बार्क ऑन अ 6-डे विजिट टू यूएई, द नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे एंड इटली टुडे। ऑन द फर्स्ट लेग ऑफ हिज 5 नेशन विजिट, मिस्टर मोदी विल रीच यूएई टुडे, वेयर ही विल मीट प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान। The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. They will also discuss ways to advance the bilateral comprehensive strategic partnership, underpinned by strong political, cultural, economic and people-to-people links. Energy security is expected to remain a central theme of the engagement. On the occasion of the Prime Minister's 8th visit to the Emirates, Indian Ambassador to the UAE, Deepak Mittal, said, The visit of the Prime Minister is highly opportune, coming at a time when the region is witnessing unprecedented developments and challenges.
2: UAE has emerged as a very close trade partner, as a third largest trade partner for India. Our bilateral trade has crossed $100 billion after we have signed Comprehensive Economic Partnership Agreement in 2022. The visit of the Prime Minister is very opportune, happening at a time when the region is going through some unprecedented times. The Prime Minister has been in touch with the UAE leadership, so this is a moment when it will help and enable to express our solidarity.
1: Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi, the Prime Minister said that BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS Foreign Ministers meeting, which is underway in New Delhi. The government has imposed a limit of 100 kgs on gold imports under the Advance Authorization Scheme, which allows jewellery exporters to import raw or input materials at zero duty. In a public notice, the Director General of Foreign Trade said, Advance authorization for import of gold shall be issued subject to a maximum remissible quantity of 100 kgs. The Director General added that any subsequent advance authorization for the import of

0: gold shall be considered for issuance only upon fulfillment of at least 50% of the export obligation. Earlier, there was no limit on gold imports under the scheme. European Union has included India in the revised draft list for continued export of aquaculture products to the EU market. The Ministry of Commerce and Industry said that the earlier regulation had not included India among third countries authorized to export products of animal origin intended for human consumption to the EU from September 2026. The revised draft list follows compliance measures undertaken by India in line with the European Commission delegated regulation. The ministry said that India's proposed inclusion is a major positive development for the country's seafood export sector. The European Union is one of the key destinations for Indian seafood exports. In Uttar Pradesh, 111 people have died and 200 injured in the last 36 hours due to rain, storm and lightning. Chief Minister Yogi Adityanath directed the DMs and relevant officials to immediately conduct a survey on the spot. He also asked them to update the status of compensation every 3 hours. The worst hit areas included Prayagraj, Bhadohi, Mirzapur, Fatehpur and Varanasi. Enforcement Directorate ED has arrested Kolkata Police Deputy Commissioner Shantanu Sinha Biswas for running an extortion syndicate. ED had been questioning Shantanu at the CGO complex in Kolkata since yesterday morning. The CBI has conducted searches at 7 premises across Mumbai, Gurugram and Bengaluru in connection with a case registered against Reliance Communications Limited, one of the ADA group companies. According to a statement, searches were conducted at the residential premises of the then CEO, CFO and directors of the company who served during the period 2015-17. Indian Wushu player Aparna Dahiya clinched a gold in the women's 52kg category at the 11th Sander World Cup in Macau yesterday. Aparna beat reigning world champion Thi Phuong Yago of Vietnam in straight sets in the final. This was India's first gold in the event, which began on May 12. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 7:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर रूपक सक्सेना की वार्ता। शीर्षक है दांत खाज खुजली कारण और उपचार।
2: आज मैं आपके सामने दांत खाज खुजली के बचाव एवं उपचार के विषय में अपने विचार लिखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते होंगे, दांत या सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस गर्म एवं उमस वाले मौसम में ज्यादा पनपते हैं। जब हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता किसी वजह से कमजोर होती है या हमारी हाइजीन पुअर होती है, जैसे कि नित्य स्नान न करना या अपने खान पान में पौष्टिक आहार को सम्मिलित ना करना, तब ये इन्फेक्शन हमें जल्दी पकड़ते हैं। ये सिर से लेकर पैर तक कहीं भी पनप सकते हैं। प्राय सिर में फंगल इन्फेक्शन 14 साल से कम आयु के बच्चों में अक्सर देखे जाते हैं। इसमें जहाँ पे ये फंगल इन्फेक्शन होते हैं, उस जगह बाल तक गायब होने लगते हैं। ऐसे ही जांघों का फंगल इन्फेक्शन, जिसे हम धोबीज इच कहते हैं, ये मर्दों में ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसे ही पैर का फंगल इन्फेक्शन उन लोगों में ज़्यादा मिलता है जो ज़्यादा देर तक जूते पहने होते हैं या जिनमें पैरों के उंगलियों के बीच में विशेष तौर से पसीना बहुत देर तक ठहरता है। इसलिए इसे हम एथलीट्स फुट भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें खिलाड़ियों में अक्सर ये देखने को मिलता है। अक्सर दांत में खुजली एक प्रमुख लक्षण होता है और ये बढ़ते समय एक गोलाकार का रूप ले लेता है। इसीलिए इस इन्फेक्शन को आम भाषा में हम रिंग वॉर्म इन्फेक्शन भी कहते हैं। जय यह शरीर के बहुत सारे हिस्से को प्रभावित करता हो या बहुत तेज़ी से जब फैलता है, तो यह डायबिटीज़ या मधुमेह एवं HIV इन्फेक्शन का संकेत देता है। अतः दांत से बचने के लिए हमें अपने खान पान के साथ साथ स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। इन सब बातों से हमारी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो है वह बढ़ती है। बदन पर गीला वस्त्र न धारण करना व बंद जगहों जैसे कि कांख, रागें व पैर की उंगलियों के बीच पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपका संभव हो तो अपने ऑफिस में कुछ देर के लिए अगर आप जूते मोजे उतार के बैठ जाएं, तो ये अच्छा होगा।

0: या मोज़े जो हैं कॉटन सॉक्स पहने, और हमेशा सूखे मोज़े पहने, कभी नमी ना हो। आजकल इन दांत के इलाज या सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन का इलाज अमूमन 6 से 8 हफ्तों में बड़े आराम से संभव है। पर हाँ, मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कभी भी केमिस्ट के द्वारा या झोला छाप डॉक्टरों के द्वारा इलाज ना लें, वरना ये और विकृत हो जाता है। हमेशा एक विशेषज्ञ से ही सलाह लें। ऐसे ही सूखी खाद या स्केबीज भी पुअर हाइजीनिक कंडीशंस, जहाँ पे ओवरक्राउडिंग हो, एक बंद कमरे में या छोटे सी जगह में कई सारे रोग रहते हैं, ऐसे कंडीशंस में ये स्केबीज बहुत कॉमन है। इसका भी मुख्य लक्षण अत्यंत खुजली होना, विशेष तौर पर सोते समय। ये चूंकि एक छूत की बीमारी है, अतः ये परिवार के और सदस्यों को भी प्रभावित करती है। इसका भी इलाज एक विशेषज्ञ द्वारा सुचारू रूप से संभव है। तो मैं अंत में एक बार ये बात को फिर दोहराना चाहूँगा कि कभी भी किसी भी अवस्था में जब भी दाद, खाज या खुजली हो, तो केमिस्ट या झोला छाप डॉक्टरों द्वारा कभी भी इलाज न लें, क्योंकि जब आप इनके द्वारा जब कोई भी दवा लेते हैं तो इसमें अक्सर स्टीरॉयड नामक औषधि होती है, जो आपके मूल जो रूप है उस बीमारी के स्वरूप को भी बदल देती है। इससे बात इसको ठीक करने में और परेशानी होती है, आपका खर्चा भी बढ़ता है, समय भी बढ़ता है, और कभी कभी विशेषज्ञ को भी इसको ठीक करने के लिए काफ़ी जूझना पड़ता है। तो इसलिए हमेशा जब भी ऐसी कंडीशन हो, जब भी आपको दाद, खाज या खुजली आपको परेशान करे, तो एक विशेषज्ञ के द्वारा ही इसका उपचार के लिए प्रयास करें।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रूपक सक्सेना की वार्ता। शीर्षक था दांत खाज खुजली, कारण और उपचार।

0: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 106.1 मीटर पर। सुबह के 7:18 हुए हैं। हमारा अगला अनुप्रसारण लखनऊ की आकाशवाणी केंद्र से किया जाएगा, जिसमें कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: संकल्प ये ले कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। आपदा में जान गंवाने वाले 111 लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेगी प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को प्रभावित परिवारों तक अविलंब सहायता पहुंचाने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री ने ईंधन की बचत के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और सार्वजनिक परिवहन को अपनाने की अपील की, कहा संकट के समय देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। गाजियाबाद में NDRF के राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, 7 क्षेत्रीय रिस्पांस सेंटर का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और प्रदेश में आज से शुष्क रहेगा मौसम, लू चलने का येलो अलर्ट भी जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में तेज आंधी तूफान, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं से हुई जनधन की हानि को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित लोगों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और हर जरूरतमंद तक त्वरित सहायता पहुंचाई जाएगी। उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित परिवारों तक अविलंब राहत सहायता पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री ने आपदा में जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजनों को अनुमन्य 4-4 लाख रुपए की राहत राशि तत्काल वितरित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त पशु हानि से प्रभावित लोगों को भी नियमानुसार सहायता प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने राहत आयुक्त कार्यालय के कंट्रोल रूम को 24 घंटे सक्रिय रखते हुए राहत एवं सहायता कार्यों की निरंतर निगरानी करने के निर्देश भी दिए हैं। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार प्रदेश के 26 जनपदों में खराब मौसम के कारण आंधी तूफान, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें 111 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 72 लोग घायल हुए हैं। सबसे अधिक जन हानि प्रयागराज में हुई है, जहां 21 लोगों की मृत्यु हुई।
5: इसके बाद मिर्जापुर में 19, संत रविदास नगर में 16 और फतेहपुर में 11 लोगों की जान गई है। समाचार कैसे।

0: और
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से ईंधन की बचत की अपील के क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ईंधन की बचत के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और कार पुलिंग के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी व्यवस्थाओं को अपनाने का आह्वान किया है। लखनऊ में एक निजी मीडिया संस्थान के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट के समय देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। हर नागरिक का दायित्व है कि वह राष्ट्र के साथ खड़ा होकर अपना योगदान दे।
0: अगर आपके घर से ऑफिस जाने के लिए या अपने प्रतिष्ठान में जाने के लिए वह सुविधा है, हम उसका उपयोग करें, तो ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी बनता है कि हम इस कार्य को करते हैं, तो यह भी हमारी राष्ट्र के प्रति हमारा एक योगदान होगा कि संकट के समय हम भी इस आह्वान के साथ जुड़ करके देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 7,700 से अधिक गो आश्रय स्थलों में संरक्षित 15 लाख से अधिक गोवंश के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस प्लांट आधारित सामूहिक किचन मॉडल विकसित करने पर विशेष जोर दिया ताकि एलपीजी पर निर्भरता कम हो सके। इस बीच देश के कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर एक वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन बचत की अपील और प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल का असर दिखने लगा है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से प्रभावित होकर लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर राधाकृष्ण धीमन अपने आवास से कार्यालय तक साइकिल चलाकर पहुंचे। वहीं अयोध्या नगर निगम ने फैसला लिया कि अब सप्ताह में प्रत्येक सोमवार को महापौर, पार्षद और अधिकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग के जरिए नगर निगम कार्यालय पहुंचेंगे। इस बीच कानपुर के छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने भी सार्वजनिक परिवहन और ई वाहनों के उपयोग किए जाने और विश्वविद्यालय की बैठकों को अधिक से अधिक ऑनलाइन आयोजित करने का निर्देश दिया है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने भी परिषद की संसदीय समितियों के पूर्व निर्धारित भ्रमण के समस्त कार्यक्रमों को अगले आदेशों तक स्थगित कर दिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल कहा कि घरेलू एलपीजी की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
3: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल गाजियाबाद स्थित 8वीं NDRF बटालियन में राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान अपने संबोधन में गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से न केवल जोखिम को न्यूनतम करने के लिए कार्य किया गया बल्कि प्राकृतिक आपदा को कम करके उससे निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि NDRF ने बीते 2 दशक के कम समय में ही देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है।
4: देश भर में कहीं पर भी जाते हैं, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, इस घोष वाक्य के साथ काम करते हुए NDRF के जवानों के प्रति न केवल समग्र देश, जहां जहां दुनिया में गए वहां आपने प्यार भी अर्जित किया है और लोगों का भरोसा भी अर्जित।
1: कार्यक्रम के दौरान गृहमंत्री ने वीर जवानों को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने

0: छह रीजनल रिस्पांस सेंटर का ई शिलान्यास और एक रीजनल रिस्पांस सेंटर का ई लोकार्पण भी किया। प्रदेश में स्वदेशी दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आगरा में कल स्वर्णिम दुग्धामृत संवाद समागम थीम पर डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि निराश्रित गोवंश सरकार की प्राथमिकता है।
1: निराश्रित गोवंश से भी सरकार की प्राथमिकता है और इसके उत्तर प्रदेश में हम सभी गौशालाओं को संरक्षित और सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। दुग्ध उत्पादन उत्तर प्रदेश में देश में उत्तर प्रदेश नंबर वन है और भारत का हिस्सा उत्तर प्रदेश में दूध का सबसे अच्छा है। हम दुग्ध महोत्सव के माध्यम से पशुपालकों को दुग्ध संपत्तियों को मजबूत करते हुए महीने के अंदर ही हम दुग्ध उत्पादकों का भुगतान कराने का काम करेंगे और ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिसमें दुग्ध उत्पादन की बढ़ोतरी हो।
0: मौसम विभाग ने आज से 18 मई तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। विभाग ने इस अवधि में दिन के समय कहीं कहीं लू चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही अगले एक सप्ताह के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की जबकि न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। आपदा में जान गंवाने वाले 111 लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेगी प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को प्रभावित परिवारों तक अविलंब सहायता पहुंचाने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री ने ईंधन की बचत के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और सार्वजनिक परिवहन को अपनाने की अपील की। कहा, संकट के समय देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। गाजियाबाद में एनडीआरएफ के राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 7 क्षेत्रीय रिस्पांस सेंटर का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और प्रदेश में आज से शुष्क रहेगा मौसम, लू चलने का येलो अलर्ट भी जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
4: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम जिसमें हम आसपास की गतिविधियों पर आधारित आपको सूचना पर कार्यक्रम सुनवाते हैं। आसपास आसपास कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत है। EKYC न कराने पर 1.25 लाख घरेलू गैस कनेक्शन बंद। मैसेज भेजने के बाद भी घरेलू गैस कनेक्शन का अपने ग्राहक को जानो अर्थात KYC न करवाने पर जिले के 1.25

2-5 लाख उपभोक्ताओं के कनेक्शन बंद हो गए हैं। ई केवाईसी करवाने के बाद ही उनके कनेक्शन चालू होंगे। मैसेज मिलने के बाद भी ई केवाईसी करवाना अनिवार्य है और ये कार्य घर बैठे भी हो सकता है। इसके बाद भी उपभोक्ताओं द्वारा ध्यान न दिए जाने के कारण ये कठोर कदम उठाए गए हैं।

अटलपुरम टाउनशिप में अवशेष 462 आवासीय भूखंडों की बुकिंग का शुभारंभ गुरुवार को मंडलायुक्त द्वारा किया गया। टाउनशिप के फेज 1, 2 व 3 में सेक्टर 1 से 8 तक अवशेष आवासीय भूखंडों के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जून तक किए जा सकेंगे। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के जनहित पोर्टल https://jnhit.upda.in और ADA की वेबसाइट www.adaagraorg.in पर पंजीकरण कराया जा सकेगा। आपको बता दें कि ग्वालियर रोड पर ककुआ व भांडई में विकसित की जा रही टाउनशिप अटलपुरम के लिए ADA ने 8 अगस्त से बुकिंग शुरू कर दी थी। यहां के 1430 आवासीय भूखंडों में से 968 का आवंटन लॉटरी पद्धति से किया जा चुका है।

सीबीएसई की 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा शुक्रवार से शुरू होगी। परीक्षा एक ही शिफ्ट में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगी। ये परीक्षाएं 21 मई तक चलेंगी। बोर्ड ने परीक्षा के सुचारू संचालन को निर्देश जारी कर दिए हैं। परीक्षा में विद्यार्थियों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य है।

कुछ और सूचनाएं हमारे छात्रों के लिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से विदेशी छात्र भी अब पीएचडी कर सकेंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने पीएचडी के लिए आवेदन को दोबारा खोल दिया है। पीएचडी की 1400 सीटों के लिए 20 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। विश्वविद्यालय को 5000 आवेदन प्राप्त हुए थे। अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने 15 से 20 मई तक आवेदन दोबारा खोल दिए हैं। विश्वविद्यालय में पीएचडी की 1400 सीटें हैं। 12 मार्च से 20 अप्रैल तक पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए। परास्नातक कर चुके अभ्यर्थियों के साथ ही विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों के शिक्षक, जेआरएफ, एमफिल उपाधिधारक और गेट उत्तीर्ण भी आवेदन किए गए हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने स्नातक और परास्नातक स्तर की सेमेस्टर परीक्षाओं में दूसरी बार बदलाव किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रतियोगी परीक्षा वाले दिन की परीक्षा की तिथि घोषित कर दी थी। ऐसे में अब 17 मई और 20 मई की परीक्षा की तिथि दूसरी बार बदली गई है। विश्वविद्यालय ने परीक्षा में बदलाव किया था। इसके बाद 17 मई को स्नातक परास्नातक की तीनों पालियों में परीक्षाएं होनी थी। इसी दिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सहायक अध्यापक परीक्षा 2025 है। ऐसे में अब 17 मई की परीक्षा 22 मई को होगी। 20 मई 2026 को होने वाली बीकॉम द्वितीय सेमेस्टर के कार्यक्रम में भी बदलाव कर दिए गए हैं। अब ये परीक्षा 23 मई को आयोजित की जाएगी। ये बदलाव सीए फाउंडेशन परीक्षा के कारण किए गए हैं।

27 स्टेशन बनेंगे। इनमें 20 स्टेशन एलिवेटेड और 7 भूमिगत होंगे। अभी तक 6 स्टेशनों पर मेट्रो का संचालन हो रहा है। इसमें 3 भूमिगत और 3 एलिवेटेड स्टेशन है। मेट्रो के सभी स्टेशनों के पास पार्किंग स्थल विकसित किया जाएगा। 19 पार्किंग स्थल को चिन्हित किया जा रहा है। पार्किंग स्थल की भूमि नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा मेट्रो ट्रैक बनाया जा रहा है और जून के अंतिम सप्ताह में बिजलीघर चौराहे से लेकर ISBT स्टेशन तक 6 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर मेट्रो का संचालन शुरू होगा। 1.5 साल पूर्व बिजलीघर चौराहे से TDI मॉल फतेहाबाद रोड तक मेट्रो चलाना शुरू हुई थी और आपको बता दें कि हर दिन इसमें हजारों यात्री सफर कर रहे हैं। सूचनाओं का सिलसिला श्रोताओं हम आगे भी जारी रखेंगे। सफर में आइए सुनते हैं ये मधुर भक्ति गीत।

आसपास कार्यक्रम में श्रोताओं आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में अब 17 मई तक करें आवेदन। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। अब अभ्यर्थी 17 मई तक आवेदन कर सकेंगे।

राज्य की सबसे लंबी गंगा एक्सप्रेस वे पर अब निःशुल्क सफर की सुविधा बंद हो गई है। अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा गुरुवार की रात 12 बजे से एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स वसूलने का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं एक्सप्रेस वे के 129 किलोमीटर के हिस्से का निर्माण कराने वाली कंपनी ने शुक्रवार रात्रि 12 बजे से टोल टैक्स वसूलना शुरू करने की प्रक्रिया पर मोहर लगा दी है।

और आइए अब नजर डालते हैं मौसम से संबंधित सूचनाओं पर। मई के महीने में बदले मौसम के मिजाज से ताज नगरी के लोगों को गर्मी से बड़ी राहत थी। पारा 40 डिग्री से नीचे था। ऐसे में स्कूली बच्चों से लेकर कामकाजी लोग दोपहर में सफर कर रहे थे, लेकिन अब फिर से मौसम बदलेगा। कल यानी शनिवार से गर्मी पसीने छुड़ा देगी। मौसम विभाग ने शनिवार से 20 मई तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इसमें दिन का पारा 46 डिग्री के पार जा सकता है। मई का महीना है, गर्मी अपनी रंग तो दिखाएगी, मगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें श्रोताओं अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच घर से बाहर जाने से बचें। घर के बाहर निकलते समय छाता का उपयोग करें। सिर को टोपी या गमछे से अच्छी तरह से ढककर रखें। हमेशा हल्के रंग के ढीले पूरे शरीर को ढकने वाले सूती कपड़े ही पहनें। धूप का चश्मा लगाएं और बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करें। हल्का खाएं और अधिक पानी वाले फल जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी का सेवन अधिक से अधिक करें। बासी खाना खाने से बचें और मादक पदार्थों का सेवन न करें। शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखने के लिए शिकंजी, छाछ, जूस इत्यादि का सेवन कर सकते हैं।

आपको बता दें कि आरडीएसएस के तहत 33 केवी सीमरा लाइन में लॉन्ग स्पैन में न्यू पोल लगाने का काम चल रहा है। शुक्रवार से 20 मई तक ये कार्य जारी रहेगा। इसके चलते इन दिनों में सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिजली बाधित रहेगी। सीमरा और नहर्रा उपकेंद्र से पोषित उपभोक्ताओं की सप्लाई प्रभावित होगी। ये जानकारी उपकेंद्र के अवर अभियंता द्वारा दी गई है।

वहीं शहर के आधे हिस्से में आज शाम पानी की किल्लत रहेगी। जीवनी मंडी वाटर बॉक्स से जुड़े आधे शहर के लोगों को 15 मई की शाम को पानी की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। जल कल विभाग शुक्रवार को मुख्यालय स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर फ्लो मीटर बदलने और 8 वीटी प्लांट पर ट्रांसफर बदलने का काम करेगा। इस तकनीकी कार्य के चलते शाम को जलापूर्ति पर असर पड़ेगा। कुछ सूचनाएं रेलवे से। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए उधना हजरत निजामुद्दीन उधना स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है। पीआरओ ने बताया कि ट्रेन उधना से 22 मई को और हजरत निजामुद्दीन से 24 मई रविवार को चलेगी। ट्रेन उधना से शुक्रवार 22 मई को शाम 6 बजे चलकर शनिवार को शाम 7:25 पर आगरा कैंट और रात्रि 12:15 पर हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए मैसूर जंक्शन हजरत निजामुद्दीन मैसूर जंक्शन स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है। ट्रेन मैसूर जंक्शन से 21 मई गुरुवार को सुबह 4 बजे चलकर 22 मई की देर रात्रि 12:30 पर आगरा कैंट और सुबह 5:45 पर हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचेगी। हजरत निजामुद्दीन से 25 मई को रात 9 बजे चलकर देर रात 12:25 पर यह ट्रेन आगरा कैंट पहुंचेगी।

रेलवे ने बताया कि सुविधारगंज बांद्रा टर्मिनस सुविधारगंज से 13 जुलाई तक प्रत्येक सोमवार को और बांद्रा टर्मिनस से 14 जुलाई तक प्रत्येक मंगलवार को संचालित की जाएगी। वहीं आपको बताने कि मई में कई ट्रेनें बदले हुए मार्ग से चल रही हैं। उत्तर रेलवे में मेगा ब्लॉक के कारण ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। पीआरओ ने बताया कि गांधीधाम भागलपुर स्पेशल, भागलपुर गांधीधाम स्पेशल, गोरखपुर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, बनारस अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस और डिब्रूगढ़ अहमदाबाद मलहौर, ऐशबाग और मानकनगर होकर संचालित की जाएगी। वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने दो स्पेशल ट्रेनों के फेरों में वृद्धि की है। पीआरओ के अनुसार कानपुर सेंट्रल मदुरई स्पेशल ट्रेन 1 अप्रैल से 27 मई तक और मदुरई से 3 अप्रैल से 29 मई तक चलेगी। वहीं आगरा कैंट असरवा स्पेशल ट्रेन भी संशोधित दिनों में संचालित की जाएंगी। वहीं बायोमेट्रिक से सत्यापन के बाद ही विवाह का पंजीकरण हो सकेगा। विवाह पंजीकरण में अब वर वधु और उनके गवाहों की पहचान बायोमेट्रिक आधार पर सत्यापन के बाद ही होगी। सभी उप निबंधक कार्यालयों में ये लागू कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन के समय भी आधार सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। वहीं एक और महत्वपूर्ण जानकारी श्रोताओं, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में अब आयु प्रमाण के रूप में आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। प्रभावी जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि आवेदन के लिए परिवार या कुटुंब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति अथवा जन्मतिथि अंकित शैक्षिक प्रमाण पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे।

वहीं आरटीयू ने अगले एक सप्ताह तक सन्नाटा पसरने वाला है। तकनीकी खराबी और सर्वर डाउन होने के कारण विभाग ने अगले 7 दिनों तक कामकाज पूरी तरह बंद करने का नोटिस चस्पा कर दिया है। इस फैसले के बाद दूर दराज से अपने काम के लिए आए हजारों लोग आरटीयू परिसर में निराश होकर लौट रहे हैं।

0: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज़ और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
1: आसपास कार्यक्रम में श्रोताओं, आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब नजर डालते हैं गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित सूचनाओं पर। पहली सूचना के अनुसार रीना पत्नी सुनील कुमार निवासी कनकपुर थाना करहल जनपद मैनपुरी, इनकी उम्र 30 वर्ष है और ये दिनांक 9 अप्रैल सन 2026 से लापता है। कद 5 फुट 6 इंच, रंग सांवला, चेहरा सामान्य, गुमशुदगी के दौरान ये हरे रंग की साड़ी पहने हुए थी। इनसे संबंधित कोई भी सूचना मिलने पर थाना करहल जनपद मैनपुरी पर सूचित करें। अन्य सूचना के अनुसार पूनम पत्नी अनार सिंह निवासी जसतपुर थाना भोगांव जनपद मैनपुरी, इनकी उम्र 26 वर्ष है, ये दिनांक 9 अप्रैल सन 2026 से लापता है। कद 5 फुट 3 इंच, रंग गोरा, चेहरा सामान्य, गुमशुदगी के दौरान ये गुलाबी रंग की साड़ी व पैरों में सादा चप्पल पहने हुए थे। इनसे संबंधित सूचना मिलने पर थाना भोगांव जनपद मैनपुरी पर सूचित करें। अंतिम सूचना के अनुसार सुंदरी पुत्री रणवीर सिंह निवासी राजपुर कला थाना कुर्रा जनपद मैनपुरी, इनकी उम्र 35 वर्ष है और ये दिनांक 14 अप्रैल सन 2026 से लापता है। कद 4 फुट 5 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा सामान्य है, गुमशुदगी के दौरान ये पैंट व टी शर्ट पहने हुए थी। इनसे संबंधित कोई भी सूचना मिलने पर थाना कुर्रा जनपद मैनपुरी पर सूचित करें। और इसी के साथ ही गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं यहीं पर संपन्न होती हैं, मगर जारी है मनोरंजन का सफर और आइए सुनते हैं ये मधुर गीत।

इस मधुर गीत के साथ ही श्रोताओं कार्यक्रम आसपास यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 8 बज चुके हैं। अगला अन्य प्रसारण दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र से किया जाएगा, जिसमें समय है समाचार प्रभात का।

0: सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूएई के सॉवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं। साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से एलएनजी तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा तक, इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के

0: लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
1: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा,

0: वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
1: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंह उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.68 रुपए और डीजल 93.14 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रुपए और डीजल 95.13 रुपए प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रुपए और डीजल का मूल्य 95.35 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
2: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ विश्वजीत पुद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित आपराधिक गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं, जिनमें सोना पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं।

0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीएस समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी द्वारा हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरलम में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नए यूडीएफ मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए मंत्रालय के सदस्यों को लेकर चर्चा जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: वीडी सतीशन सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूडीएफ सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी। वहीं नए मंत्रियों और उनके विभागों को लेकर यूडीएफ के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में 10 दिन तक चली लगातार बैठकों और विचार विमर्श के बाद लिया गया। कांग्रेस और यूडीएफ के अन्य सहयोगी दल कल तक नई मंत्रिपरिषद को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एस पुल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडवम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
2: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। वे यहाँ कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रन।
0: महाराष्ट्र के सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महाआवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट पीएम डिवाइन के तहत भालेंडुगा में स्काई वॉक परियोजना और गंगटोक के आर्किडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलू और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
3: फरत चुनाव आयुक्तों के

0: नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में मंत्री क्यों, तटस्थ हो तीसरा सदस्य। जनसत्ता के शब्द हैं ये, बहुमत की तानाशाही, चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया, अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी एसआईआर। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए, सरकारी दफ्तरों का समय बदला, 2 दिन घर से काम, हिन्दुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है। नव भारत टाइम्स ने सीयूईटी यूजी में सुधार लाने पर लेख प्रकाशित किया है, अपने संपादकीय पन्ने पर पत्र लिखता है, एग्जाम पैटर्न में लगातार बदलाव और दूर सेंटर होने की वजह से परेशानी में स्टूडेंट्स, एनटीए का बोझ हट बांटा जाए। वहीं राजस्थान पत्रिका ने आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक शोध प्रकाशित किया है, पत्र लिखता है, समय बदला, दूरियां बढ़ी लेकिन परिवार अब भी सबसे मजबूत सहारा, 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी इस दिवस की शुरुआत।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to embark on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. Prime Minister says BRICS under India's chairmanship will work together to build a more inclusive world order. Oil marketing companies hike petrol and diesel prices by 3 rupees per litre. Government caps duty-free gold imports at 100 kg under advance authorization scheme. ED arrests Kolkata Police DCP Shantanu Sinha Biswas for running an extortion syndicate. And in Wushu, Aparna Dahiya clinches gold medal in women's 52 kg category in Sanda World Cup in Macau. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. On the first leg of his 5-nation visit, Mr. Modi will reach UAE today, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. They will also discuss ways to advance the bilateral comprehensive strategic partnership, underpinned by strong political, cultural, economic and people-to-people links. Energy security is expected to remain a central theme of the engagement. Briefing media prior to the visit, Additional Secretary West in the Ministry of External Affairs, Asim Mahajan, said, Energy remains a key pillar of the relationship. He noted that the UAE was India's fourth largest source of crude oil last year, meeting around 11% of India's requirement. According to him, India is now the largest buyer of LNG from the UAE. The UAE also supplies nearly 40% of India's liquefied petroleum gas imports and remains a significant destination for Indian petroleum exports. Our correspondent has filed this report.
3: India and the UAE have moved far beyond the traditional crude oil trade that once defined their energy relationship. The UAE remains a key oil supplier to India, but the partnership has now expanded into natural gas, renewable energy and civil nuclear cooperation. Earlier this year, Hindustan Petroleum signed a 10-year deal with Abu Dhabi National Oil Company for 500,000 tons of LNG annually beginning 2028, giving India greater price stability by reducing its reliance on spot markets. Renewable energy and civil nuclear cooperation are also gaining ground. UAE so Sovereign wealth funds are actively investing in India's solar infrastructure, while India's Shanti Act, which opens the nuclear sector to private players, has created fresh scope for collaboration in reactors, including small modular reactors. Both sides are pushing to settle

0: She hold talks in biggest summit ever, writes the Asian Age. All newspapers have carried pictures of a man flung into air 50 feet above ground after heavy rains and storm hit Uttar Pradesh. The Statesman writes, thunderstorms, hailstorms, pummel UP, at least 104 dead. The Hindu, in its editorial titled Cooling Doctrine, writes that access to safe indoor temperatures must be a public health entitlement. What India needs is something larger and more ambitious, a national cooling doctrine, a scalable framework that treats sustained access to safe indoor temperatures as a public health entitlement to be guaranteed. And finally, the Tribune writes about 61-year-old Narinder Kaur, who scored 77% in the Punjab School Education Board Class 10 Open School Examination after she was encouraged by her sons. The newspaper writes, off studies for 45 years, Punjab woman scores 77%. And with that, it's back to you, Sarah.
1: Thanks, Sarabjit. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi to embark on a six-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. Prime Minister says BRICS under India's chairmanship will work together to build a more inclusive world order. Oil marketing companies hike petrol and diesel prices by 3 rupees per litre. Government caps duty-free gold imports at 100 kg under advance authorization scheme. ED arrests Kolkata Police DCP Shantanu Sinha Biswas for running an extortion syndicate. And in Wushu, Aparna Dahiya clinches gold in women's 52 kg category in Santa World Cup in Macau. That's all in morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज यूएई, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि भारत की ज़ेरे सदारत ब्रिक्स एक ज्यादा शमूलियत वाले आलमी निजाम की तश्कील के लिए मिलकर काम करेगा। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए फी लीटर का इजाफा किया है। हुकूमत ने एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत 100 किलोग्राम तक सोने की दरामदात को ड्यूटी फ्री कर दिया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रुपए पैसे की जबरन वसूली का एक ग्रुप चलाने के लिए कोलकाता पुलिस के डीसीपी शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। और मकाओ में सैंडा आलमी कप में वुशु में खवातीन के 52 किलोग्राम के जुमरे में अपर्णा दहिया ने सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज मुत्तहिदा अरब अमारात, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। 5 मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले के तहत जनाब मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वो सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक्वामी मामलात समेत खासतौर से तवानाई में इश्तराक पर दो तरफा बातचीत करेंगे। वो मजबूत सियासी, सकाफती, इक्तिसादी और अवाम से अवाम के राबतों पर मबनी बाहमी जामे कलीदी शराकतदारी की पेशरफ्त के सिलसिले में तौर तरीकों पर भी तबादला ख्याल करेंगे। दौरे से पहले मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर के एडिशनल सेक्रेटरी असीन महाजन ने कहा कि तवानाई ताल्लुकात के अहम सुतून में से है। उन्होंने कहा कि यूएई गुज़श्ता बरस खाम तेल के मामले में भारत का चौथा सबसे बड़ा जरिया था, जिससे भारत की तकरीबन 11% जरूरत पूरी हुई। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय कंपनियों ने अबू जहबी कौमी तेल गैस कंपनी के साथ तवील मुद्दती एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए हैं, जो मजमुई तौर पर 4.5 मिलियन मैट्रिक टन सालाना के हैं। उनके मुताबिक भारत यूएई से एलएनजी खरीदने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। मुत्तहिदा अरब अमारात भारत को तकरीबन 40% एलएनजी भी दरामद करता है और ये पेट्रोलियम अशिया के लिए एक अहम मकाम रहा है। दोनों मुमालिक कलीदी पेट्रोलियम जखायर, काबिले तश्दीद तवानाई के प्रोजेक्टों और बिजली के इम्कान ग्रिड इंटरकनेक्शन के सिलसिले में भी इश्तराक कर रहे हैं। यूएई आलमी बायो ईंधन इत्तेहाद का बानी मेंबर भी है, जिससे माहौल के लिए साजगार तवानाई के सिलसिले में वसीतर इश्तराक की अक्कासी होती है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात

0: तकरीबन तमाम उर्दू अखबारों ने नई दिल्ली में ब्रिक्स वज़राए खारजा इजलास को सफ़े अव्वल पर नुमाया तौर पर शाया किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, ब्रिक्स ममालिक इस्तेहकाम और आलमी हुक्मरानी में इस्लाहात के लिए कदम उठाएं, एस जयशंकर। मुल्क में एसआईआर के तीसरे मरहले के ऐलान को भी अखबारों ने नुमाया तौर पर शाया किया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने सुर्खी लगाई है कि इंतखाबी कमीशन ने 16 रियासतों और 3 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में खसूसी जाम नजरसानी कराने का फैसला किया। अखबारात ने दिफाई मैन्युफैक्चरिंग शोबे में खुद इन्हसारी पर जोर देने के वजीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान को भी अहमियत के साथ शाया किया है। अखबारों ने मुल्क में खाम तेल और कुदरती गैस की मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए मरकजी हुकूमत के मुअस्सर इकदामात को भी नुमाया जगह दी है। अखबारात में शाया होने वाली बैनुल अक्वामी खबरें कुछ इस तरह हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का चीन का दौरा, शी जिनपिंग ने कहा कि अमरीका और चीन के तल्लुकात आलमी इस्तेहकाम के लिए अहम हैं।
1: और अब आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज यूएई, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। वजीर आजम ने कहा है कि भारत की जेर सदारत ब्रिक्स एक ज्यादा शमूलियत वाले आलमी निजाम की तश्कील के लिए मिलकर काम करेगा। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये फी लीटर का इजाफा किया है। हुकूमत ने एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम के तहत 100 किलोग्राम तक सोने की दरामदात को ड्यूटी फ्री कर दिया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रुपए पैसे की जबरन वसूली का एक ग्रुप चलाने के लिए कोलकाता पुलिस के डीसीपी शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

कैफी आजमी लिखा हुआ गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में। इस गीत को संगीतबद्ध किया था हेमंत कुमार ने और फिल्म का नाम था अनुपमा। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं नामवर संगीतकार कल्याण जी आनंद जी और फिल्म का नाम है एक हसीना दो दीवाने।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म साथी से। शब्दशना मजरू सुल्तानपुरी की, संगीत नौशाद का दिया हुआ और फिल्म गीत को आवाजें दी हैं मुकेश और सुमन कल्याणपुर ने।

एक फूल दो माली, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। गीतकार थे प्रेम धवन, संगीतकार रवि। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, शब्दशना राजेंद्र कृष्ण की, संगीत कल्याण जी आनंद जी का दिया हुआ, और फिल्म का नाम है ब्लफ मास्टर।

ब्लफ मास्टर फिल्म का गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की थी, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत आशा भोसले और मीनू की आवाज़ों में। गीतकार हैं कश्मीरी संगीतकार ओपी नैयर, साथ ही फिल्म का नाम है ये रात फिर न आएगी।

ये रात फिर ना आएगी। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना आशा भोसले और मीनू की आवाजों में, और इस गीत के साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि यहीं पर संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 9:15 होने को हैं। हमारा अगला अनुप्रसारण लखनऊ की आकाशवाणी केंद्र से किया जाएगा, जिसमें समय है कार्यक्रम जिले की हलचल का।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए मिर्जापुर और सिद्धार्थनगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मिर्जापुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है एसएम सभा का।
1: मिर्जापुर में जनगणना 2027 की प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के अंतर्गत स्वगणना दिनांक 7 मई 2026 से 21 मई 2026 के मध्य चलाया जा रहा है। आम जनता द्वारा खुद से स्वगणना कर लेने से आपका एवं प्रगणन को सुविधा एवं समय की होगी बचत। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने मिर्जापुर के सभी नागरिकों से अपील किया है कि जनगणना 2027 को सटीक और आधुनिक बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वगणना पोर्टल की सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाते हुए स्वगणना पोर्टल पर पंजीयन करते हुए अपने मकान की गणना की प्रविष्टि पूर्ण करें। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार।
2: स्वगणना कोई भी व्यक्ति जो हेड ऑफ फैमिली परिवार का मुखिया है वो अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से sc.census.gov.in वेबसाइट पर अपना लॉगिन करते हुए अपने मकान के बारे में जो उसमें प्रश्न दिए गए उनके उनका चयन करते हुए अपने उसको स्वयं गणना कर सकता है। उसके बाद जो आईडी से जनरेट होगी वो SC ID को जब प्रगणक घर पर जाएंगे तो उनको आईडी बताएंगे तो प्रगणक पर उनका भरा हुआ फॉर्म खुल जाएगा, तो जिससे एक उस समय की बचत होगी और लोगों को असुविधा नहीं होगी।
1: मिर्जापुर में समूह की महिलाओं को बागवानी से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक ब्लॉक में समूह की महिलाओं को नर्सरी स्थापित करने के लिए 11 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा। वहीं इतनी ही धनराशि समूह की महिलाओं को स्वयं लगानी होगी, जिससे समूह की महिलाएं फल सब्जी और विभिन्न प्रजाति के फूलों की नर्सरी को तैयार कर आसानी से बेच सकेंगी। इस पहल से न केवल उनकी आय में वृद्धि होगी बल्कि महिलाएं अधिक रूप से मजबूत भी होंगी। इससे ग्राम पंचायत स्तर पर बागवानी को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। अब ग्रामीणों को बागवानी के लिए फल फूल और सब्जी का पौधा खरीदने के लिए गांव के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रत्येक ब्लॉक में समूह की महिलाओं के माध्यम से एक नर्सरी स्थापित कराई जाएगी। लगभग 17 बिस्वा में स्थापित की जाने वाली नर्सरी पर कुल 22 लाख रुपए खर्च होगा। इसमें 50% धनराशि उद्यान विभाग से समूह की महिलाओं को अनुदान मिलेगा। वहीं शेष 11 लाख रुपए समूह की महिलाओं को खर्च करना होगा। समूह की महिलाएं शासन से नर्सरी के लिए मिलने वाली धनराशि से नर्सरी में पौधों की सिंचाई के लिए पंपिंग सेट, नर्सरी वाली भूमि के चारों तरफ बाड़ बनवा सकेंगी। इसके अलावा नर्सरी के लिए आवश्यक अन्य सुविधाएं भी उसी पैसे से विकसित किया जाएगा। NRMM की इस योजना से समूह की महिलाओं को न केवल स्थायी रोजगार मिलेगा बल्कि वे आर्थिक रूप से मजबूत भी होंगी। मिर्जापुर के परिषदीय सहायता प्राप्त राजकीय और अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिदिन मध्याह्न भोजन के बनाने के बाद परोसने से पहले उसकी जांच की जाएगी। इससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलेगा। इसके लिए सभी प्रधानाध्यापक और MDM प्रभारी को निर्देशित किया गया है। भोजन बनने के बाद व परोसने से पहले प्रधानाध्यापक और MDM प्रभारी उस भोजन को चखेंगे, उसकी गुणवत्ता आदि की जाँच करेंगे। इसके बाद ही बच्चों को वह भोजन परोसा जाएगा। प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एवं नागरिक सुरक्षा धर्मवीर प्रजापति जी ने गत दिनों मिर्जापुर में बनने वाले मंडली होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र पर कहा कि प्रदेश के प्रमुख तीर्थ पर्यटन वाले जनपदों में होमगार्ड विभाग का निरीक्षण गृह बनेगा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 1962 के बाद पहली बार सबसे बड़ी होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के लिए सरकार कटिबद्ध है तथा प्रदेश के हर थाना में होमगार्ड के लिए दो दो कक्ष का भी निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि ड्यूटी के अतिरिक्त सामाजिक व जन कल्याणकारी कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी

0: जिम्मेदारी निभाएंगे। होमगार्ड मंडली प्रशिक्षण केंद्र का भूमि पूजन एवं शिलान्यास उद्घाटन हुआ है। उन्होंने कहा कि होमगार्ड के जवानों के लिए 3 लाख बीमा राशि को 5 लाख रुपया कर दिया है। गत दिनों लखनऊ में आयोजित सृजन अंतर्राष्ट्रीय कला साहित्य संस्कृति एवं अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक समागम में मिर्जापुर के पहाड़ी ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय सिद्धि के शिक्षक दयानंद मिश्र को सम्मानित किया गया। उनकी साहित्यिक सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कला साहित्य संस्कृति सम्मान प्रदान किया गया। IGRS पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों से निस्तारण में माह अप्रैल में मिर्जापुर को प्रदेश में जारी रैंकिंग में प्रथम स्थान मिला है। पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत तौफिक ने बताया कि अपर पुलिस अधीक्षक नगर नीतेश सिंह के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी IGRS नीरज कुमार पाठक के नेतृत्व में जन सुनवाई समाधान प्रणाली IGRS के माध्यम से प्राप्त होने वाली जन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण कराया जाता है। एकीकृत शिकायत के निवारण प्रणाली में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा माह अप्रैल 2026 में जारी रैंकिंग में जनपद मिर्जापुर को उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
1: मिर्जापुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सिद्धार्थनगर जिले की हलचल। आलेख है सावन कुमार श्रीवास्तव का।
2: सिद्धार्थनगर से सटे भारत नेपाल सीमा के आने जाने वाले रास्तों की निगहबानी अब CCTV कैमरों के माध्यम से होगी। क्रिटिकल गैप योजना अंतर्गत भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 23 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इन CCTV कैमरों और ककरहवा बॉर्डर के अंतर्राष्ट्रीय गेट के चेक पोस्ट पर स्थायी कैमरा और शौचालय के निर्माण का लोकार्पण जिलाधिकारी ने किया। इस मौके पर SSP 43वीं बटालियन के कमांडेंट उज्जवल दत्ता भी मौजूद रहे। लोकार्पण के बाद मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि भारत नेपाल की खुली सीमा हमेशा से भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर सुरक्षा एजेंसी के लिए चैलेंजिंग रही है। सीमा पर निगहबानी और अच्छी तरह से हो सके इसके लिए पहले फेज में सीमा के कुछ चिन्हित स्थानों पर 32 की संख्या में उच्च कोटि के CCTV कैमरे लगाए गए हैं। सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय लोहिया कला भवन में शिक्षा मित्र सम्मान एवं बढ़े हुए मानदेय को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री द्वारा गोरखपुर में किए गए कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी दिखाया गया। कार्यक्रम में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल, विधायक जय प्रताप सिंह, सदर विधायक श्याम धनी राही और शोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा ने शिरकत की। मुख्यमंत्री के सजीव प्रसारण को सुनने और इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए पूरे जिले के सैकड़ों की संख्या में शिक्षा मित्रों ने शिरकत की और मुख्यमंत्री के उद्बोधन का तालियां बजाकर स्वागत किया। इस मौके पर सांकेतिक तौर पर 10 शिक्षा मित्रों को बढ़े हुए मानदेय का चेक वितरण भी किया गया। कार्यक्रम के बारे में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के करीब 1,40,000 शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्र शिक्षा के क्षेत्र में अपनी महती भूमिका निभाते हैं। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनको पूरी तरह से शिक्षा मित्र की देखरेख में ही चलाया जा रहा है। ऐसे में उनकी जिम्मेदारियों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत दिनों से लंबित इनके मानदेय को बढ़ाने का काम किया है। भारत की 16वीं जनगणना को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में सिद्धार्थनगर मुख्यालय स्थित डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल के आवास और कार्यालय पर स्वगणना जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सांसद ने अपने परिवार का पूरा विवरण भरकर जनगणना ID प्राप्त की और लोगों से मोबाइल के जरिए स्वयं रजिस्ट्रेशन करने की अपील की। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज में शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों पर सख्त कार्रवाई करते हुए यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर चेकिंग अभियान चलाया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक महाजन के निर्देश पर यातायात पुलिस द्वारा चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य नशे में वाहन चलाने वालों पर अंकुश लगाना था और सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है। क्षेत्राधिकारी यातायात सुजीत कुमार राय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यातायात पुलिस की टीमों द्वारा जनपद के विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यहां से नेपाल तक गाड़ियां जाती हैं, जिसको लेकर चेकिंग की जा रही है। अभियान के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों की पहचान कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जनपद सिद्धार्थनगर में जिलाधिकारी शिव शरणप्पा GN द्वारा ककरही टड़िया गायघाट सड़क का निरीक्षण किया गया। इस सड़क का निर्माण वर्ष 2023-24 में हुआ था। निरीक्षण के दौरान जगह जगह सड़क में पैच पाया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि पैच की तत्काल मरम्मत कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सड़क मरम्मत कार्य निर्धारित मानकों और गुणवत्ता के अनुरूप समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराई जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इस अवसर पर अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, कमल किशोर, संबंधित विभागों के अधिकारी और कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ में अपना दल के विधायक विनय वर्मा की अगुवाई में महिला आक्रोश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। शोहरतगढ़ की टीचर्स कॉलोनी से जन आक्रोश

0: यात्रा का शुभारंभ हुआ, जो नगर पंचायत कार्यालय होते हुए शोरतगढ़ के प्रमुख स्थानों से गुजरते हुए दोबारा टीचर्स कॉलोनी में संपन्न हुई। इस अवसर पर सदन में महिलाओं के 33% आरक्षण बिल पारित न होने से आक्रोशित महिलाओं ने नारेबाजी की। इस अवसर पर विधायक विनय वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को राजनीति में आगे लाने के लिए 33% आरक्षण बिल लेकर आए हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने इसके विरोध में मत डालकर इसे पारित नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि हम महिलाओं के सम्मान में लड़ेंगे।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गांधी चर्चा। आज का विषय है प्रार्थना की उपयोगिता पर गांधी जी के विचार।

और अब प्रार्थना की उपयोगिता विषय पर बापू के विचार। प्रार्थना की उपयोगिता के विषय में मेरे मन में शंका उत्पन्न नहीं हो सकती। प्रार्थना में आप अशुद्ध विचार से बच जाते हैं। ये कोई कम उपयोगिता नहीं, लेकिन ये तो पहली सीढ़ी है। ये जरूरी नहीं कि प्रार्थना करते समय हम उसके अर्थ में ही लीन रहें। जब हम प्रार्थनामय हो जाते हैं तो अर्थ का भान नहीं रहता। शुद्धतम स्थिति में अर्थ के परे पहुंच जाते हैं। उस दशा में भान मात्र ईश्वर का रहता है। भाषा बाधा रूप बन जाती है। मैं इस स्थिति का वर्णन नहीं कर सकता। प्रार्थना का हेतु तल्लीन होना है। सामाजिक प्रार्थना का हेतु समाज के रूप में तल्लीन होना है। व्यक्ति की समाज में डूब जाना है। व्यक्ति समाज में और समाज ईश्वर में लीन हो जाता है। ओम के उच्चारण में अथवा राम नाम में कौन सा अर्थ है? जो उसमें है वही प्रार्थना के श्लोकों आदि में है। मुझे इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं कि जो ये समझकर प्रतिदिन प्रार्थना का उच्चारण करता है वो अंत में परम शांति पाता है। जो समाज को चाहता है उसे सामाजिक कार्य में यानी सामाजिक प्रार्थना में अरुचि होनी ही नहीं चाहिए। जो ईश्वरमय बन जाता है वो तो समूचे संसार को ईश्वरमय देखता है। कहना होगा कि इस स्थिति तक पहुंचने के लिए सामाजिक कार्य में सामाजिक प्रार्थना पहली सीढ़ी है। हबशियों से लेकर यूरोप के ईसाइयों, अरब के मुसलमानों और भारतवर्ष के हिंदुओं तक कोई प्रार्थना के बिना अपना काम चला नहीं पाए। गिरजाघर, मस्जिद और मंदिर जमींदोज हो जाएं तो समाज भी जमींदोज हो जाएगा। ईश्वर के निकट तो 24 घंटे स्वर्गीय गान होता ही रहता है। हम उसकी कल्पना भर कर सकते हैं। सामाजिक प्रार्थना उस गान में सम्मिलित होने का एक अल्प प्रयत्न है। जो उस गान में सम्मिलित हुए हैं उनके लिए तो नित्यानंद है। प्रार्थना अंततः श्रद्धा का विषय है। इस श्रद्धा को टिकाने लायक रस उसमें उड़ेलने होंगे। आखिर इस भावना को लेकर समाज में बैठेंगे और तन्मय होंगे तो वही प्रार्थना हो जाएगी। फिर वो चाहे किसी भी भाषा में क्यों ना बोला जाए। दुनिया में सामूहिक मूक प्रार्थना भी प्रचलित है। रोमन कैथोलिकों में भक्त लोग घंटों मूक भाव में बैठे रहते हैं और प्रार्थना में ध्यान

ग्रस्त रह सकते हैं। हमें तो जैसे भी बने शांति प्राप्त करनी है। कई वर्षों से शुद्ध हेतु पूर्वक प्रार्थना से चिपटे रहे हैं, इसलिए हमें किसी दिन सच्ची कुंजी मिल ही जाएगी। इस बीच लोग आने लगे हैं, इससे संतुष्ट रहना। कुछ वस्तुओं का उपाय केवल काल है। हम जितना खोदते हैं उतना बिगड़ता है, और धीरज से बाट जोहते हैं तो उपाय मिल जाता है। मुझे ईश्वर का स्मरण प्रतिक्षण रहता है। इसका अर्थ ये है, जागते हुए ऐसा कोई समय नहीं कि जब मुझे ये भान न हो कि ईश्वर मुझ में है और सब देखता है। ये भान बुद्धि को है, अभ्यास से हुआ है, हृदय को है। सो नहीं कहता, क्योंकि मैं अपने को भयमुक्त नहीं मानता। सर्पादि का भय तो है ही, मृत्यु को मित्र समझते हुए भी देखता हूं कि दिल की गहराई में जीने की इच्छा भी रही है। लगता है जीना प्रिय है। इसी के साथ मृत्यु से भेंटने की तैयारी भी लगती है। ऐसी विचित्र भावना है। इस निर्बलता के कारण मैं ये नहीं कह सकता कि हृदय में ईश्वर का वास हुआ है। ये दूसरी बात है कि बुद्धि कबूल करती है कि वो हृदय में रहता है। जिसे ये अनुभव जन्य ज्ञान है कि ईश्वर हृदय में रहता है, उसे देह के विषय में अत्यधिक अमूर्छा होगी। देख सकता हूं कि मैं इस स्थिति तक पहुंचा नहीं हूं। तिस पर भी बुद्धि ने जिसे स्वीकार किया है, वो चीज इतनी मजबूत है कि वो हृदय में उतर रही है, ऐसा भी प्रतीत होता है। ये थे प्रार्थना की उपयोगिता विषय पर बापू के विचार। और अब सुनते हैं डीवी पलुस्कर के स्वर में बापू का प्रिय भजन।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 9:45 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज के गायक कलाकार हैं संध्या शर्मा।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सुना संध्या शर्मा के सुर में गाया हुआ लोकगीत, और आइए अब सुनते हैं मनोरमा तिवारी के सुर में ये लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लोकगीत गायक कलाकार थी संध्या शर्मा और मनोरमा तिवारी। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 10 बज चुके हैं। प्रस्तुत है सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरसरिता।

लता मंगेशकर और मीनू पुरुषोत्तम की आवाजों में अभी आपने सुना कार्यक्रम का पहला गीत। इस गीत के बोल लिखे थे साहिर ने, संगीत लक्ष्मीकांत पारीलाल का दिया हुआ और फिल्म का नाम था दाग। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत पारीलाल, स्वर लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है मेरा गांव मेरा देश।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म बैराग से। शब्द रचना आनंद बख्शी की है, धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने, स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर व साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं इंदीवर, संगीतकार कल्याण जी, आनंद जी और फिल्म का नाम है पूरब और पश्चिम।

और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ। धुन बनाई है SG वर्मा ने, स्वर लता मंगेशकर मोहम्मद रफी व साथियों की हैं और फिल्म का नाम है तलाश।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राधा गोविंद दास का गाया राग देसी में धमार गायन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राधा गोविंद दास का धमार गायन राग बेसी में। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आज के कलाकार।

बीते वक्त में ले जाता है तो कभी वर्तमान में रौनक जगाता है। अपने गीतों, डांस, खूबसूरती और अभिनय से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली अभिनेत्री माधुरी दीक्षित की फिल्मों के गीत आज हम कार्यक्रम आज के कलाकार में सुनेंगे और साथ साथ गुनगुनाएंगे भी।

रविन्द्र दीक्षित जी का जन्म 15 मई 1967 को मुंबई के एक मराठी परिवार में हुआ। आपके माता पिता थे शंकर दीक्षित और स्नेहलता दीक्षित। इनकी शिक्षा डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल और मुंबई विश्वविद्यालय से इन्होंने किया माइक्रोबायोलॉजी में अपना ग्रेजुएशन। बचपन से ही इनको कथक डांस में काफी रुचि थी और 8 साल तक उन्होंने इसका बखूबी प्रशिक्षण भी लिया। अगर इनके फिल्मी करियर की शुरुआत की बात की जाए तो सन 1984 में फिल्म अबोध से इन्होंने शुरुआत की, लेकिन ये फिल्म कुछ खास सफल नहीं रही और सन 1988 में इनकी एक फिल्म आई तेजाब, जिससे इन्हें भरपूर सफलता मिली। इस फिल्म का गीत भी हम कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे, ये काफी मशहूर गीत रहा। साथ ही अगर इनकी मशहूर फिल्मों की बात की जाए या प्रमुख फिल्मों की

लिस्ट में शामिल किया जाए तो वो फिल्में रहीं तेजाब, बेटा, दिल, हम आपके हैं कौन, दिल तो पागल है, देवदास, खलनायक, साजन, पुकार और इसके साथ और भी कई फिल्में। बेहतरीन अभिनय के साथ साथ इनको इनके डांस के लिए भी काफी पहचान मिली। 17 अक्टूबर 1999 को इनका विवाह डॉक्टर श्रीराम माधव नेने से हुआ। 2008 में भारत सरकार द्वारा इनको चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। साथ ही फिल्मफेयर पुरस्कार की अगर बात की जाए तो 17 नामांकनों में से इनको 6 पुरस्कार प्राप्त हुए। साथ ही उन्होंने टेलीविजन में कई डांस रियलिटी शोज में भी पार्टिसिपेट किया और अपने डांस के लिए इनको

इनका विवाह डॉक्टर श्रीराम माधव नेने से हुआ। सन 2008 में भारत सरकार द्वारा इनको चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। साथ ही फिल्मफेयर पुरस्कार की अगर बात की जाए तो 17 नामांकनों में से इनको 6 पुरस्कार प्राप्त हुए। साथ ही उन्होंने टेलीविजन में कई डांस रियलिटी शोज में भी पार्टिसिपेट किया और अपने डांस के लिए इनको काफी प्रशंसा भी मिली।

शाम रोक लई रोक लई रोक लई थाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई गई गई सर से मोरी चुनरी गई।

दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी लई जात रही डगर बीच। आहट सुन, आहट सुन, आहट सुन, जियरा गयो धड़क धड़क।

बचपन से ही इनको नृत्य से गहरा लगाव रहा। माधुरी दीक्षित जी को अपने नृत्य प्रदर्शन के कारण ही इनका नाम पहली बार अखबार में छपा था। इन्होंने बताया कि उस समय इनकी उम्र केवल 7 या 8 साल की थी। जी हाँ, ये बात उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कही और ये भी कहा कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उन्होंने एक कार्यक्रम में नृत्य प्रदर्शन किया जिसमें एक रिपोर्टर ने इनको लेकर लेख लिखा जिसमें ये बात कही गई कि एक छोटी सी बच्ची ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। ये बात गहराई से इनके दिल में समा गई और इन्हें इस बात का एहसास हुआ कि नृत्य की जो प्रतिभा इनके अंदर है वो काबिले तारीफ है और इनके इस प्रतिभा की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये लगातार इसको वक्त देती रही, इसका प्रयास करती रही और अपने नृत्य को लगातार उन्होंने बनाए रखा। इन्होंने डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल से अपनी शिक्षा प्राप्त की। पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने नाट्य कला जैसी गतिविधियों में भी भाग लिया। साथ ही ये एक सूक्ष्म जीव विज्ञानी बनना चाहती थी। इनकी शुरुआती इच्छा थी कि ये एक सूक्ष्म जीव विज्ञानी बने। इसको लेकर इन्होंने विले पार्ले मुंबई के सथाई कॉलेज में एडमिशन भी लिया जहां इन्होंने बीएससी में एक विषय के रूप में सूक्ष्म जीव विज्ञान का अध्ययन किया। हालांकि अपना पाठ्यक्रम इन्होंने शुरू किया और उसके 6 महीने बाद इन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ने और फिल्मों में पूर्णकालिक करियर बनाने का एक बड़ा फैसला लिया। ऐसा अक्सर तब होता है जब हम किसी विषय को चुनते हैं ये सोचकर कि हम उसमें आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद कोई कला, कोई प्रतिभा हमारे अंदर की जो अचानक से हमको ये एहसास कराती है कि वो हमारे लिए बेहद खास है और हमें उसको वक्त देना चाहिए। कई बार लोग इसको जन्मजात प्रतिभा और गॉड गिफ्ट का नाम देते हैं। शायद ऐसा हर उस इंसान के साथ होता है जिसकी नियति में यह लिखा होता है कि उसे अपने किरदार को एक निश्चित मुकाम तक ले जाना है और उन रास्तों को तय करना है उस कला के साथ, उस विशेष कार्य के लिए जिसके लिए प्रकृति ने या ईश्वर ने उसे जन्म दिया है। सदियों तक एक कलाकार की प्रतिभा को उसके नाम को जाना पहचाना जाता है, या ये कहें कि उसके नाम को जाना जाता है उसके काम के साथ। वास्तव में ये जो काम है यानी कि जो कार्य है हम अपने जीवन में करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारा कार्य ही हमारी असली पहचान बनाता है और उस कार्य से ही हमारे नाम को जाना जाता है। माधुरी दीक्षित ने सन 1984 में राष्ट्रीय प्रोडक्शंस के नाटक की फिल्म अबोध से कदम रखा जिसमें उनके साथ बंगाली अभिनेता तापस पॉल थे।

में थोड़ी देर पहले इनकी फिल्म इसी अबोध फिल्म की बात की थी और ये बताया था आपको कि फिल्म सफल नहीं रही, लेकिन इनके अभिनय को एक गति मिली। और कोई भी कलाकार शुरू में सफलता प्राप्त कर ले ऐसा जरूरी नहीं, कई बार वक्त आपको आजमाता है और आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं आपके कार्य में उतना ही निखार आता है।

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें

कभी एक बेहतरीन डांसर के रूप में खुद को साबित करना, तो कभी एक समझदार पत्नी और एक समर्पित बहू के रूप में, कभी एक ग्रामीण परिवेश की रहने वाली सीधी सादी लड़की, तो कभी अन्याय का सामना करने के लिए खुलकर सामने आती एक सशक्त महिला। माधुरी दीक्षित ने अपनी फिल्मों के जरिए हिंदी बॉलीवुड में एक समय पर राज किया और बन गई नंबर वन हीरोइन। इसी के साथ कार्यक्रम आज का कलाकार अब संपन्न होता है।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के कलाकार। न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में गीत तो हम सुनेंगे ही, और बात होगी आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस को लेकर। संस्कारों की पाठशाला है परिवार। ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि किसी भी इंसान के लिए शायद सब कुछ है परिवार, उसका संसार है परिवार। परिवार जीवन का आधार, सच्चा सुख और एक अनमोल सहारा है जिसके महत्व को शब्दों में शायद उतनी खूबसूरती से व्यक्त नहीं किया जा सकता। परिवार ही होता है जो मुसीबत में किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी तरह की परेशानी में सबसे पहले खड़ा होता है। इसके साथ साथ हमें मिलता है परिवार से प्रेम, संस्कार और सुरक्षा। हम अपने परिवार के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जन्म से लेकर मृत्यु तक परिवार किसी भी व्यक्ति का एक अभिन्न अंग होता है, उसका एक अभिन्न सहारा होता है। बहुत बार दुर्भाग्यवश कुछ लोगों को जीवन में पारिवारिक सुख नहीं मिलता या जन्म से ही विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उस इंसान से बढ़कर इसकी अहमियत को भला कौन समझ सकता है। परिवार पहचान और शक्ति देने का एक अनोखा स्रोत है। इसके बिना जीवन अधूरा है, क्योंकि ये निस्वार्थ भाव से हर सुख दुख में साथ निभाता है और सही गलत की समझ देता है। आज का ये विषय बहुत ही सुंदर है, सरल है और साथ ही गहरा भी है, क्योंकि श्रोताओं, वक्त बदलने के साथ साथ आज पारिवारिक मतभेद भी बढ़ते जा रहे हैं। आगे बढ़ने की चाह में, सपनों को साकार करने के लिए लोग अपनों से ही दूरी बना लेते हैं। क्या वास्तव में प्रगति और तरक्की के मायने यही हैं? क्या सच में हमें अपनी सफलता के रास्ते में अपनों को पीछे छोड़ देना चाहिए? या फिर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान को इस कदर मजबूर कर देती है कि वो ये भूल जाता है कि हमारी जड़ें परिवार में ही बसी हैं। भावनात्मक सहारे की अगर बात की जाए तो वो परिवार ही तो है जो हमें सुख दुख में ढांढस बंधाता है, मानसिक शांति प्रदान करता है और ये बताता है कि हमसे बढ़कर कुछ नहीं। और ये भी सच है श्रोताओं कि जीवन के किसी भी पड़ाव में खुद को कमजोर ना होने दें। एक बात याद रखें कि जिस ईश्वर ने आपको ये जीवन दिया है वही इस जीवन का पालन पोषण करने वाला ही है। और कई बार कुछ लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं विपरीत परिस्थितियों में, मुसीबतों से, तनाव से और दुखों से हार मान लेते हैं और कोई गलत कदम उठा लेते हैं। ऐसा करना सरासर गलत है। संस्कारों की पाठशाला की अगर बात की जाए तो एक शिशु सबसे पहले अपने परिवार में ही बड़ा होता है। अपने परिवार का ही साथ उसको मिलता है। प्रेम, सम्मान, सहयोग और नैतिक मूल्यों की शिक्षा उसे परिवार में ही मिलती है। सुरक्षा और स्थिरता की अगर बात की जाए तो घर, परिवार और अपनों के बीच ही इंसान को जीवन में स्थिरता प्राप्त होती है। हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ ही हमें ये लगता है कि हमारा कॉन्फिडेंस जिंदा है और हमारे व्यक्तित्व को सही आकार मिल रहा है।

बाघ को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साये से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।

सन 2026 की थीम है फैमिलीज इनइक्वलिटीज एंड चाइल्ड वेलबींग, पारिवारिक असमानताएं और बच्चों का कल्याण। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सन 1993 में घोषणा के बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई 1994 को मनाया गया था। पारिवारिक रिश्तों की अहमियत और उनके सामंजस्यपूर्ण विकास को बढ़ावा देता है आज का यह दिन। यह परिवारों के जीवन को प्रभावित करने वाली सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है। मजबूत परिवार सशक्त समाज और विकसित राष्ट्र की नींव माना जाता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल 15 मई को मनाया जाता है। जैसा कि अभी हमने कहा कि परिवारों के महत्व और जीवन में उनकी विशेष अहमियत के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये विश्व स्तर पर किया जाने वाला एक अवसर है, एक अभियान है, और उद्देश्य यही है कि परिवार के सदस्यों को आपस में मिलजुल

कर रहना चाहिए जिससे हर परिवार मजबूत बन सके। और जाहिर सी बात है कि परिवार में छोटे बच्चों के वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये बेहद जरूरी है। रिश्तों में अगर आपसी समझ हो तभी एक परिवार तरक्की कर पाता है, और एक इंसान अगर सुखी स्वस्थ और शांत परिवार में रहता है तो ही वो अपने व्यवसायिक जीवन में भी प्रगति कर सकता है।

श्रोताओं, ये संपूर्ण विश्व भी एक परिवार है और हम परिवार के महत्व को भली भांति समझते भी हैं और जरूरत इस बात की है कि जीवन में या समय में होते हुए बदलाव को हम अपने परिवार पर हावी ना होने दें। वो बदलाव जो हमें हमारे परिवार से दूर कर दे, ऐसा कोई बदलाव जीवन में नहीं होना चाहिए। कई बार रिश्तों में समय ना देने की वजह से भी खटास आ जाती है। ऐसे में जरूरी है कि हम रिश्तों और पारिवारिक सदस्यों की अहमियत को समझते हुए समय समय पर उनके प्रति अपना प्यार और आपसी समझ बनाए रखें। परिवार में रह रहे बड़े बुजुर्गों को सम्मान, हम उम्र लोगों के साथ तालमेल और छोटों को स्नेह देना हमारे लिए जरूरी भी है और हमारा कर्तव्य भी।

कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत इसी के साथ समाप्त होता है। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी उमंग।

0: राजेश पिकारिया और स्वप्निल काटकर जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
1: दुनिया में सभी लोग किसी न किसी के भरोसे पर जीते हैं, इसलिए हरदम यही प्रयास करें कि हमारे ऊपर से किसी का भरोसा ना टूटे।
0: बहुत अच्छा विचार। जी हाँ श्रोताओ, दुनिया भरोसे पर ही तो कायम है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे प्रति किसी का विश्वास न टूटे, क्योंकि टूट जाए तो मरम्मत में मुश्किल होती है।
1: जी हाँ, पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं,
0: दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा,
1: गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण,
0: और महाराष्ट्र से मिस्टर पटेल, और
1: ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी।
0: संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हमने विशेष रूप से ये चर्चा की कि गर्मी के मौसम में हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। आशा है कि श्रोताओं को जरूर पसंद भी आई होगी। आज इस सप्ताह के हमारे प्रसारण का आखिरी दिन है, तो आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: जी अजीत जी, देखिए हमारा प्रसारण शैक्षिक है और विशेषकर स्कूली बच्चों के लिए है, तो मुझे लगता है कि जब तक हम अपने प्रसारण में बच्चों की बातें न करें तब तक बात अधूरी ही रहेगी।
0: बिल्कुल,
1: तो क्यों न गर्मी के मौसम को बच्चों की गर्मी की छुट्टियों से जोड़कर देखा जाए।
0: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी और उनके अभिभावकों के लिए भी।
1: जी अजीत जी, गर्मियों की छुट्टियां बच्चों के लिए सिर्फ आराम का समय नहीं बल्कि सीखने, बढ़ने और नए अनुभव लेने का सुनहरा अवसर देती हैं। और यदि इन छुट्टियों को सही दिशा दे दी जाए तो ये छुट्टियां जीवन भर काम आने वाली आदतें सिखा सकती हैं।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चे और उनके अभिभावक गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग कैसे करें। तो विमलेश जी, चलिए आपसे शुरू करते हैं।
1: जी अजीत जी, देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी पढ़ाई से जुड़ाव हमेशा बनाए रखें।
0: जी, लेकिन विमलेश जी, क्या पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ी जाएं?
1: जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ या कुछ और कहानियाँ। कहानियाँ भाषा के कौशल को बढ़ाने में बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं।
0: जी, और हाँ श्रोताओ, आपको विशेष सूचना दे दें कि यदि आपको पाठ्य पुस्तकों को सुनना है तो आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाएं। आपको वहाँ NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ऑडियो संस्करण या ऑडियो बुक मिल जाएगा।
1: आप इस चैनल पर हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। और हाँ, यदि आप पाठ्य पुस्तक या कहानी पढ़ें तो बोल बोलकर यानी वाचन के साथ पढ़ें,
0: क्योंकि इससे धारा प्रवाह पढ़ने के कौशल का भी विकास होगा। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि छुट्टियों के दिनों में अभिभावक बच्चों को कोई ना कोई नया हुनर जरूर सिखाएं, जैसे चित्रकला, क्राफ्ट बनाना या फिर कोई वाद्य यंत्र सीखना।
1: तो ये तो बात हुई पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक गतिविधि भी जरूर करें। सुबह या शाम जरूर कोई खेल खेलें। और भी बहुत कुछ गर्मी की छुट्टियों में किया जा सकता है,
0: जैसे
1: प्रकृति से जुड़ना, यानी कि पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, गर्मी के मौसम में पक्षियों को दाना पानी देना इत्यादि।
0: जी विमलेश जी, मुझे एक और बात याद आ गई। यदि इन दिनों में वे अपनी चीजों को ठीक से रखने का अभ्यास करें तो छुट्टियां खत्म होने तक ये उनकी आदत बन जाएगी।
1: इन दिनों में बच्चे कुछ रचनात्मक गतिविधियां भी कर सकते हैं,
0: जैसे
1: कि कहानी लिखना, डायरी लिखना, कविता लिखना इत्यादि। और हाँ, इन दिनों में वे माता पिता के कामों में भी हाथ बटा सकते हैं।
0: और इन छुट्टियों में कहीं घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, इन छुट्टियों में अपने बुजुर्गों जैसे नाना नानी, दादा दादी से भी मिलने का थोड़ा समय जरूर निकालें।
1: तो श्रोताओ, आशा है कि आपको हमारे ये ग्रीष्म रेडियो विशेषांक पसंद आए होंगे। अब आपके लिए एक प्रश्न।
0: तो प्रश्न है कि बच्चे अपनी गर्मी की छुट्टियों में और क्या क्या कर सकते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
1: थाथू और मैं। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची और उसके दादाजी के बीच स्नेह और प्रेम के रिश्ते को उजागर किया गया है और इसके द्वारा बच्चों को पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा दी गई है। विशेष रूप से ये संदेश दिया गया है कि बच्चे घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखें।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम थाथू और मैं।
2: मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ, उन्हें मैं थाथा कहती हूँ। लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं

बुलाती हूँ। कभी कभी थातू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं हॉर्न बजाती हूँ, पम पम। रास्ते की सब बकरियाँ और गायें दूर हट जाती हैं। थातू, क्यों ना हम चांद पर चलें? मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाता के दांत नहीं हैं। जब वे हंसते हैं

0: नहीं है। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं,
1: देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें।
0: थातू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। मछलियां थातू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं। मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थातू का हाथ पकड़ लेती हूँ, उनके साथ में कूदती फांदती घर आ जाती हूँ और फिर थातू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। थातू, ये कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। थातू मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी आपकी तरह? वे कहते हैं,
1: अब सो जाओ।
0: उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थातू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनके जैसी बनूं।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम थाथू और मैं, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
3: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह की वीरता और अपार शौर्य के बारे में बताया गया है कि कैसे भारत चीन के युद्ध के दौरान उन्होंने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया। उन्हें इस वीरता के लिए परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: गौरव से ऊंचा कर दिया।
1: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
0: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारी गण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
1: सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
2: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या बॉल शुरू हो गई?
3: हाँ।
1: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
0: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 16 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
1: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
0: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
1: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
0: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
4: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
5: जी सुबेदार साहब।
4: हम 29 लोग हैं तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
5: जी सुबेदार साहब।
4: बोले सोनिहा
5: सत श्री अकाल।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, अपना आज कुर्बान कर दिया। जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्ध वीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक

0: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय, कड़ाके की ठंड थी।
1: तेजा सिंह, और चाय तो बना दे यार, सवेर होगी।
2: हाँ साहब।
3: ओए, वो फायर है, कमरे में, फायर है, झुक जाओ, झुक जाओ, गाड़ी के

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के पहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
2: जो बोले सो निहाल सत्य का।
0: बोमला तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
3: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थीं और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
0: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
1: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
0: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहां हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: बाद में पता चला कि वो चीन की सेना द्वारा युद्धबंदी बना लिए गए थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया है। ये जानकर चीन ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 मई 1963 को सूबेदार जोगिंदर सिंह की अस्थियां उनकी बटालियन के सुपुर्द कर दी। जी हां, सूबेदार जोगिंदर सिंह की अदम्य वीरता को देखकर चीन की सेना भी सम्मान

आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी उमंग। कार्यक्रम आप आकाशवाणी के आगरा केंद्र से सुन रहे थे। दोपहरकालीन सभा के प्रसारण के अंतर्गत आप सुन रहे हैं आज के कार्यक्रम। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने।

कार्यक्रम फिल्म संगीत में अभी आप सुन रहे हैं शफाकत अमानत अली को फिल्म रावण के इस गीत में, जिसे संगीतबद्ध किया है विशाल शेखर ने और शब्द रचना है कुमार की।

कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज़ और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।

करण सगाठिया के गीत और राम संपत के संगीत के साथ सुखविंदर सिंह और भूमि त्रिवेदी की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म रईस से।

सुनिधि चौहान के स्वर में फिल्म सैम बहादुर का ये गीत आपने सुना। कार्यक्रम के अंतिम पेशकश सुनिए सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में। फिल्म का नाम है टॉयलेट, एक प्रेम कथा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात यूएई पहुंच गए हैं। वहां पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री ने आज संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर विशेष ध्यान दिया गया। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति में आई बाधाओं के मद्देनजर ये चर्चाएं हो रही हैं और दोनों पक्षों द्वारा तेल भंडार तथा गैस आपूर्ति व्यवस्था पर

0: चर्चा किए जाने की उम्मीद है। यात्रा से पहले संयुक्त अरब अमीरात सरकार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रिम बिंत इब्राहिम अल हाशमी ने प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त अरब अमीरात में एक सम्मानित व्यक्ति बताया। प्रधानमंत्री मोदी अगले चरण में नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली भी जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराक्ची की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रुपये की वृद्धि की है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने त्वरित एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत सुधारित और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल जरूरत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कूचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 250 अंक बढ़कर 75,649 पर, जबकि निफ्टी 81 अंक की वृद्धि के साथ 23,770 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: the Foreign Minister of Iran, Abbas Araghchi, in New Delhi. In a social media post, Mr. Jaishankar said both leaders discussed the situation in West Asia and its implications. He said they also exchanged views on bilateral issues of mutual interest. Dr. Jaishankar also appreciated Mr. Araghchi's participation in the BRICS Foreign Ministers Meeting 2026. The National Testing Agency, NTA, has announced that the medical entrance exam, NEET UG 2026, will be reconducted on the 21st of June. Earlier, the exam, which was held on the 3rd of this month, was cancelled due to alleged paper leak, and CBI is investigating the matter. In a social media post, the agency has requested candidates and parents to rely only on the official channels of NTA. Meanwhile, Union Education Minister Dharmendra Pradhan today said students are the priority of the government and the centre is sensitive towards them. Briefing media in New Delhi, Mr. Pradhan assured fairness and transparency in the exam process. The minister added that NEET UG examination will be conducted in computer-based test CBT mode from next year instead of the existing OMR-based mode.
1: Our foremost priority is the welfare and future of the students, and the government remains deeply mindful of the hard work and dedication they invest in their studies. Following the conduct of the examination on 3rd May, we were determined to ensure that no genuine candidate was deprived of a fair opportunity due to the unethical practices of the education mafia.
0: The education minister admitted that NTA requires definite reforms and said steps will be taken to strengthen the examination system to prevent future irregularities. Indraprastha Gas Limited has increased the prices of compressed natural gas, CNG, by 2 rupees today. After the price hike, the new rate for 1 kilogram CNG in Delhi is 79 rupees 9 paise and 87 rupees 70 paise in Ghaziabad and Noida. In Gurugram, the new rate for 1 kilogram CNG is 84 rupees 12 paise. Earlier, oil companies raised the petrol and diesel prices by 3 rupees per litre each. Amid spike in global energy prices, the petrol price has risen from 94 rupees 77 paise to 97 rupees 77 paise per litre, while diesel prices have increased from 87 rupees 67 paise to 90 rupees 67 paise per litre in New Delhi. Similar hike in oil prices were seen in other metro cities, including Mumbai, Kolkata and Chennai. The Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, in collaboration with the Ministry of Petroleum and Natural Gas, today launched an integrated hydrogen-powered shuttle bus service in the national capital to reduce fuel consumption and promote the use of public transport. The shuttle service will provide seamless and environment-friendly last-mile connectivity between Central Secretariat and Sevatirth Metro stations and key government establishments in the Central Vista region. And with that, we end this news bulletin.
2: अब आप शाइस्ता बानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज महाराजगंज के नौतनवा में 208 करोड़ रुपए के 79 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। प्रोग्राम को खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि रियासत में डबल इंजन की सरकार तेजी से तरक्की कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीबों को रिहाइश, बेरोजगारों को नौकरी फराहम कर रही है।
3: आज बनटांगिया गांव में वो सब सुविधा है जो एक सामान्य राजस्व गांव में है। हर गरीब को मकान मिल रहे हैं, हर गांव के लिए कनेक्टिविटी है, हर गरीब के घर में शौचालय है, हर गरीब के लिए राशन की सुविधा है, हर गरीब के लिए स्वास्थ्य की आयुष्मान भारत की सुविधा है, नौजवान के लिए रोजगार है। उत्तर प्रदेश पुलिस में जब भर्ती हुई मैं देख रहा था कि महाराजगंज के भी है कि नहीं है, मैंने देखा कि सैकड़ों नौजवान महाराजगंज जिले से भी भर्ती हुई।
2: वजीर आला मुख्तलिफ अवामी फलाही स्कीमों के मुस्तफदीन को सर्टिफिकेट और टूल किट्स भी तकसीम करेंगे। इसके बाद वो गोरखपुर में दानिश्वरों की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। रियासत में शदीद तूफान झालाबारी और आसमानी बिजली गिरने से होने वाले जानी और माली नुकसान के रद्देमल में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुतासर इलाकों में जंगी पैमाने पर राहत और बचाव के काम करने की हिदायत दी। पेश है एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित लोगों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और हर जरूरतमंद तक त्वरित सहायता पहुंचाई जाएगी।

0: उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित परिवारों तक अविलंब राहत सहायता पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री ने आपदा में जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजनों को अनुमन्य 4-4 लाख रुपए की राहत राशि तत्काल वितरित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त पशु हानि से प्रभावित लोगों को भी नियमानुसार सहायता प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार प्रदेश के 26 जनपदों में खराब मौसम के कारण आंधी, तूफान, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें 111 लोगों की मृत्यु हुई है जबकि 72 लोग घायल हुए हैं। सबसे अधिक जन हानि प्रयागराज में हुई है। समाचार कक्ष से मैं अरुण।
1: मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि अब इम्तिहानात बगैर किसी फीस के होंगे। हम इस बात को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि तलबा पर माली बोझ न पड़े। वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों से खिताब कर रहे थे। जनाब प्रधान ने कहा कि आइंदा इम्तिहान में 15 मिनट इजाफी मिलेंगे। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने सहाफियों से कहा कि अगले साल से नीट का इम्तिहान कंप्यूटर पर मबनी टेस्ट मोड के जरिए लिया जाएगा। वहीं एनटीए ने हुकूमत से मंजूरी मिलने के बाद इम्तिहान की नई तारीख का ऐलान किया है। दोबारा इम्तिहान 21 जून 2026 को होगा। इससे कबल 3 मई को हुए इम्तिहान को पेपर लीक होने पर मंसूख कर दिया गया था। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के शहरियों से ईंधन को बचाने की अपील के बाद वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी ईंधन को बचाने के लिए काबिल तजदीद तवानाई मुतबादिल तवानाई के जरिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे कारपोलिंग को अपनाने पर जोर दिया है। लखनऊ में एक प्राइवेट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्राम से खिताब करते वजीर आला ने कहा कि बुहरान के वक्त कौमी मफाद को मुकदम होना चाहिए। हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो कौम के साथ खड़ा हो और अपना हिस्सा डाले। एलपीजी पर इन्हिसार कम करने के लिए बायोगैस प्लांट्स पर मबनी कम्युनिटी किचन मॉडल तैयार करने पर खुसूसी जोर दिया गया। दरियास्ता मुल्क के जरात और किसानों के बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ अपीलों के जवाब में अपनी मुतालिका वजारतों और महकमों के अहदेदारों के साथ मीटिंग की। उन्होंने बताया कि वजीर आजम की अपील के मुताबिक वजारत की सतह पर एक साल तक सोना खरीदने से बाज रहने का फैसला लिया गया है। कानून साज काउंसिल के चेयरमैन कुंवर मानवेंद्र सिंह ने भी काउंसिल की पार्लिमानी कमेटियों के तमाम पहले से तयशुदा दौरे के प्रोग्रामों को अगले अहकाम तक मुलतवी कर दिया है। रियासत में देसी दूध की पैदावार को फरोग देने के लिए कल आगरा में एक डेयरी कॉन्क्लेव 2026 के इनका किया गया जिसका मौजू था स्वर्णिम दुग्ध अमृत संवाद सम्मेलन। रियासत के मवेशी परवरी और डेयरी तरक्कत के वजीर धर्मपाल सिंह ने कॉन्क्लेव का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि बेसहारा मवेशी हुकूमत की तरजीह है। दुनिया भर में खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बाद तेल कंपनियों ने मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए फी लीटर का इजाफा किया है। महकमे मौसमियात ने आज से 18 मई तक रियासत में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। महकमे ने दिन के वक्त कुछ इलाकों में गर्मी की लहरों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही अगले हफ्ते के दौरान रियासत के ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के इजाफे के इम्कान है जबकि कम से कम दर्जे हरारत में 2 डिग्री सेल्सियस के इजाफे का इम्कान है। वहीं टूर्नामेंट आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जॉइंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से शाम 7:30 बजे लखनऊ में होगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे एफएम पर नशर किया जाएगा।

नमस्कार बहनों, आप सुन रही हैं अपना कार्यक्रम घर संसार, और जिसमें आपके साथ है आपकी रेडियो सखी वंदना तुली। बहनों, जीवन की भागदौड़ में जब हम थक जाते हैं, जब मन उलझनों से भर जाता है, तब एक जगह ऐसी होती है जहां हमें बिना शर्त अपनापन मिलता है, और वो है हमारा परिवार। परिवार केवल रिश्तों का नाम नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेम, सहयोग और संस्कारों की वो डोर है जो हमें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है। बहनों, हर व्यक्ति के जीवन में परिवार सबसे पहली पाठशाला होता है। यही हम बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, और सबसे जरूरी, जीवन जीना।

सीखते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माता पिता उनका हाथ पकड़कर उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं, और जब माता पिता उम्र दराज हो जाते हैं तब वही बच्चे उनका सहारा बनते हैं। यही तो परिवार की खूबसूरती है, साथ निभाने का रिश्ता। मैंने आज के समय में तकनीक ने हमें दुनिया से तो जोड़ दिया है, लेकिन कई बार अपनों से दूर भी कर दिया है। एक ही घर में रहते हुए भी लोग मोबाइल और व्यस्तताओं में इतने उलझ जाते हैं कि आपसी बातचीत कम होती जा रही है। ऐसे में जरूरी है कि परिवार के साथ कुछ समय जरूर बिताया जाए, जैसे एक साथ भोजन करना, बुजुर्गों का हालचाल पूछना, बच्चों की बातें सुनना और घर के कामों में एक दूसरे का सहयोग करना। मैंने ये सब चीजें रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। परिवार केवल सुख में साथ रहने का नाम नहीं है, असली परिवार वही है जो कठिन समय में भी एक दूसरे का हौसला बने, जब कोई निराश हो तो उसे उम्मीद दे, जब कोई कमजोर पड़े तो उसका सहारा बने। इसलिए कहा भी जाता है, मजबूत परिवार मजबूत समाज की नींव होता है। वैसे घर को परिवार बनाने में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, जैसे माँ, बहन, बेटी या पत्नी, हर रूप में महिलाएं रिश्तों को जोड़ने का काम करती हैं। उनके प्रेम, धैर्य और समझदारी से घर में अपनापन बना रहता है। लेकिन परिवार को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी केवल महिलाओं की नहीं बल्कि हर सदस्य की होती है। जब परिवार में सम्मान, संवाद और सहयोग होता है तभी घर खुशियों से भरा रहता है। तो आइए, विश्व परिवार दिवस में आज हम ये संकल्प लें कि हम अपने परिवार को समय देंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और रिश्तों की इस खूबसूरत डोर को हमेशा मजबूत बनाए रखेंगे, क्योंकि परिवार ही वो ताकत है जो हर मुश्किल में हमारा संबल बनता है।

0: जी हाँ बहनों, घर तो प्यार का मंदिर होता ही है क्योंकि उसमें सभी परिवार के सदस्य मिलजुल कर रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट काव्य पाठ में, और काव्य पाठ प्रस्तुत कर रही हैं वर्षा अग्रवाल।
1: बहनों, ये घर संसार कार्यक्रम हम बहनों का ही कार्यक्रम है। हमारा परिवार ही समाज की धुरी होता है, तो आज परिवार पर ही मैं अपनी रचनाएं लेकर उपस्थित हूँ आपके समक्ष। बरसों पहले माँ ने एक बंधन बांधा था पापा से, प्रीत का, मान का, मनुहार का, सुख सन्निधि का, दुख बांटन का। निभाया जीते जी और चली गई सदवा रहने की ख्वाहिश पूरी कर। बंधन बांधा था 7 जन्मों का, तन संग मन का भी, निभा गई तन का बंधन और चली गई मन का निभाने, सांसों की मन का तोड़कर। विलीन हो गई मन में पापा के अपने बच्चों के लिए, जिन्हें रचा था उन दोनों ने अपने रक्त से। अपने बच्चों के हर हट पर मुस्कुराए दोनों, बाँछें खिली उनकी, बुने कुछ सपने खुली आंखों से। पढ़ाया लिखाया, जीना सिखाया, बेटे की दुल्हन लाए और बिटिया को दुल्हन बनाया। माँ का

थी दायां हाथ, पापा का थी गर्व, जो जवाई सा के आंगन का मान बनाया। कहते हैं बेटी परछाई होती है माँ की। पापा देखो ना, मैं पास हूं तुम्हारे, जब भी पुकारोगे माँ की परछाई को समीप ही पाओगे। जीवन की रीत है, इसको चलाना है। अब तो माँ का फर्ज भी पापा आपको ही निभाना है, पापा आपको ही निभाना है। माँ मात्र एक शब्द, मीठा मधुर सा, अबोध की संपत्ति, शैशव का एहसास, कैशोर्य की मित्र, यौवन की मार्गदर्शक, गृहस्थ की अनुभव हो प्रतीत ऐसे कि जैसे साथ रहे ये परछाई बन, कभी बिलगना कभी न छूटे, कभी न टूटे ये आबंधन। पापा नगराज से, जग के सारे चक्रवातों से, आक्रामक हवाओं के घातों से भिड़ जाने वाले तात ही तो होते हैं, शिक्षित करते सांसारिक सामाजिक व्यवहार, मारीच सी तृष्णाओं पर लक्ष्मण रेखा खींचने वाले पिता ही तो होते हैं, जीवन के सारे खार सोख कर शांत रह मिठास ही सहेजते हैं। अपने सृजन के लिए ऐसे सुतुंग जनक ही हो सकते हैं। बहन परिवार का सबसे प्यारा हिस्सा आग्रह करती है, माथे सुख।

रेशम की डोरी ने बांधा ये आबंधन, चाहूं बस इतना ही, खींच मत डालना। खरे स्वर्ण सा सूरज वारू, चांदी सा चम चम चंदा, झिलमिल

कहना, मेरी कसमें खा खा तूने जाने कितनी टाली बलाएं, अगर कहूँ मैं सच सच तो इस जीवन का तू ही डिठोना। दिन राखी का आंगन

अब उन माँ बाप ने हमें क्या क्या सिखाया, उस सीख को इस रचना में ढालने की कोशिश की है मैंने। हमने सीखा है हर हाल में जीने का सलीका, हमने सीखा है हर हाल में जीने का सलीका, शब्दों में भाव भरना, खुशियों के धनक बनाना सीखा। हमने सीखा है पुतलियों की जमीन पर तारे उगाना, हमने सीखा है पुतलियों की जमीन पर तारे उगाना, चंदा को बैंड बना सिर पर सजाना। ख्वाहिशों के आसमान में हौसलों के पेच लड़ाए हैं, ख्वाहिशों के आसमान में हौसलों के पेच लड़ाए हैं, तब जाकर जिंदगी की पतंग लूट पाए हैं। सावन में नाली से गिरते पानी संग गुनगुनाए हैं हम, सावन में नाली के गिरते पानी संग गुनगुनाए हैं हम, छत से टपकती बूंदों से सीखी है सरगम। हमें आता है साथ चलने का वचन दे, आगे बढ़ गए कदमों संग कदम मिलाना, और रात दिन की घटती बढ़ती परछाइयों से पार पाना। मानुष जन्म अनमोल है, मानुष जन्म अनमोल है, तात ने बताया,

0: कमियों में घटाव, भावनाओं का जुड़ाव और स्वार्थ में भाग देकर रिश्तों को गुणा करना माँ ने सिखाया। इस तरह जीवन को अपने सहज, सरल, सुंदर हमने बनाया। इस तरह जीवन को अपने सहज, सरल, सुंदर हमने बनाया।
1: बहनों, अभी आपने सुना वर्षा अग्रवाल से काव्य पाठ, और अब समय हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

मैनू जिंदगी में मुश्किलें तो सबके हिस्से में आती हैं, लेकिन कुछ लोग उन मुश्किलों को अपनी ताकत बना लेते हैं और जब हौसले बुलंद हो तो व्हीलचेयर भी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। मेरी पहचान सेगमेंट में आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक प्रेरणादायक महिला की, जिन्होंने अपने साहस और मेहनत से पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया, भारत की पैरा एथलीट दीपा मलिक की। मैंने जीवन में कई बार परिस्थितियां क्या होती हैं कि हमारे सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी कर देती हैं, लेकिन कुछ लोग हार मानने के बजाय उन चुनौतियों को ही अपनी पहचान बना लेते हैं। ऐसी ही प्रेरणादायक शख्सियत हैं दीपा मलिक। दीपा मलिक का जन्म सोनीपत में हुआ। बचपन से बहुत ही सक्रिय और साहसी स्वभाव की थी, लेकिन जीवन में अचानक ऐसा मोड़ लिया जब उन्हें स्पाइनल ट्यूमर की गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ा। कई सर्जरी के बाद उन्हें व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा, लेकिन बहनों यहीं से उनकी असली उड़ान शुरू हुई। जहां कई लोग ऐसी स्थिति में निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, वहीं दीपा मलिक ने अपने सपनों को टूटने नहीं दिया। उन्होंने खेलों की दुनिया में कदम रखा और पैरा एथलेटिक्स में देश का नाम रोशन किया। वर्ष 2016 में रियो पैरालंपिक्स में उन्होंने शॉटपुट प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। वे पैरालंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी। और सिर्फ खेल ही नहीं, दीपा मलिक ने यह भी साबित किया कि आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। उन्होंने बाइक राइडिंग, तैराकी और कई एडवेंचर गतिविधियों में भी हिस्सा लिया। उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि इंसान के इरादों में होती है। आज दीपा मलिक लाखों लोगों, खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। उन्होंने ये संदेश दिया कि अगर मन में विश्वास हो तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। तो बहनों, जब भी जीवन में कठिनाइयां आए तो दीपा मलिक जी की कहानी को याद कीजिएगा, क्योंकि हिम्मत और मेहनत से हर बाधा को पार किया जा सकता है। बहनों, कार्यक्रम है घर संसार और इसे सुन रही हैं महिलाएं, और महिलाओं का ही कार्यक्रम है, तो बात जब तक फैशन ब्यूटी की ना हो तो कार्यक्रम में कुछ खालीपन सा लगता है ना। तो चलिए बहनों, बात करते हैं। उम्र बढ़ना तो जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच है, लेकिन हर कोई चाहता है कि चेहरे की चमक, मुस्कान की ताजगी और आत्मविश्वास हमेशा बरकरार रहे। मैंने कभी आपने गौर किया है, कुछ लोग बढ़ती उम्र में भी इतने फ्रेश और ग्लोइंग कैसे दिखते हैं? तो मैंने इसका राज सिर्फ महंगे प्रोडक्ट्स में नहीं बल्कि सही देखभाल, अच्छी आदतों और थोड़ी सी स्मार्ट ब्यूटी ट्रिक्स में छिपा होता है। अक्सर हम एंटी एजिंग की बात करते हैं, लेकिन एंटी एजिंग का मतलब उम्र को रोकना नहीं बल्कि त्वचा को हेल्दी, फ्रेश और यंग बनाए रखना है। जैसे बहनों केक पर आइसिंग उसे और सुंदर बना देती है ना, वैसे ही सही स्किन केयर आपकी पर्सनालिटी में निखार ले आती है। सबसे पहले बात करते हैं सनस्क्रीन की। जी हाँ, धूप सिर्फ टैनिंग ही नहीं करती बल्कि त्वचा पर झुर्रियां और फाइन लाइंस भी जल्दी ला सकती है, इसलिए घर से बाहर निकलने से पहले एसपीएफ वाला सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। अब बात आती है हाइड्रेशन की। कम पानी पीने से त्वचा बेजान और रूखी लगने लगती है। दिन भर पर्याप्त पानी, नारियल पानी और मौसमी फल त्वचा को नेचुरल ग्लो देते हैं। और हाँ, सिर्फ चेहरे पर क्रीम लगाने से काम नहीं चलता, अच्छी नींद भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम सोते हैं तब हमारी त्वचा खुद को रिपेयर करती है। इसलिए 7-8 घंटे की नींद

आपकी सबसे सस्ती और असरदार ब्यूटी थेरेपी है। बहनों, बढ़ती उम्र के साथ स्किन की जरूरतें भी बदलती हैं, इसलिए बहुत ज्यादा मेकअप की बजाय हल्का और स्किन फ्रेंडली मेकअप चुनिए, जैसे कि विटामिन सी सीरम, एलोवेरा जेल और घर के आसान नुस्खे भी काफी मददगार हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल क्या है, तनाव बहुत है, तो तनाव भी क्या करता है, चेहरे की चमक को छीन लेता है। इसलिए थोड़ा समय खुद के लिए निकालिए, थोड़ा सा योग, मेडिटेशन या अपने मनपसंद का कोई काम कीजिए। याद रखिए, खुश रहने वाले लोग हमेशा ज्यादा यंग दिखाई देते हैं। और बहनों, उम्र तो सिर्फ एक संख्या है, असली खूबसूरती है आपका कॉन्फिडेंस, आपकी मुस्कान और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। अपनी त्वचा का ख्याल रखिए, खुद से प्यार कीजिए और हर उम्र को खूबसूरती से अपनाइए और गुनगुनाइए ये गीत।

तो दिन ही बन जाता है। तो आइए रेसिपी टाइम में आज बनाते हैं कुछ ऐसा जो स्वाद भी बढ़ाए और सेहत भी संभाले। मैनू आज हम बना रहे हैं कच्चे आम की लौंजी। इसके लिए आपको चाहिए 2 कच्चे आम, 2 बड़े चम्मच तेल, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1/4 चम्मच मेथी दाना और कलौंजी, 1/2 चम्मच जीरा, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, नमक अपने स्वाद के अनुसार, आप इसमें गुड़ या चीनी कुछ भी इस्तेमाल कर सकती हैं जिसे आप 1/2 कप ले सकती हैं और पानी भी 1/2 कप। तो मैंने सबसे पहले कच्चे आम को धोकर छील लें और छोटे टुकड़ों में काट लें। कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, सौंफ, मेथी दाना और कलौंजी डालकर हल्का भून लें और अब कटे हुए आम डालें और 2-3 मिनट तक चलाते हुए पकाएं। हल्दी, नमक और लाल मिर्च डालकर फिर थोड़ा पानी डालकर ढक दें ताकि आम नरम हो जाएं और जब आम हल्के गल जाएं तो गुड़ या चीनी डाल दें। धीमी आंच पर पकाएं जब तक लौंजी हल्की गाढ़ी और चाशनी जैसी ना हो जाए। गैस ऑफ करें और ठंडा होने दें। तो बहनों इसे आप पूरी, पराठे या दाल चावल के साथ परोस सकती हैं। उम्मीद है कि कच्चे आम की स्वादिष्ट लौंजी आपकी रसोई में भी जरूर बनेगी। और अब चलते चलते ये गीत।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे गजल। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को हैं, आप सुनेंगे मिड डे न्यूज़।

0: Post, the union minister said, while several countries witnessed petrol and diesel hikes ranging from 20 to nearly 100%, India limited the increase to just plus 3.2% for petrol and plus 3.4% for diesel. Benchmark domestic equity indices were trading moderately higher in afternoon trade. Today, the Sensex rose 165 points to 75,563, while the Nifty added 47 points to 23,737 when reports last came in. Meanwhile, in the broader market, at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 was trading flat, while the small-cap 100 dipped nearly 0.2% a short while ago. The Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, in collaboration with the Ministry of Petroleum and Natural Gas, today launched an integrated hydrogen-powered shuttle bus service in the national capital to reduce fuel consumption and promote the use of public transport. The shuttle service will operate on all working days during peak office hours. It will provide seamless and environment-friendly last-mile connectivity between Central Secretariat and Sevatirth Metro stations and key government establishments in the Central Vista region. In badminton, India's top men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the semi-finals of Thailand Open. The Indian duo defeated Japanese pair of Takumi Nomura and Yuichi Shimogami with 21-12, 21-13 in Bangkok today. Later in the day, Lakshya Sen will face Thailand's Kunlavut Vidithsarn in the men's singles quarterfinals. In IPL cricket, Lucknow Super Giants will take on Chennai Super Kings at Ekana Stadium in Lucknow this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. Earlier, Mumbai Indians defeated Punjab Kings by 6 wickets at Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala last night. Tilak Verma was adjudged player of the match. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan discuss energy cooperation and bilateral trade in Abu Dhabi. Both leaders exchange key MOUs in defence, petroleum and investments. BRICS foreign ministers meeting 2026 underway in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reaffirms India's commitment in advancing goal of reformed and effective multilateralism. NTA to reconduct NETUG 2026 examination on June 21st. Education Minister Dharmendra Pradhan assures fairness and transparency in exam process. BJP MLA Rotindra Bosu elected new Speaker of West Bengal Legislative Assembly. And in badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter semi-finals of Thailand Open. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबू धाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
2: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया ये किसी भी रूप में स्वीकार करना ही है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और बिल्डअप का परिचय दिखाया है यह बहुत ही सराहनीय है।

0: सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
1: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
0: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखा, यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबूधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराते हुए सुरक्षा प्रदान की। एक रिपोर्ट।
2: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन किया है जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए तथा उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों को न केवल वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए बल्कि और अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने वाली और समानतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में मिलकर काम करना चाहिए। डॉ जयशंकर ने कहा कि सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग्ची की भागीदारी की सराहना भी की। विदेश मंत्री ने क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स पेरेला और युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे से भी मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी।
4: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना।

0: अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी, जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने त्वरित एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं, 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
1: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
0: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते, ये विंडो खुला रहेगा।
1: श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल शोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई जिससे विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
2: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई, तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को संबंधित अधिकारियों को अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी देना अनिवार्य है और विदेश में मेहमान नवाजी के संबंध में FCRA अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की है। श्री अम्बालगन पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ओपलम से विधायक हैं। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक पदभार ग्रहण करने के बाद वे विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब के लुधियाना को हलवारा हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की पहली उड़ान के आगमन के साथ भारत के वाणिज्यिक विमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हवाई अड्डे के संचालन को क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। एयर इंडिया ने लुधियाना और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की हैं। इससे ब्रिटेन और रोम, मिलान तथा पेरिस सहित अन्य गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने आज कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां वायु शक्ति का ही विस्तार हैं। मानव रहित हवाई प्रणालियों पर सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज तथा इंडियन मिलिट्री

0: द्वारा आयोजित एक संयुक्त सेमिनार और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां अभियानों के दौरान मानव जीवन के जोखिम को कम करती हैं। ओमान के मुलद्दा में बांग्लादेश के चार भाइयों के शव एक खड़ी कार के अंदर मिलने से प्रवासी समुदाय और उनके गृहनगर चट्टोग्राम में शोक का माहौल है। पुलिस को शवों की जानकारी दो बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा दी गई। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
1: सबसे पहले बात बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12, 21-13 से हराया। उधर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को जापान की अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउथ विदत्सरन से होगा। टेनिस कोर्ट का रुख करें तो इटली ओपन में महिला सिंगल्स फाइनल मुकाबला कल यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। सेमीफाइनल में स्वितोलिना ने पोलैंड की इगा स्वियातेक को, वहीं कोको गॉफ ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को पराजित किया। कोको गॉफ वीनस विलियम्स के बाद लगातार इटली ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बन गई है। इस बीच क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था।
0: मौसम विभाग ने आज कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय मौसम गर्म रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में ये सुनते हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट का गिटार वादन राग मिश्र पीलू में।

पंडित विष्णुमोहन भट्ट का गिटार वादन आप सुन रहे थे राग मिश्र पीलू में। आइए आप सुनते हैं देवाशीष भट्टाचार्य का गिटार वादन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं भटियाली धुन।

देवाशीष भट्टाचार्य का गिटार वादन भी आप सुन रहे थे। आप प्रस्तुत कर रहे थे भटियाली धुन। उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम इसी के साथ समाप्त होता है। आइए अब सुनते हैं पुरानी फिल्मों से नगमों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। वक्त फिल्म से सुनिए आशा भोसले की आवाज में साहिर का लिखा हुआ ये गीत, जिसे संगीत निर्देशन दिया है रवि ने।

हम आपको सुनवाते हैं तलत महमूद की आवाज़ में ये अगला गीत जो हमने लिया है फिल्म लाला रुख फिल्म से। शब्द लिखे हैं कैफी आजमी ने और संगीत है खयाम का।

0: आप सुन रहे थे भूले बिसरे गीत। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। आइए अब सुनते हैं उर्दू कार्यक्रम अंजुमन। उर्दू कार्यक्रम में सुनिए मकाला, जदीद उर्दू नज्म और अल्ताफ हुसैन हाली। मकाला निगार है मोहम्मद आलम।
1: जदीद उर्दू नज्म निगारी के पस मंज़र पर जब हम तायराना नज़र डालते हैं तो यह हकीकत वाज़े हो जाती है कि जदीद उर्दू नज्म का सरचश्मा 1857 की जंग आज़ादी से फूटा। ये एक ऐसा इनकलाब था जिसने हिंदुस्तान के सियासी, समाजी, तालीमी, इक्तसादी, गरज जिंदगी के हर शोबे को मुतासिर किया। पूरा मुआशरा मायूसी व अफसुर्दगी के समंदर में डूबा हुआ था। बेइत्मीनानी और नासूदगी को लोग अपना मुकद्दर समझ बैठे थे। नादिर शाह और मोहम्मद शाह अब्दाली के पै दर पै हमलों और मरहटों की यूरिश से दिल्ली वालों पर ऐसी मुसीबत टूटी जिसका तसव्वुर करना भी मुहाल था। मुगलिया सल्तनत का चिराग गुल हो चुका था। पूरे मुल्क पर बरतानवी हुकूमत का तसल्लुत था। नतीजतन हिंदुस्तान में मगरबी तहजीब बरगोबार लाने लगी। ऐसे माहौल में मुसलमानों की इस्लाह और उन्हें जदीद हालात से वाकिफ़ कराने के लिए सर सैयद ने 1870 में रिसाला तहजीबुल अखलाक जारी किया, जिससे मुसलमान कौम में जदीद रुझानात और नए तर्ज फ़िक्र का एहसास पैदा हुआ, जो तरक्की की मंजिलों को तय करता हुआ अंजुमन पंजाब की सूरत में सामने आया। अंजुमन का मकसद जदीद उलूम को देसी जबानों के ज़रिए मुल्क के बाशिंदों तक पहुँचाना था और इल्मी, अदबी, मुआशरती, सियासी व समाजी मसाइल पर इजहार ख्याल करना था। मस्कूरा मकासिद की हुसूलियाबी के लिए अंजुमन पंजाब की जानिब से अखबार आफ्ताब पंजाब का इजरा अमल में आया। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता रहा, हालात बदलते रहे। मगरबी उलूम व फ़नून के तहत मशरकी जहनों में जदीद तर्ज के सोते फूटने लगे, जिसका जिंदा सबूत नेचुरल शायरी की वो तहरीक है जो सर सैयद तहरीक के ज़ेर असर आज़ाद और हाल ही के ज़रिए जदीद नज़्म निगारी की सूरत में रूनुमा हुई, जिसका मतमह नज़र अदब को कौमी असलाह का आलयकार

सख्त तहय्युर है हमें। हाँ सुने हम भी कि है कौन सी खूबी तुझमें। रहम अपना तारुफ पेश करता है और कहता है, रहम है नाम मेरा, लुत्फो करम काम मेरा, फैज़ वीरानो आबाद में है आम मेरा, मोजज़न होता है जब फैज़ का मेरी कुलज़ुम, यास हो जाती है अम्बोह में उम्मीद के गुम। मिस्र में क़ैद से यूसुफ को निकाला मैंने, और अय्यूब के बेड़े को संभाला मैंने। मैं हर एक दौर में हो जाता हूँ इंसान के शरीक, मैं ना होता तो ना देता कोई इंसान को भीख। रहम की इन बातों का जवाब इंसान की ज़ुबानी हाली इस अंदाज़ में पेश करते हैं, हमने माना कि मुरव्वत भी बड़ी है एक चीज़, पर मुरव्वत के लिए शर्त है ऐ दोस्त तमीज़। यूं तो ऐ रहम तेरी ज़ात में

तभी दरिया ने मुझे दोस्त बना रखा है, तभी दरिया ने मुझे दोस्त बना रखा है। और उसका हर झूठ खामोशी से सुना दुनिया ने, उसका हर झूठ खामोशी से सुना दुनिया ने। मेरी सच बात पे हंगामा मचा रखा है, मेरी सच बात पे हंगामा मचा रखा है। और मेरी आंखों में दादाई शेर देखेंगे कि मेरी आंखों में अधूरे हैं कई ख्वाब अभी, मेरी आंखों में अधूरे हैं कई ख्वाब अभी। मेरी पलकों ने बड़ा बोझ उठा रखा है, मेरी पलकों ने बड़ा बोझ उठा रखा है। और इस तरह करता हूँ माँ बाप की अजमत का तवाफ, इस तरह करता हूँ माँ बाप की अजमत का तवाफ। जैसे काबे को निगाहों में बसा रखा है, जैसे काबे को निगाहों में बसा रखा है। हद से बाहर कभी जाने नहीं देता मुझको, हद से बाहर कभी जाने नहीं देता मुझको। खौफे महशर ने मेरा पाँव दबा रखा है, खौफे महशर ने मेरा पाँव दबा रखा है। और बांध दो नफ्स को तुम तकवे की जंजीर से चांद, बांध दो नफ्स को तुम तकवे की जंजीर से चांद। तुमने जिंदान में कैदी को खुला रखा है, तुमने जिंदान में कैदी को खुला रखा है। और एक गजल के चंद अशार और, कि दिल के बाजार में हमने ये खताकारी की, दिल के बाजार में हमने ये खताकारी की। जेब खाली थी, दिल के बाजार में हमने ये खताकारी की। जेब खाली थी मगर फिर भी खरीदारी की, जेब खाली थी मगर फिर भी खरीदारी की। और कितने ही रूठ गए दुनिया के सूरज मुझसे, कितने ही रूठ गए दुनिया के सूरज मुझसे। मैंने जब भी किसी जुगनू की तरफदारी की, मैंने जब भी किसी जुगनू की तरफदारी की। और संग दिल होने का अपना गुमा बाकी रखा, संग दिल होने का अपना गुमा बाकी रखा। हमने हर मरतबा बारिश में आजादारी की, हमने हर मरतबा बारिश में आजादारी की। संग दिल होने का अपना गुमा बाकी रखा, हमने हर मरतबा बारिश में आजादारी की। और मेरे चेहरे से तो गायब थे मेरे एहसासात, मेरे चेहरे से तो गायब थे मेरे एहसासात। मेरी आंखों ने मेरे होठों से गद्दारी की, मेरी आंखों ने मेरे होठों से गद्दारी की। और तेरी तस्वीर बनाई जो लहू से अपने, तेरी तस्वीर बनाई जो लहू से अपने। नौके खंजर से बदन पर तेरे गुलकारी की, नौके खंजर से बदन पर तेरे गुलकारी की। मैंने गम का कभी रखा नहीं लेखा जोखा, मैंने गम का कभी रखा नहीं लेखा जोखा। मैंने हंसकर सदा तकदीर से अय्यारी की, मैंने हंसकर सदा तकदीर से अय्यारी की। और सुन के शायद वो चला आए अयादत के लिए, सुन के शायद वो चला आए अयादत के लिए। मेरे भाई को खबर भेज दो बीमारी की, मेरे भाई को खबर भेज दो बीमारी की। और एक गजल तरन्नुम से कोशिश कर रहा हूं कि चश्मे

और या तो करना था अपने नफ्स को कैद, या तो करना था अपने नफ्स को कैद, या तो करना

0: अपने कद को सिकोड़ लेना था, अपने कद को सिकोड़ लेना था, चश्मे नम को निचोड़ देना था। और एक मदर्स डे अभी रविवार को गुजरा है, तो एक नज्म पढ़ना चाहता हूं मैं माँ के ऊपर। क्यावा जुल्फे सवारे जब, फलक पर देखूं तारे जब, कोई बेटा पुकारे जब, नजर कोई उतारे जब, मुझे माँ याद आती है, मुझे माँ याद आती है। और नजर में बेकरारी देख, गुलों पर नौ बहारी देख, कोई बेटी दुलारी देख, बेचारी अबला नारी देख, मुझे माँ याद आती है, मुझे माँ याद आती है। दियों की जलती बाती से, सुमन चाची की खांसी से, सिलों पर पिस्ती चटनी से, और शहर की बासी रोटी से, मुझे माँ याद आती है, मुझे माँ याद आती है। वो पुश्तैनी मकानों में, नसीहत के बयानों में, दुआ देती जबानों में, पुराने पानदानों में, मुझे माँ याद आती है, मुझे माँ याद आती है। और कभी बारिश का पानी देख, छुपा कर देता दानी देख, और चुनर पर बूटे धानी देख, कोई चिट्ठी पुरानी देख, मुझे माँ याद आती है। और आखिरी बंद के, कसम जब दे कोई सर की, सदा सुनकर कलंदर की, दरो दीवार में घर की, गजल पढ़कर मुनव्वर की, मुझे माँ याद आती है, मुझे माँ याद आती है। एक गजल और, कि जो आग तुमने लगाई है इस जमाने में, जो आग तुमने लगाई है इस जमाने में, कई सौ साल लगेंगे उसे बुझाने में, कई सौ साल लगेंगे उसे बुझाने में, और जुदा हुए थे जो कहकर मिलेंगे मक्तल में। मक्तल कहते हैं खून के मैदान को, जहां पर कत्ल किया जाता है, कत्ल के मैदान को। जुदा हुए थे जो कहकर मिलेंगे मक्तल में, वो दोनों साथ में थे कल शराब खाने में, वो दोनों साथ में थे कल शराब खाने में, और खड़े हैं अमन के दुश्मन लिए हुए शमशीर, खड़े हैं अमन के दुश्मन लिए हुए तलवार, हम ही से देर हुई अपना सर कटाने में, हम ही से देर हुई अपना सर कटाने में, और मैं कैसे रोकूं इन आंखों में दर्द का सैलाब, मैं कैसे रोकूं इन आंखों में दर्द का सैलाब, मैं कैसे रोकूं इन आंखों में दर्द का सैलाब, रखूं मैं कैसे समुंदर को शामियाने में, रखूं मैं कैसे समुंदर को शामियाने में। और रिहाई कैदी को मिलती है पंछियों को नहीं, रिहाई कैदी को मिलती है, रिहाई कैदी को मिलती है पंछियों को नहीं, यही तो फर्क है पिंजरे में कैद खाने में, यही तो फर्क है पिंजरे में कैद खाने में, यही तो फर्क है पिंजरे में कैद खाने में। और वहां की खाक भी करती है दर्दे दिल का इलाज, वहां की खाक भी करती है दर्दे दिल का इलाज, ये शह मिलेगी फकीरों के आस्ताने में, ये शह मिलेगी फकीरों के आस्ताने में, मेरे बदन में तलाशो न रूह मेरी चांद, मेरे बदन में तलाशो न रूह मेरी चांद, मैं खुद ही रहता नहीं अपने आशियाने में, मैं खुद ही रहता नहीं अपने आशियाने में, और जो आग तुमने लगाई है इस जमाने में, कई सौ साल लगेंगे उसे बुझाने में। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: कलामी शायर में अभी आप सुन रहे थे मिसवाउद्दीन चांद अकबराबादी को, और अब सुनिए अफसाना।

0: द्विपक्षीय व्यवहार और प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
1: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करे और विनम्र का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप की 6 दिन के दौरे पर पहले चरण में आज अबूधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। एक रिपोर्ट।
2: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉक्टर जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत माध्यम लड़ाकू विमान AMCA निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए NEET UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली NEET UG परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज

0: राम में भारतीय पेट्रोलियम प्रबंधन संस्थान में 11वें विचार मंथन सत्र की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने बताया कि सत्र में भारत के तेल और गैस क्षेत्र में अनुसंधान, विकास, नवाचार और स्टार्टअप्स पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रदेन्द्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कूच विहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की। भारत का माल और सेवा कुल निर्यात अप्रैल 2026 में 80 अरब 80 करोड़ डॉलर रहने का अनुमान है। यह पिछले वर्ष अप्रैल की तुलना में 13.6% अधिक है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीटर वेव 196.1 मीटर 30,530 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की तीसरी सभा। श्रोताओं, सभा के आरंभ में हम आपको बताने वाले हैं कि आज के कार्यक्रम में, आज की सभा में हम कौन कौन से कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं।

अभी से कुछ ही देर बाद यानी कि 5:10 पर भक्ति परक फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुन सकते हैं आप, जिसका नाम है सुर संध्या। इसके ठीक बाद यानी कि 5:30 पर युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युवाणी होगा, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे वार्ताकार साक्षी गुप्ता की वार्ता, समाज की सबसे मूल्यवान संस्था है परिवार।

श्रोताओं, कार्यक्रम ग्राम्य लोक का समय रहेगा शाम 6 बजे, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर सत्येंद्र पाल सिंह से अनेंद्र सिंह की बातचीत। विषय रहेगा कृषि में कंप्यूटरकृत संदेश तकनीक का महत्व।

श्रोताओं, शाम 6:30 का समय होता है कार्यक्रम मजदूर मंडल का, जिसमें आज सुनिएगा विनोद कुमार से उनकी कानूनी वार्ता। विषय रहेगा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम।

कार्यक्रम विविधा हमेशा की तरह शाम को 7:10 पर प्रसारित किया जाएगा, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे विकास शुक्ला अभय विकास से काव्य पाठ। श्रोताओं, अगर रखते हैं आप कव्वालियों में विशेष रुचि तो हम

आपके पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा रात को 10 बजे। कार्यक्रम का नाम है रजनीगंधा। श्रोताओं, ये था हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर एक नजर। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे भक्ति परक फिल्म।

कार्यक्रम होगा। रात को 10 बजे कार्यक्रम का नाम है रजनीगंधा। श्रोताओं, ये था हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर एक नजर। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे भक्ति परक फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या।

ए आर रहमान की आवाज़ में आप सुन रहे थे फिल्म जोधा अकबर का ये गीत, जिसे लिखा था जावेद अख्तर ने, संगीत था ए आर रहमान का, गीत गाता चल। इसमें सुनिए आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह की आवाज़ में, गीत और संगीत है रविंद्र जैन का।

लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ में आप सुन रहे हैं पुकार फिल्म का ये गीत। मजरूह सुल्तानपुरी और जावेद अख्तर ने गीत को लिखा है, संगीत है ए आर रहमान का।

लता मंगेशकर के गाए फिल्म पुकार के इस गीत के साथ ही सुर संध्या कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं युवाओं का दैनिक कार्यक्रम शो वाणी।

नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका कार्यक्रम युववाणी में, जहां आज आपके साथ है आपकी रेडियो वाली दोस्त कनिका सिंह। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये बताइए, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे और अपने आप को हाइड्रेटेड भी रख रहे होंगे, क्योंकि गर्मी का पारा तो लगातार चढ़ता ही जा रहा है। वैसे दोस्तों, इन दिनों ना सिर्फ मौसम का पारा ही नहीं, महंगाई का पारा भी खूब चढ़ रहा है। अब आज सुबह की बात ले लीजिए, सुबह सुबह अखबार की हेडलाइंस यही कह रही थी कि पेट्रोल और डीजल के दाम फिर बढ़ गए, और इसका असर हमें हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी में साफ साफ दिखाई दे रहा है हर तरीके से। वैसे दोस्तों, ये अनसर्टेनिटी का जो माहौल है ना, वो इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। रुपए में गिरावट आ रही है, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और दुनिया के कई देशों के बीच बढ़ता तनाव। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसे हालात पैदा क्यों हो रहे हैं? तो इसके पीछे ना कई वजह हैं। देशों के बीच बढ़ता ध्रुवीकरण, सैन्य गठबंधन, सत्ता की प्रतिस्पर्धा और लगातार बढ़ते संघर्ष। दोस्तों, इसी के साथ ना एक और बड़ी चिंता है जो लगातार बढ़ती ही जा रही है, वो है परमाणु हथियारों की होड़। आज दुनिया का हर देश खुद को ज्यादा ताकतवर साबित करने की कोशिश में लगा है। लेकिन जरा ये सोचिए, अगर हर देश परमाणु हथियार बनाने लगे तो दुनिया कितनी असुरक्षित हो सकती है? इसी खतरे को रोकने के लिए दुनिया के कई देशों ने मिलकर एक समझौता किया, जिसे कहते हैं NPT, यानी कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये नाम ना सुनने में जरा सा कठिन लग सकता है आपको, लेकिन इसकी बात बहुत आसान है। इस संधि का मकसद ही है परमाणु हथियारों के फैलाव को रोकना और परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ शांति और विकास के कामों के लिए सुनिश्चित करना। इस समझौते पर साल 1968 में हस्ताक्षर किए गए थे और 1970 में इसको लागू किया गया। आज दुनिया के 191 देश इसका हिस्सा हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। NPT के तहत सदस्य देशों को नए परमाणु हथियार नहीं बनाने होते हैं, बदले में उन्हें परमाणु ऊर्जा की शांतिपूर्ण उपयोग के लिए तकनीक और सहयोग दिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जिन देशों के पास पहले से परमाणु हथियार हैं, उनसे भी यही उम्मीद की जाती है कि वे धीरे धीरे अपने हथियार कम करें और दुनिया को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित बनाने में योगदान दें। हर 5 साल में संधि की समीक्षा भी की जाती है, ताकि ये देखा जा सके कि दुनिया शांति

और निरस्त्रीकरण की दिशा में कितनी आगे बढ़ रही है। दोस्तों, इस संधि को लगभग 55 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी कई चुनौतियां हैं जो सामने हैं। हाल ही में हमने देखा, ईरान ने संधि से बाहर निकलने की बात कही है, वहीं अमेरिका और रूस, इन दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों को नियंत्रित करने वाली न्यू स्टार्ट संधि भी इस साल खत्म होने जा रही है। अब ऐसे में दुनिया में परमाणु हथियारों को लेकर चिंता तो वाकई बढ़ गई है। भारत ने भले ही एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत हमेशा जिम्मेदारी के साथ परमाणु नीति अपनाने की बात करता है। हमारा देश नो फर्स्ट यूज नीति का मतलब है, यानी कि भारत पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो दोस्तों, आज दुनिया को हथियारों की तो जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है समझदारी और शांति की। क्योंकि जब देश आपस में संवाद और सहयोग बढ़ाते हैं, तभी दुनिया सुरक्षित और बेहतर बनती है।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप तो जानते ही हैं आज की तारीख है 15 मई, और 15 मई को सबसे ज़्यादा हम किस बारे में बात करना पसंद करते हैं। चलिए लाइनों के ज़रिए बताती हूँ। खुशियों का आशियाना है परिवार, हर मुश्किल में सहारा है परिवार, रिश्तों की डोर से बंधा है परिवार, जीवन का अनमोल तोहफा है परिवार। इन पंक्तियों में सबसे ज़्यादा जिसके बारे में बात हो रही है वो है हमारा परिवार, यानी कि आज हम सभी मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। दोस्तों, हमारे परिवार का ना हर हिस्सा बहुत ज़रूरी होता है और प्रिय भी होता है। अब यूँ सोचिए कि आजकल हम भले ही सोशल मीडिया के एडवांसिंग ज़माने में भले ही हम अपने मोबाइल की स्क्रीन से ज़्यादा बिजी हो गए हों, लेकिन इस बीच में फिर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने परिवार वालों के साथ बैठना, अपने परिवार जन के साथ दुख सुख की बातें करना। आफ्टर ऑल, हम उनके साथ सुरक्षित महसूस करते हैं, उनसे हमें अच्छे संस्कार मिलते हैं, और हमारी जीवन की धुरी है हमारा परिवार, हमारे भाई बहन, हमारे माँ बाप। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ हम मिलते हैं हमारी आज की वार्ताकार साक्षी गुप्ता जी से, जिनसे हम जानेंगे समाज की सबसे मूल्यवान संस्था है परिवार।
1: परिवार केवल एक घर में साथ रहने वाले लोगों का समूह नहीं है, बल्कि यह प्रेम, विश्वास, त्याग, समझदारी और अपने तत्व की वह नींव है जिस पर पूरा समाज टिका होता है। मनुष्य अपने जीवन की पहली शिक्षा परिवार से ही प्राप्त करता है। बोलना, व्यवहार करना, दूसरों का सम्मान करना, भावनाओं को समझना और जिम्मेदारियां निभाना, यह सब हमें परिवार से ही सीखने को मिलता है। आज के समय में दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। लोगों की सोच, जीवन शैली और प्राथमिकताएं पहले से अलग हो चुकी हैं। ऐसे में रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए केवल प्यार ही नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने की भी क्षमता बहुत

जरूरी हो गई है। अक्सर देखा जाता है कि शादी के बाद छोटी छोटी बातों पर मतभेद शुरू हो जाते हैं। कभी पीढ़ियों की सोच अलग होती है, कभी अपेक्षाएं अलग होती हैं, तो कभी संवाद की कमी रिश्तों में दूरी पैदा कर देती है। धीरे धीरे वही छोटी बातें बड़े झगड़ों का रूप ले लेती है। कई बार लोग गुस्से या दूसरों की सलाह में आकर ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर रिश्ता समय के साथ बदलता है और हर रिश्ते को समय के साथ समझने की जरूरत होती है। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान अपने संस्कार, वातावरण और अनुभवों के अनुसार सोचता है। इसलिए परिवार को मजबूत बनाने के लिए सबसे जरूरी है एक दूसरे को बदलने की जिद छोड़कर एक दूसरे को समझने की कोशिश करना। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि रिश्ते तब टूटने लगते हैं जब लोग सुनना बंद कर देते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे समझा जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान हो, लेकिन जब संवाद की जगह केवल आरोप, गुस्सा और अहंकार आ जाए तो रिश्तों में दूरी बढ़ने लगती है। आज लोगों में सहनशीलता पहले की तुलना में कम होती जा रही है। हम चाहते हैं कि सामने वाला तुरंत हमारी सोच के अनुसार बदल जाए, लेकिन रिश्ते किसी मशीन की तरह नहीं चलते। परिवार को मजबूत बनाने के लिए धैर्य, समय और भावनात्मक समझ की आवश्यकता होती है। हमारे धर्म ग्रंथ भी यही शिक्षा देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को अपने क्रोध, अहंकार और अधीरता पर नियंत्रण रखने का संदेश दिया है। गीता में कहा गया है, क्रोधाद् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, अर्थात क्रोध और भ्रम मनुष्य की बुद्धि को कमजोर कर देते हैं। जब व्यक्ति केवल अपने अहंकार से सोचता है तब वह रिश्तों की गहराई को समझ नहीं पाता। गीता हमें यह भी सिखाती है कि जीवन परिवर्तन का नाम है। जो व्यक्ति समय के अनुसार स्वयं को समझदारी से बदलना सीख लेता है, वही जीवन और रिश्तों में संतुलन बना पाता है। परिवार में भी यही बात लागू होती है। माता पिता को नई पीढ़ी की सोच को समझने की कोशिश करनी चाहिए और नई पीढ़ी को भी बड़ों के अनुभव और भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। पति पत्नी को एक दूसरे को प्रतियोगी नहीं बल्कि साथी समझना चाहिए। रिश्ते जीतने से नहीं निभाने से मजबूत बनते हैं। आज कई परिवार इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि लोग मैं सही हूँ साबित करने में ज्यादा ऊर्जा लगा रहे हैं, जबकि जरूरत हम साथ कैसे सही रह सकते हैं यह सोचने की है। यदि परिवार में हर व्यक्ति थोड़ा धैर्य रखे, थोड़ा झुके, थोड़ा सुने और थोड़ा समय के साथ खुद को बदले तो अधिकांश समस्याएं अपने आप हल हो सकती हैं, क्योंकि परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं बल्कि भावनात्मक समझ और आपसी सहयोग का नाम है। परिवार टूटने का असर केवल दो लोगों पर नहीं पड़ता बल्कि बच्चों, बुजुर्गों और पूरे समाज पर पड़ता है। जिन बच्चों को घर में रोज झगड़े देखने को मिलते हैं, उनके मन पर गहरा मानसिक प्रभाव पड़ता है। बच्चे घर के माहौल को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। जब वे रोज झगड़े, तनाव, चिल्लाना या रिश्तों में दूरी देखते हैं, तो उनके मन में डर और असुरक्षा पैदा होने लगती है। कई बच्चे अंदर से चुप और अकेले हो जाते हैं, जबकि कुछ गुस्सैल या जिद्दी बन जाते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार लगातार तनावपूर्ण पारिवारिक माहौल बच्चों के आत्मविश्वास, पढ़ाई और मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालता है। वे रिश्तों पर भरोसा करना कम कर सकते हैं और बड़े होकर भावनात्मक रूप से असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। कई बार माता पिता के बीच दूरी का दर्द बच्चे जीवन भर अपने अंदर लेकर चलते हैं। बच्चे वही सीखते हैं जो वे घर में देखते हैं। यदि घर में सम्मान, धैर्य और संवाद होगा तो बच्चे भी वही गुण सीखेंगे, लेकिन यदि घर में हमेशा अपमान, कटुता और अहंकार का वातावरण रहेगा तो उसका प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर भी पड़ेगा। इसलिए परिवार का वातावरण केवल आज नहीं आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। अंत में बस इतना ही, परिवार समाज की सबसे मूल्यवान संस्था है। इसे मजबूत रखने के लिए प्रेम के साथ साथ समझ, धैर्य और समय के अनुसार खुद को बदल

0: चलने की भावना भी आवश्यक है। जब परिवार जुड़े रहते हैं तभी समाज मजबूत और संस्कारी बनता है।
1: दोस्तों, अभी हमने सुना हमारी आज की वार्ताकार साक्षी गुप्ता को, जिन्होंने हमें समझाया समाज की सबसे मूल्यवान संस्था है परिवार। तो दोस्तों, क्यों ना परिवार दिवस सिर्फ आज के दिन ही नहीं, हर रोज मनाया जाए। अपनों के साथ बैठें, उनसे बातचीत करें और खूब सारे मजे करें, खुशियाँ बांटें। वेल दोस्तों, खुशियाँ तो हम बांटते रहेंगे, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं तरक्की की। दोस्तों, आज भारत जिस तरह से स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है ना, वह पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनता जा रहा है। दोस्तों, भारत अब सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च करने तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष को सुरक्षित रखने की दिशा में भी लीड कर रहा है। और इसी का एक बड़ा उदाहरण है इसरो का नया प्रोजेक्ट नेत्रा। आज अंतरिक्ष में बहुत सारी चीजें घूम रही है, पुराने सैटेलाइट, रॉकेट के टुकड़े, छोटे छोटे पिन जिन्हें हम स्पेस डेब्रिस कहते हैं, ये कभी कभी हमारे एक्टिव सैटेलाइट से टकरा सकते हैं, जिससे कम्युनिकेशन, इंटरनेट, जीपीएस और मौसम जैसी जरूरी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। और इसी खतरे को देखते हुए इसरो ने बनाया है प्रोजेक्ट नेत्रा, यानी कि नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। इसका काम ना बहुत आसान है, जैसे कि अंतरिक्ष में क्या क्या चीजें घूम रही हैं उन पर नजर रखना और किसी भी खतरे की पहले से ही जानकारी देना। दोस्तों, नेत्रा जमीन पर लगे रडार, टेलीस्कोप और डेटा सिस्टम की मदद से अंतरिक्ष की निगरानी करता है। यह लगभग 10 सेंटीमीटर तक छोटे ऑब्जेक्ट को भी ट्रैक कर सकता है और करीब 3400 किलोमीटर तक की रेंज में नजर रखता है ना दोस्तों, कितनी ही बढ़िया बात है ये। और अगर किसी सैटेलाइट के सामने टक्कर का खतरा आता है ना, तो जो नेत्रा है वो पहले से ही अलर्ट कर देता है, ताकि सैटेलाइट की दिशा बदल कर उसे सुरक्षित रखा जा सके। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे भारत अब अपनी अंतरिक्ष निगरानी खुद कर सकता है और दूसरे देशों पर निर्भरता भी कम हो जाती है। दोस्तों, जब भारत प्रोजेक्ट नेत्रा जैसी टेक्नोलॉजी में अंतरिक्ष में अपनी ताकत दिखा रहा है, उसी तरह देश हेल्थ सेक्टर में भी डिजिटल बदलाव ला रहा है। और इसी बदलाव का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है जननी प्लेटफॉर्म। जननी का पूरा नाम है जर्नी ऑफ इटीनेटल नेटल एंड न्यूनेटल इंटीग्रेटेड केयर। अब इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा डिजिटल सिस्टम है जो मां बनने की पूरी यात्रा को ट्रैक करता है, यानी कि प्रेगनेंसी से लेकर बच्चे के जन्म और उसके बाद की देखभाल तक सब कुछ एक ही जगह पर। पहले ये जानकारी अलग अलग जगहों से होती थी, लेकिन अब सब कुछ एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गया है। यह पुराने आरसीएच पोर्टल का अपग्रेडेड वर्जन यानी कि स्मार्ट वर्जन है, जिसका एक ही उद्देश्य है माँ और बच्चे तक समय पर सही इलाज और देखभाल पहुंचाना। अब इसके कुछ आसान फीचर्स हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी से लेकर बच्चे के टीकाकरण तक पूरी जानकारी। उसके अलावा अगर प्रेगनेंसी हाई रिस्क है तो सिस्टम तुरंत अलर्ट भेज देता है। क्यूआर कोड वाला मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर कार्ड, जिससे मेडिकल रिकॉर्ड कभी भी देखा जा सकता है। ये नजदीकी अस्पताल और पोषण से जुड़ी जानकारी भी हमें देता है। और मैं आपको बता दूं, इस पर ना रजिस्ट्रेशन करना बड़ा ही आसान है। आभा या आधार कार्ड के जरिए, ओटीपी या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए इसको किया जा सकता है। तो दोस्तों, असर भी बहुत बड़ा है। इसको अभी तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, यानी कि 30 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा चुका है और उनकी हेल्थ को भी ट्रैक किया जा रहा है। दोस्तों, जब इतना अच्छा जो है हमने एक रिकॉर्ड सेट कर दिया है, तो क्यों ना इसे इस अगले वाले गाने को सुनकर सेलिब्रेट कर लिया जाए।

दोस्तों मैं अभी आपसे कह रही थी ना कि हाइड्रेटेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जैसे जैसे ये गर्मी बढ़ती जा रही है ना, क्या हो रहा है, हम डिहाइड्रेटेड महसूस कर रहे हैं। कैसे? जैसे कि मुंह काफी जल्दी सूख जाता है, थकान महसूस होने लग जाती है, चक्कर होता है या सिर दर्द होता है। अब ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, यानी कि डिहाइड्रेटेड होने से बचें। ज्यादा से ज्यादा मौसमी फल सब्जियां इसको जरूर सेवन में लाएं, और तो और अपने साथ हमेशा एक वाटर बॉटल जरूर रखें। और अगर आप पानी पीना भूल जाते हैं ना मेरी तरह, तो आप भी अपने मोबाइल में एक हाइड्रेशन रिमाइंडर जरूर लगा सकते हैं, तो जो कि घंटे घंटे में आपको पानी पीने की याद दिलाता रहेगा। पानी पीने के साथ साथ आप है ना जूसेस का सेवन भी कर सकते हैं। वेल ऑन दैट नोट, आपके लिए आ रहा है एक प्यारा सा आखिरी गीत।

दोस्तों घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब वक्त हो चला है अगले कार्यक्रम के कंपेयर के आने का। तो मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त कनिका सिंह आपसे चाहूंगी इजाजत। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम जिसका नाम है मजदूर मंडल, जिसका नाम है ग्राम्य लोक।

नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम ग्रामीलोक में। और आज आपके इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूं मैं, आपकी रेडियो साथी अनुप्रिया। और बताइए साथियों, कैसे हैं आपके हालचाल? वैसे तो इस गर्मी ने सबके हाल बेहाल किए हुए हैं, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखिए, क्योंकि जरा सी लापरवाही से सेहत बिगड़ते देर नहीं लगती। क्योंकि भाई, सेहत दुरुस्त तो सब दुरुस्त, और एक खेतीहर होने के नाते आपको न केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बल्कि अपने पशुओं का भी ख्याल रखना है। साथियों, गर्मी बढ़ रही है और कुछ ही महीनों में बरसात भी शुरू हो जाएगी, तो उनके खान पान के साथ साथ उनके टीकाकरण का भी जरूर ध्यान रखें। किसान भाइयों, पशुओं में टीकाकरण पशुओं को खुरपका, मुंहपका, गलघोटू, लंगड़ा बुखार और ब्रुसेलोसिस जैसी जानलेवा बीमारियों से बचाने का सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीका है। मुख्य टीके जैसे FMD और BQ वर्षा ऋतु से पहले मई, जून या नवंबर में लगाए जाते हैं। किसान भाइयों, टीका लगवाते समय ये ध्यान रखें कि पशु बीमार ना हो। अगर पशु बीमार है या गर्भावस्था के अंतिम चरण में है तो उसे टीका नहीं लगवाएं, और हो सके तो टीका हमेशा सुबह के समय लगवाएं। ध्यान रखें साथियों कि जब भी आप अपने पशु को टीका लगवाने ले जा रहे हों, तो उससे करीब 15 से 20 दिन पहले उसको पेट के कीड़ों की दवा अवश्य दें, और उसका रिकॉर्ड रखने के लिए पशु स्वास्थ्य कार्ड जरूर बनवाएं। और साथियों, ये तो आप जानते ही होंगे कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार खुरपका, मुंहपका और ब्रुसेलोसिस के लिए मुफ्त टीकाकरण और ईयर टैगिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। किसान भाइयों, जिस तरह से एक मनुष्य के लिए टीकाकरण का महत्व है, ठीक उसी प्रकार एक पशु के लिए भी, क्योंकि टीकाकरण पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर उन्हें संक्रामक रोगों से बचाता है, और इसकी वजह से इलाज पर होने वाले भारी खर्चे में भी काफी कमी आती है। साथ ही पशुओं की मृत्यु दर घटकर किसानों की आय सुनिश्चित करती है।

है, क्योंकि अगर पशु स्वस्थ रहेगा तो उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। साथियों, पशुओं में टीकाकरण न केवल पशुओं को बल्कि पशुओं से होने वाली बीमारी जैसे रेबीज आदि उनके संपर्क में आने वाले मनुष्यों को भी सुरक्षित रखता है। और ये तो आपने सुना ही होगा ना साथियों, उपचार से रोकथाम भली। इसलिए साथियों, अपने पशुओं की सेहत अगर दुरुस्त रखनी है तो समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं, ताकि आप और आपके पशु दोनों ही रहें खुशहाल। और साथियों, जब हम और आप कोई भी पशु पालते हैं तो उससे प्रेम और लगाव अपने आप ही हो जाता है, और वो भी परिवार का एक हिस्सा सा बन जाता है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जहाँ प्रेम, लगाव, देखभाल होती है वहीं परिवार है, और ये सब भावनाएं ही एक परिवार को परिवार बनाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अचानक से ये परिवार की बातें क्यों करने लगे, तो हम आपको बता दें, और शायद आप में से बहुत लोग जानते भी हों, कि आज यानी 15 मई को है विश्व परिवार दिवस। साथियों, परिवार हमारे जीवन का सबसे बहुमूल्य हिस्सा है। चाहे हम कितने ही व्यस्त क्यों ना हों, परिवार ही वो आधार है जो हमें मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाता है। और परिवार दिवस को मनाने का यही उद्देश्य है कि हम परिवार के महत्व को समझें और आपसी संबंधों को मजबूत रखें। और आज के समय में, यानी कि इस डिजिटल युग में, जहां मोबाइल, सोशल मीडिया और इंटरनेट हमारे समय का बड़ा हिस्सा लेते हैं, ऐसे में परिवार के साथ सच्चा जुड़ाव बनाना कभी कभी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। बच्चों का, बड़ों का और कुछ हद तक बुजुर्गों का भी ध्यान अक्सर मोबाइल की स्क्रीन पर केंद्रित हो जाता है, जिससे पारिवारिक बातचीत और समय कम हो जाता है। इसलिए साथियों, ये जरूरी है कि परिवार से जुड़ने के लिए कुछ स्मार्ट तरीके अपनाएं, जैसे एक साथ भोजन करना, साझा गतिविधियां करना, खुली बातचीत परिवार को मजबूत और खुशहाल बनाने में मदद करता है। साथियों, परिवार दिवस का मुख्य मंत्र है कनेक्शन और कन्वर्सेशन, यानी कि जुड़ाव और संवाद। साथियों, आज के दौर में वाईफाई से जुड़ना आसान है, लेकिन दिल से जुड़ाव ही असली जुड़ाव है, जिसे हमें और आपको हमेशा बनाए रखना है। क्योंकि आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि पर कितने ही दोस्त हों, लेकिन मुसीबत के वक्त आपका परिवार ही आपके साथ खड़ा होता है। तो सोशल मीडिया से बनाइए थोड़ी दूरी और करिए अपने परिवार की फरमाइश पूरी। और अब बातों पर लगाते हैं यही विराम और लेते हैं एक संगीत विराम।

0: साथियों, आज का युग डिजिटल युग है। हर क्षेत्र में तकनीक पहुंच चुकी है, यहां तक कि कृषि क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा है। तो आइए आज इसी संदर्भ में सुनवाते हैं आपको भेंट वार्ता, जिसमें कृषि में कंप्यूटरीकृत संदेश तकनीक का महत्व विषय पर डॉक्टर सत्येंद्र पाल सिंह से बातचीत कर रहे हैं अनिंद्र सिंह। आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
1: किसान साथियों नमस्कार। साथियों, आधुनिक कंप्यूटर के दौर में किस तरह से अर्थव्यवस्था में या कहें कि आईटी इंडस्ट्री में भारत ने अपना मुकाम एक कायम किया है विश्व पटल पर, उसका कृषि के लिए किस तरह से बेहतर उपयोग हो सकता है, इन सब बातों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सत्येंद्र पाल सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आकाशवाणी स्टूडियो में। नमस्कार।
2: नमस्कार भैया।
1: डॉक्टर साहब, आत्मनिर्भर अभियान बड़े जोर शोर से हमारी सरकार चला रही है आज, और आत्मनिर्भर बनने के इस अभियान के पीछे अगर हम देखें तो आईटी इंडस्ट्री या कहें कि कंप्यूटरीकृत डिजिटल व्यवस्था है, उसका बहुत बड़ा हाथ है। और कृषि के क्षेत्र में अगर हम देखें तो उसमें भी आज आधुनिकतम तकनीकें उपयोग में लाई जाने लगी हैं हमारे किसान साथियों द्वारा। तो मैं आपसे एक विशेषज्ञ के तौर पर ये जानना चाहूँगा कि कृषि के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किस तरह से महत्वपूर्ण है।
2: किसान भाइयों, राम राम। आज हमारा भारत जो है विश्व मंच पर तेजी से बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था है, और ये अर्थव्यवस्था की गति को बरकरार बनाकर रखना भी अपने लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि विश्व की जनसंख्या 125 अरब से ऊपर चली गई है, जो भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और सबसे ज्यादा हमारे लिए खाद्यान्न उत्पादन हमें ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना पड़ेगा
1: जी,
2: और उसके लिए जो है जब तक हम इन सब चीजों का उपयोग नहीं करेंगे तब तक ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि किसान भाइयों को विभिन्न प्रकार की परेशानियां आती हैं। जैसे सबसे ज्यादा जो किसान भाइयों को परेशानी आती है वो मौसम जो है वो उनको प्रतिकूल होता रहता है।
1: भारत की जो कृषि है पूरी की पूरी अगर हम देखें तो वो मौसम आधारित ही है।
2: बिल्कुल,
1: तमाम तरह की प्राकृतिक जो समस्याएं हैं, आपदाएं हैं, उनसे भी दो चार होना पड़ता है। हालांकि सरकार बहुत सारे प्रयास ऐसे कर रही है जहां पर इन समस्याओं को कुछ हद तक उन पर काबू किया जा सके किसानों को, लेकिन अवेयरनेस उतनी शायद आज के दौर में नहीं है। तो ये जो तंत्र है कंप्यूटर का या कंप्यूटर शिक्षा का, वो किस तरह से उपयोगी साबित हो सकता है इसके प्रति अवेयरनेस पैदा करने के लिए?
2: अभी जो लगातार देखा जा रहा है उसमें क्या हो रहा है कि जो अधिकतर हमारा फार्मर है वो अभी परंपरागत खेती कर रहे हैं।
1: जी जी।
2: और हमें परंपरागत खेती से थोड़ा सा हटकर वैज्ञानिक तरीके से खेती की ओर हमें आना पड़ेगा, या जैसे कि आजकल आप कहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अगर हम थोड़ा सा उपयोग कर लें,
1: उसका समावेश अपनी एग्रीकल्चर में हमें जरूर करने की जरूरत है।
2: समावेश कर लें। जो हमारे पुराने किसान भाई थे वो किसान भाई मोबाइल का और इन सब चीजों का उपयोग कम से कम किया करते थे, मगर आज के परिदृश्य में जो हमारे युवा किसान भाई हैं या जो हमारे किसान भाइयों के साथ उनके परिवार के जो युवा जो उनके बच्चे जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग जो है आजकल एंड्रॉयड फोन जिसमें कि इंटरनेट व्यवस्थाएं उनको प्राप्त होती हैं उससे जुड़े हुए हैं। और भारत सरकार इस ओर इतना कार्य कर रही है कि विभिन्न प्रकार की सूचना के स्रोत उनको उपलब्ध कराने का कार्य वो लगातार करती चली आ रही है। उसी कड़ी में हमारा एक सबसे बड़ा जो हमारा इंस्टीट्यूट कहें, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
1: जी,
2: ये नई दिल्ली में, इनके द्वारा जो है किसान भाइयों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए और किस तरह से नई तरह की खेती की जाए इसकी जानकारी समय समय पर उपलब्ध कराई जाती है। वैज्ञानिक जो हमारे हैं जो बाकी किसान भाइयों को और तमाम लोगों को जो जानकारी उपलब्ध कराते हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ। इसके अलावा किसान भाइयों को भी विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाती है
1: इन संस्थानों के द्वारा।
2: हाँ, इन संस्थानों के द्वारा।
1: तो किसान साथियों को जो कृषि वैज्ञानिक हैं लगातार उनके संपर्क में रहने की जरूरत है। कौन कौन से वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके जरिए किसान साथी इन संस्थानों से जुड़ सकते हैं या यहाँ के कृषि वैज्ञानिकों के साथ जुड़ सकते हैं?
2: जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर वैज्ञानिकों को भी, और इसके अलावा भारतवर्ष में जितने कृषि विश्वविद्यालय हैं उन सभी के वैज्ञानिक

0: वैज्ञानिकों को ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाती है, कृषि अनुसंधान संस्थान जो होते हैं उनको भी ट्रेनिंग कराई जाती है। इसके अलावा जो किसानों के लिए सीधे तौर पर काम करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र,
1: जी
0: जिनको के अधिकतर किसान सभी लोग जानते हैं, तो उनको ये ट्रेनिंगें जो हैं समय समय पर उपलब्ध कराई जाती हैं। और जो तकनीक हमारे पास आती है वो तकनीक किस प्रकार से किसानों के पास तक पहुंचाई जाए इसकी भी जानकारी जो है वो उपलब्ध कराते हैं कि आप इन इन माध्यमों के द्वारा जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं।
1: जी
0: तो ये सभी ट्रेनिंग जो है हमें वहां से उपलब्ध कराई जाती हैं। और इसी कड़ी में चलते हुए भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत गांव-गांव में अब आप देखेंगे इंटरनेट की व्यवस्था कर दी गई है,
1: जी
0: जिसके द्वारा आप जो है सीधे तौर पर सूचना जो नई नई आ रही है उनका लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं।
1: आज के दौर में जो ग्राम सभाएं हैं उनको भी ब्रॉडबैंड के जरिए सरकार इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करा रही है,
0: बिल्कुल
1: तो किसान चौपाल होती हैं, लगातार किसान सीधे तौर पर कृषि वैज्ञानिकों के साथ उन चौपालों में चर्चा कर सकते हैं।
0: हाँ बिल्कुल कर सकते हैं।
1: जी
0: इसी कड़ी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के हमारे भारतवर्ष के अंदर जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं उन सभी कृषि विश्वविद्यालय के अंदर जो है उन्होंने किसान कॉल सेंटर,
1: जी
0: क्या होता है कि किसानों के लिए सबसे सुगम एक ये होता है कि वो अगर कुछ भी नहीं इंटरनेट से भी नहीं कर पा रहा है तो वो उनको कॉल कर लेता है वैज्ञानिकों को। और सबसे अच्छी एक ये बात है कि जिस भाषा में किसान जो है कॉल करता है उसे उसी भाषा में वैज्ञानिकों के द्वारा उनको जानकारी दी जाती है। कृषि विज्ञान केंद्रों के अंदर एक ये रखा गया है कि लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, तो उनको वो लोकल लैंग्वेज आती है तो उसी में उनकी समस्याएं और उनका निवारण किस प्रकार से किया जाए और नई नई तकनीकियों की जानकारी उनको कैसे उपलब्ध कराई जाए ये फोन के माध्यम से भी उनको उपलब्ध करा दी जाती है, जो कि फोन नंबर सभी किसान भाइयों के लिए फ्री में है। आप
1: टोल
0: कभी भी
1: फ्री
0: नंबर,
1: है।
0: हाँ टोल फ्री नंबर है जिसे हम बोलते हैं 1800-1800-155-1।
1: ये नंबर एक दफे किसान साथियों के लिए फिर से दोहरा दें आप, जो किसान कॉल सेंटर का नंबर है, जिससे कि अपनी भाषा में ही हिंदुस्तान के किसी भी कोने से किसान अपनी समस्याओं का समाधान पा सकता है। जी
0: मैं आपको बड़ा धीरे से बताऊंगा ताकि सभी किसान उसको लिख भी
1: जी
0: सकें।
1: जी
0: 1800-1800-1551
1: जी जी
0: ये टोल फ्री नंबर है जिस पर आप लोकल भाषा में उनसे जो है जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों से ये ICAR की नई दिल्ली की गाइडलाइन है कि आपको अपने पास किसानों का मोबाइल नंबर उनका डेटा उपलब्ध करके रखना है और समय समय पर आपको उनको SMS के जरिए भी जानकारी उपलब्ध करानी है, तो उनको हिंदी में SMS करके
1: जी
0: उनको जानकारी उपलब्ध करा देते हैं ताकि जो है वो अपनी जो बीज खाद इत्यादि की जितनी भी है वो सब उनको प्राप्त हो सके कि कहाँ से ये मिलेगा किस रेट में मिलेगा ये सब चीजें उनको जानकारी प्राप्त होती रहती है।
1: और स्थानीय तौर पर जो किसान साथी हैं उनको भी लगातार अपने कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क में रहने की जरूरत है, जिससे वो नवीनतम जानकारी हमेशा प्राप्त करते रहें। और जो किसान कॉल सेंटर आपने बताया, इसके अलावा भी बहुत सारे कृषि कार्यों से संबंधित ऐप हैं जिनके बारे में किसान साथियों को जानने की जरूरत है, जो उनके लिए फायदे के साबित हो सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जी
0: जैसा कि कृषि विज्ञान केंद्र के उसमें बताया गया था परिपेक्ष में, इसी तरह से ये ऐप भी जो है ना विभिन्न भाषाओं में बनाए गए हैं ताकि किसान भाई उसका जो है
1: भरपूर लाभ
0: उपयोग
1: ले सके।
0: भरपूर लाभ ले सकें। हिंदी वालों को हिंदी मिल जाएगा, पंजाब वालों को पंजाबी में मिल जाएगा, है ना, अगर आप केरल साइड में चले जाएं तो वहां उनकी लैंग्वेज मिल जाएगा, तो आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, हिंदी में मिल जाएगा, लोकल लैंग्वेज में ही मिल जाएगा, तो आप उनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपका जो है ऐप चलते हैं ई चौपाल या किसान चौपाल,
1: जी
0: ये जो ITC के द्वारा जो है ये ऐप चलाए जाते हैं और इसमें आपको अपना खाद बीज खरीदना बेचना, इसके अलावा जो आपको कृषि औजार हैं इनको खरीदना बेचना, अगर किसी भी तरह का कार्य किया जाता है तो ये ITC सेंटर जो है ये आपको सभी चीजें उपलब्ध कराते हैं और समय समय पर आपको जो है ये बिचौलिए और जिन दलाल जो होते हैं उनसे बचा के आपकी उपज का ज्यादा से ज्यादा आपको
1: सीधा मूल्य मिलता
0: सीधा
1: है।
0: मूल्य आपको प्राप्त कराते हैं। इसी तरह से आप आजकल देखिए जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं उन सभी कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर एक डिजिटल पट्टी चलती रहती है जिस पट्टी के ऊपर आपको शहर का जिले का नाम लिखाएगा और उसके बाद जो उसके यहाँ जो खाद्यान्न मंडी में बिक रहे हैं
1: जी
0: उनके जो है मूल्य

0: गेहूं इतने रुपए क्विंटल, चना इतने रुपए क्विंटल, सोयाबीन इतने, तो वो सभी आपको जो जानकारी है वो उपलब्ध होती रहेंगी
1: लेटेस्ट जानकारी उस पर
0: लेटेस्ट।
1: डिस्प्ले होती रहती है। किसान साथी वहां से जानकारी देख भी सकते हैं और जाके संपर्क तो स्थापित कर ही सकते
0: संपर्क
1: हैं।
0: भी कर सकते हैं, और आप अगर चाहें तो सरकार के द्वारा ई नाम प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसके तहत आप अपना माल स्वयं जो है बिना किसी बिचौलिए के उसको बेच भी सकते हैं,
1: जी
0: आपके वहीं से आपका माल जो है बिक जाएगा। इसके अलावा आपको बहुत सारे जो है वेदर फॉरकास्ट जिसे बोलते हैं, या मौसम से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के ऐप आजकल उपलब्ध हैं।
1: मौसम का पूर्वानुमान जो बताते
0: हाँ
1: हैं।
0: बिल्कुल,
1: जी
0: जैसे क्या होता है कि कभी कभी किसान भाई जो है दवाई छिड़कने के लिए जा रहे हैं और उन्होंने दवाई को छिड़क दिया, दवाई छिड़कते ही बारिश आ गई, अब वो हजारों रुपए की जो दवाइयां थी वो उनकी खराब हो जाती
1: जी
0: थी,
1: जी
0: या जो है उनको ये दिख रहा है कि हमारी फसल है और उनको 3 या 5 दिन का पूर्वानुमान हो रहा है, उनको ये मालूम है कि हो सकता है कि 5 दिन बाद बारिश होगी, तो वो अपनी जो फसल उसने काटी है तो काटने के बाद उस फसल को सुरक्षित जगह पर वो जो है उतने बीच में ले जाने का कार्य कर सकता है। तो
1: प्लानिंग
0: इससे
1: बेहतर
0: हाँ
1: तरीके से कर
0: बेहतर
1: सकते
0: प्लानिंग
1: हैं।
0: हो सकती है। अगर
1: जी
0: आप ये थोड़े से जो है ऐप के बारे में जानकारी कर लें तो आप जो है बेहतर प्लानिंग भी कर सकते हैं और अपनी फसल को जो है कीड़ों से, और इसके अलावा प्राकृतिक आपदा जो आ रही है, तेज बारिश आ रही है, कुछ हो रहा है, उन सब चीजों से आप उनको किसी हद तक बचाने का भी कार्य कर सकते हैं उसमें। इसके अलावा बहुत सारे और वेब ऐप बने हुए हैं
1: जी
0: जिनसे जो है आप जो है अपने फसल के फोटो खींचकर जो है भेज दीजिए, वो उसको देख के जानकारी हो जाएगी कौन सा कीड़ा है क्या लगा है, तो आपको जो है उसी दिन सेम डे है ना वैज्ञानिक जो है आपको उसके उपचार भी जो उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे ऐप चल रहे हैं और इनसे किसान भाई लगातार
1: सीधे
0: फायदा,
1: संपर्क
0: हाँ
1: में रह
0: सीधे
1: सकते हैं
0: संपर्क में
1: कृषि
0: रहकर अधिक से
1: वैज्ञानिकों के
0: अधिक
1: कि
0: लाभ उठा रहे हैं।
1: विशेषज्ञों।
0: बिल्कुल
1: जी, तो
0: बिल्कुल
1: कृषि के क्षेत्र में भी सूचना प्रौद्योगिकी किस तरह से आपको फायदा पहुंचा सकती है, किसान साथियों को लगातार नवीनतम जानकारी से अपडेट रख सकती है, इस पर बात आज हमने की। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: साथियों अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, कृषि में कंप्यूटरीकृत संदेश तकनीक का महत्व विषय पर। और अब समय है हमारे कार्यक्रम में नई श्रृंखला का। किसान भाइयों आपको जानकर खुशी होगी कि इस वर्ष 25 फसलों की नई किस्मों की खोज की गई है, जिनसे न केवल गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ेगा बल्कि बदलते मौसम, जलवायु जोखिमों और कीट रोगों से निपटने में भी मदद मिलेगी। और आज भी हम आपको एक नई किस्म के बारे में बताने जा रहे हैं। साथियों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित चावल की एक नई किस्म पूसा 2090, जबकि पुरानी पूसा 44 एक लंबी अवधि की किस्म है, जिसे नर्सरी में बीज बोने से लेकर अनाज की कटाई तक परिपक्व होने में 155 से 160 दिन लगते थे। एक महीने पहले मई में नर्सरी की बुआई के बाद जून के मध्य में रोपाई की जाने वाली ये फसल अक्टूबर के अंत में ही कटाई के लिए तैयार होती थी, लेकिन पूसा 2090 जल्दी पक जाती है, लगभग 120 से 125 दिनों में, और उच्च उपज देती है जिससे पराली जलाने की समस्या भी कम होती है। और पराली जलाना कम यानी प्रदूषण कम, तो कह सकते हैं कि पूसा 2090 किस्म के फायदे ही फायदे हैं। तो किसान भाइयों आप भी इस बार धान की खेती करें तो इस नई किस्म का ध्यान जरूर रखें। और साथियों अब समय हो गया है आपको मौसम की जानकारी देने का। साथियों बीते 24 घंटों में आगरा और उसके आसपास का तापमान अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहा, और आने वाले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तो साथियों तापमान दिन ब दिन बढ़ रहा है, ऐसे में अपनी और अपने परिवार की सेहत का खास ख्याल रखें। तेज धूप में ना निकलें जब तक कि कोई बहुत ज़रूरी काम ना हो। तरल पदार्थ जैसे दही की छाछ, लस्सी, नींबू पानी, नारियल पानी, गन्ने का रस आदि लेते रहें। इसके अलावा मौसमी फल, आम, खरबूज, तरबूज, खीरा, ककड़ी आदि भी, क्योंकि ये सब लेते रहने से आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। और इसी के साथ फिर से लेते हैं एक संगीत विराम।

साथियों, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम ग्रामीलोक को यहीं संपन्न करने की अपनी रेडियो साथी अनुप्रिया को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो मित्र छवि गर्ग का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम मजदूर मंडल में। दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और इस तपती गर्मी में अपना और अपने परिवार का ध्यान भी अच्छे से रख रहे होंगे। अब देखिए ना, हमारे श्रमिक भाई दिन भर इतनी गर्मी में मेहनत मजदूरी करके शाम को थक कर जब अपने घर पहुंचते हैं तो उन्हें सुकून की चाह होती है जो उन्हें अपने घर यानी परिवार में मिलता है। जी हाँ श्रोताओं, परिवार हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान हिस्सा है। चाहे हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, परिवार ही वो आधार है जो हमें मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाता है। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर हम परिवार की बात ही क्यों कर रहे हैं। अरे भाई, आज है 15 मई और हर साल आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है ताकि हम परिवार के महत्व को समझें और इसके साथ अपने संबंधों को मजबूत करें। साथियों, आज के इस विशेष अवसर पर हम बात करेंगे एक ऐसे रिश्ते की जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है, परिवार। ये दिन हमें याद दिलाता है चाहे दुनिया कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो जाए, जीवन की असली खुशी, अपनापन और सुरक्षा परिवार से ही मिलती है। जब हम छोटे होते हैं ना तो परिवार हमें चलना सिखाता है, जब हम गिरते हैं तो परिवार हमें संभालता है, और जब हम सफल होते हैं तो सबसे पहले खुश होने वाला भी हमारा परिवार ही होता है। माँ की ममता, पिता का मार्गदर्शन, भाई बहनों की नोकझोंक और दादा दादी का स्नेह, यही तो परिवार की खूबसूरती है ना। श्रोताओं, आज के डिजिटल युग में जहां मोबाइल, सोशल मीडिया और इंटरनेट हमारे समय को चुरा लेते हैं, ऐसे में परिवार के साथ सच्चा जुड़ाव बनाना कभी कभी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। घर में बच्चों और बड़ों सभी का ध्यान अक्सर स्क्रीन पर ही लगा रहता है क्योंकि अब परिवार में सभी के पास अपने अलग अलग मोबाइल हैं, जिसकी वजह से पारिवारिक बातचीत के लिए तो समय ही नहीं है किसी के भी पास। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के अवसर पर यह जरूरी है कि हम परिवार से जुड़ने के स्मार्ट तरीके अपनाएं। इसके लिए छोटे छोटे कदम, जैसे सब के साथ भोजन करना, हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे के साथ साझा करना, डिजिटल डिटॉक्स करना, मतलब कुछ समय के लिए जानबूझकर स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, टीवी और कंप्यूटर जैसे डिजिटल उपकरणों से दूरी बनाना, और ऑफ स्क्रीन एक्टिविटीज के जरिए जैसे कि परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर गार्डनिंग करें या फिर कुकिंग की जा सकती है। इसके अलावा बोर्ड गेम, कैरम, लूडो, ताश, ये सब खेल के और परिवार के सदस्यों के साथ कहीं बाहर पिकनिक मनाने जाकर, इस तरह के कामों से हम आपस में

अपने रिश्तों को सौहार्दपूर्ण बना सकते हैं। साथियों, एक नियम के तहत घर में कुछ जगह ऐसी होनी चाहिए जहां मोबाइल या लैपटॉप का प्रवेश वर्जित हो। साथ ही खाना खाते समय फोन को दूर रखना, क्योंकि ये समय बातचीत और दिन भर के अनुभव को साझा करने के लिए होना चाहिए। और हाँ, सोने से कम 30 मिनट पहले स्क्रीन को अलविदा कहें, ताकि परिवार के सदस्य एक दूसरे से बात कर सकें। दोस्तों, आपको याद होगा, पहले परिवार में एक ही टेलीविजन होता था और उस पर आने वाले कार्यक्रमों को पूरा परिवार एक साथ बैठकर देखता था। लेकिन अब तो टीवी भी सबके अलग अलग कमरों में है, और टीवी ही क्या, अब तो मोबाइल पे ही टीवी है। ऐसे में हफ्ते में एक दिन तय करें जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर कोई फिल्म या कार्यक्रम देखे। और दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में तो परिवार को विशेष स्थान दिया गया है। हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी पृथ्वी या दुनिया एक परिवार है, ऐसा माना गया है। साथ ही संयुक्त परिवार की परंपरा ने भारतीय समाज को हमेशा मजबूत बनाया है। जैसे दादा दादी की कहानियां, त्योहारों की रौनक, ये केवल यादें नहीं बल्कि हमारी संस्कृति की पहचान है। और सबसे जरूरी, परिवार हमें केवल प्यार ही नहीं देता बल्कि जीवन के संस्कार भी देता है। एक बच्चे की पहली गुरु अगर माँ है तो पहली पाठशाला परिवार है। यदि परिवार मजबूत होगा तो समाज भी मजबूत होगा और राष्ट्र भी प्रगति करेगा। तो आइए, इस अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर हम एक छोटा सा संकल्प लें कि हम अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, छोटों को प्यार देंगे और रिश्तों में विश्वास और अपनापन बनाए रखेंगे। साथियों, कभी कभी एक साथ बैठकर मुस्कुराना भी परिवार को मजबूत बना देता है। तभी तो दिल कह उठेगा

0: साथियों, अब समय है आपसे आज का प्रश्न पूछने का। हमारा प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में सन 1900 से लेकर 1920 के काल को द्विवेदी युग क्यों कहा जाता है। अब आप सोचिए और हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं हमारे श्रमिक भाइयों के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए एक महत्वपूर्ण श्रम कानून के बारे में, जिसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि किसी भी कर्मचारी को उसके काम के बदले न्यूनतम वेतन से कम भुगतान न मिले। तो आइए सुनते हैं विनोद कुमार गोयल से कानूनी वार्ता न्यूनतम मजदूरी अधिनियम।
1: न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 भारत की संसद द्वारा पारित एक श्रम कानून है, जो कुशल व अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी का निर्धारण करता है। यह अधिनियम सरकार को विनिर्दिष्ट रोजगारों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत है। इसमें उपयुक्त अंतरालों व अधिकतम 5 वर्षों के अंतराल पर पहले से निर्धारित न्यूनतम मजदूरियों की समीक्षा करने तथा उसमें संशोधन करने का प्रावधान है। यह अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा 15 मार्च 1948 से लागू किया गया। इस अधिनियम के पास हो जाने के बाद कोई भी नियोजक अवैधानिक रूप से व मनमाने ढंग से कर्मचारियों का शोषण नहीं कर पाएगा। कर्मकारों को अपने परिश्रम का समुचित पारिश्रमिक दिया जाना कई दृष्टियों से श्रेष्ठ है। इस अधिनियम की धारा 12 के अनुसार नियोजक बिना किसी कटौती के अधिसूचित नियोजन में अपने अधीन प्रत्येक कर्मकार की न्यूनतम मजदूरी की दर से कम मजदूरी नहीं दे सकता है। फंड आदि की कटौती भी मजदूरी से नहीं की जा सकती है। अगर कोई श्रमिक किसी निर्धारित दिन या निर्धारित घंटों से अधिक कार्य करता है तो नियोजक उस समय नियमों के अनुसार ऊंची दर पर मजदूरी का भुगतान करेगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में मजदूरी की गणना करने का भी प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार प्रतिकर की अदायगी देने से पहले आयुक्त को दुर्घटनाग्रस्त कर्मकार की मजदूरी का सही आंकलन किया जाएगा। सितंबर 2016 को मजदूर संघों की हड़ताल के मद्देनजर सरकार ने अकुशल व गैर कृषि मजदूरों की न्यूनतम दर 246 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 350 रुपये प्रतिदिन या 9,100 रुपया प्रतिमा कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी को अपर्याप्त बताया गया, जिसमें मजदूरों की 3 श्रेणियों में बांटा गया, जीने के लिए मजदूरी, उचित मजदूरी तथा न्यूनतम मजदूरी। जीवन जीने की मजदूरी का अर्थ है जिसमें मजदूर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के साथ स्वास्थ्य व बुढ़ापे के लिए भी सुरक्षा प्राप्त कर सकें। भारतीय मजदूर संघ के ए.के. पद्मनाथ का कहना है कि अगर सरकार अनुबंधित श्रमिकों का सचमुच में हित चाहती है तो उसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में संशोधन करने

नियमित अनुबंध श्रमिकों के वेतन में समानता लानी होगी। भारत सरकार द्वारा दिनांक 10 अगस्त 2017 को मजदूरी संहिता विधेयक 2017 पेश किया गया, जिसमें केंद्र को सार्वभौम न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार दिया गया है और इसमें असंगठित क्षेत्र के करीब 40 करोड़ मजदूरों को लाभ होने की संभावना है। लोकसभा में श्रम मंत्री ने इस विधेयक के माध्यम से 4 कानूनों, मजदूरी संदाय अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बोनस संदाय अधिनियम 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को मिलाकर उसे सरल व सुव्यवस्थित बनाने का प्रस्ताव किया है। इस बिल का खास प्रावधान यह है कि किसी मजदूर को कम वेतन दिया गया है तो उसके नियोक्ता पर 50,000 का जुर्माना लगेगा। 5 साल के दौरान अगर वह फिर ऐसा करता है तो उस पर 1,00,000 का जुर्माना या 3 माह की कैद या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। नए कानून में यह भी प्रावधान है कि दिहाड़ी मजदूरों को शिफ्ट समाप्त होने पर साप्ताहिक श्रमिकों को कार्य दिवस समाप्ति के बाद दूसरे दिन ही वेतन का भुगतान करना होगा। मासिक आधार पर कार्य करने वाले श्रमिकों को अगले माह की 7 तारीख तक वेतन देना होगा। श्रमिकों को हटाने या उनको बर्खास्त करने या उनके इस्तीफा देने पगार 2 कार्य दिवस के भीतर देनी होगी। इसके अलावा नियोक्ता के लिए भी नए बिल में यह राहत दी गई है कि वह श्रमिक की मजदूरी तभी काट सकता है जब वह ड्यूटी से गैर हाजिर रहा हो या उसकी वजह से उसका कोई नुकसान हुआ हो। घर व अन्य सहूलियतें देने की एवज में भी वह उक्त रकम उसके वेतन से कम कर सकते हैं। अभी तक केंद्र सरकार द्वारा तय की गई मजदूरी की दरें अकुशल मजदूरों को 14,378 रुपये प्रतिमाह, अर्धकुशल मजदूर को 15,912 रुपये तथा कुशल मजदूर को 16,858 रुपये प्रतिमाह निर्धारित था, जबकि दिल्ली सरकार द्वारा अकुशल मजदूर को प्रतिमाह 13,896 रुपये, अर्धकुशल मजदूर को 15,296 रुपये प्रतिमाह तथा कुशल मजदूर को 16,858 रुपये प्रतिमाह मजदूरी तय की गई है। इसी प्रकार कार्यालय श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश कानपुर द्वारा दिनांक 28/3/2018 के शासनादेश द्वारा कालीन उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए मजदूरों की मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का निर्धारण किया गया, जिसके अनुसार अकुशल मजदूर को दिनांक 1/4/18 से प्राप्त मजदूरी की दर 7,110 रुपये प्रतिमाह और दैनिक मजदूरी 273 रुपये तथा अर्धकुशल मजदूर को 7,900 रुपये प्रतिमाह व 303 रुपये प्रतिदिन दैनिक मजदूरी तथा कुशल मजदूरों को 8,532 रुपये 60 पैसे तथा दैनिक मजदूरी 328 रुपये 18 पैसे तय की गई है। अगर नियोजक के यहाँ मजदूर किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो ऐसा श्रमिक जो कम से कम 12 माह पूर्व से कार्यरत है तो ऐसा श्रमिक प्रतिकर पाने का अधिकारी है तथा वह अपनी मजदूरी का 1/12 भाग प्रतिकर के रूप में पाने का अधिकारी होगा। इस अधिनियम को सही ढंग से पालन कराने हेतु निरीक्षकों की नियुक्ति की गई है, जो कभी भी स्थापन व मजदूरों से संबंधित कागजात, रजिस्टर आदि का निरीक्षण कर सकते हैं। निरीक्षक को भारतीय दंड संहिता की धारा 28 के अनुसार लोक सेवक माना गया है। उनकी विधिक कार्रवाइयों में अवरोध उत्पन्न करने वाले या मानहान करने वालों को भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडित किए जाने का प्रावधान है। किसी भी कर्मकार से नियत समय से अधिक समय तक काम लेना एक दंडनीय अपराध है। अगर कोई कर्मकार कंपनी या नियोजक को गलत ढंग से या ईर्ष्यावश परेशान या उत्पीड़ित करता है तो नियोजक के आवेदन पर कर्मकारों को अक्षम्य रूप से 50 रुपये का अर्थदंड दिया जाएगा। दंड आर्थिक या शारीरिक अथवा दोनों प्रकार का दिया जा सकता है। आर्थिक दंड 500 रुपये का तथा कारावासी दंड अधिकतम 6 मास का दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो भी नियोजक इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसे 500 रुपये तक के अर्थदंड से दंडित किए जाने का प्रावधान है। प्रतिकर के निपटारे के लिए सरकार द्वारा आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है, जिन्हें दीवानी से अनुभव प्राप्त अधिकारी या स्टाइपेंड मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की जाती है, जो मजदूरों से संबंधित न्यूनतम मजदूरी के दावों का निस्तारण करते हैं, जिनके अधिकार दीवानी के न्यायाधीशों के समान होते हैं तथा वह उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। ऐसे न्यायाधीशों

0: के आदेशों के विरुद्ध निगरानी सीधे उच्च न्यायालय में ही प्रस्तुत हो सकेगी। न्यूनतम मजदूरी भुगतान का दावा दिए राशि की तिथि से 6 माह के अंदर किया जा सकेगा, जिसका निस्तारण गुण दोष के आधार पर किया जाएगा। अगर मजदूर को न्यूनतम मजदूरी नहीं दी गई है तो शेष राशि तथा अंतर का 10 गुना तक दंड व क्षतिपूर्ति दी जा सकती है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के पारित होने के बाद मजदूरों व कर्मकारों को काफी राहत मिली है।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। वार्ताकार थे विनोद कुमार गोयल। अब बारी है आपको पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने की। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 1000 वर्षों का है, पर सुविधा की दृष्टि से इसे मुख्य 4 भागों में बांटा गया है, जो हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और इसी आधुनिक काल में 1900 से लेकर 1920 तक के समय को द्विवेदी युग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर कहा गया है, क्योंकि इनसे पहले काव्य की भाषा मुख्य रूप से ब्रज भाषा थी, पर द्विवेदी जी ने कवियों को खड़ी बोली में लिखने के लिए प्रेरित किया। साथ ही गद्य साहित्य में भी आचार्य जी ने भाषा में व्याकरण के नियमों का पालन करने, त्रुटियों को दूर करने और साहित्य में नैतिकता, समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना जैसे विषयों को शामिल करने पर जोर दिया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के इसी महान योगदान और मार्गदर्शक भूमिका के कारण हिंदी साहित्य के इतिहास में उनके समय को द्विवेदी युग के रूप में याद किया जाता है। दोस्तों, ज्ञान सागर में आज के लिए इतना ही, और आइए अब चलते हैं आगे और जानते हैं आज की सेहत टिप्स क्या है। श्रोताओं, भीषण गर्मी को देखते हुए खुद को डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक से बचाना बहुत जरूरी है। इसके लिए धूप में निकलने से बचें, और अगर निकलना ही पड़े तो खुद को ढककर निकलें, खूब सारा पानी पिए और खान पान में बदलाव करें, जैसे कि हरी सब्जियां खाना और ऐसे फलों का सेवन करना जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो। और हाँ, सबसे सुरक्षित और सुकून की जगह है आपका घर, तो कोशिश कीजिए कि जब तक जरूरी ना हो बाहर ही ना निकलें। अब चलिए चलते हैं संगीत में विराम की ओर और सुनते हैं ये मधुर गीत।

साथियों, अब लेते हैं कार्यक्रम से विराम। इजाजत दीजिए अपनी रेडियो साथी छवि गर्ग को। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की है। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये बातचीत पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
1: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बना गया ये किसी भी रूप में स्वीकार करना नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करे और विजन का परिचय दिखाया है यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। एक रिपोर्ट।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन के सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉक्टर जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद के लिए तैयार है। श्री अराक्ची ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली में हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि उनके खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की। इनमें अलग अलग दिनों में वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कारपूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले केरलम में आता है। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इस जोड़ी ने जापान के ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी को 21-12, 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi today held talks with President of United Arab Emirates Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi. He arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome. Both the leaders discussed energy cooperation and bilateral trade high amid global supply disruptions linked to the ongoing conflict in West Asia. In his opening remarks, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on the UAE, describing them as completely unacceptable. After concluding his UAE visit, the Prime Minister is now en route to the Netherlands on the second leg of his visit. Thereafter, Mr. Modi will visit Sweden, Norway and Italy during the six-day tour. Foreign ministers of BRICS member countries have reiterated their commitment to reform and improve global governance. The outcome document of BRICS foreign ministers' meeting said the member countries reiterated their commitment to promote equitable, legitimate, democratic and accountable international and multilateral system. The ministers noted the current global context of polarization and distrust encouraged global action to strengthen international peace and security. The ministers stressed their commitment to uphold multilateralism as necessary to address challenges threatening their shared planet. The minister stressed the importance of ensuring the exercise of navigational rights and freedoms of vessels of all states in the Red Sea and Bab al-Mandab Strait in accordance with international law. The ministers appreciated that BRICS under India's chairship will further contribute to enhancing cooperation through sustained engagements. Foreign Minister of Iran Abbas Araghchi has said that India can play a greater role for peace in West Asia. Addressing a press conference in New Delhi today, Mr. Araghchi said there is no military solution to anything related to Iran. He said Iran is ready to help pass all vessels through the Strait of Hormuz. He said there cannot be any solution other than a negotiated settlement on the West Asia crisis. The Iranian foreign minister said Iran will welcome any constructive role by India. Union Defence Minister Rajnath Singh laid foundation for Advanced Medium Combat Aircraft Programme facility at Puttaparthi in Sri Satya Sai district of Andhra Pradesh along with Chief Minister N. Chandrababu Naidu today. Addressing the gathering, the Defence Minister said the newly launched defence projects will strengthen national security, accelerate industrial growth and create large-scale employment opportunities for youth.
4: For important issues like national security, we cannot always depend on other countries. That is why all these projects being launched today are not only extraordinary but truly historic. Such high-tech flight testing facilities are available only at a selected few places in the world. And now, Puttaparthi is set to join that distinguished list of locations from where fifth generation aircraft will soar into the skies.
5: Fifth generation ka aircraft aasman chhuega.
3: West Bengal government has suspended three IPS officers in connection with the Arjikar Medical College rape and murder case. Former Commissioner of Kolkata Police, Vineet Goyal, former Deputy Commissioner Central, Indira Mukherjee and former Deputy Commissioner North, Abhishek Gupta have been suspended today due to alleged dereliction of duty, offering money to the victim's parents and conducting media briefings without government authorization. Chief Minister Suvendu Adhikari informed the media that a departmental inquiry would be conducted against them by the state government. The Supreme Court today announced a series of fuel conservation measures, including virtual hearings, carpooling and work from home. The move is in line with the centre's broader push to cut fuel consumption amid the ongoing West Asia crisis. In a circular issued by Secretary General Bharat Parashar, the Apex Court said that matters listed on miscellaneous days as well as matters taken up during partial working days will now be heard only through video conferencing until further orders. In badminton, India's top men's doubles pair Satwik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the semi-finals of Thailand Open. The Indian duo defeated Japanese pair of Takumi Nomura and Yuichi Shimogami in straight games in Bangkok today. In men's singles, Lakshya Sen lost to Thailand's Kunlavut Vithitsan 19-21, 16-21 in a quarter-final match. And that is

0: The end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर 33,530 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, वक्त हुआ है कार्यक्रम विविधा का, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं काव्य पाठ अभय विकास से। तो आइए सुनते हैं ये काव्य पाठ।
2: मैं विकास शुक्ला, अभय विकास के नाम से मैं कविताएं लिखता हूँ। एक मुक्तक देखिएगा कि खा

0: अभय विकास से। तो आइए सुनते हैं ये काव्य पाठ।
1: मैं विकास शुक्ला, अभय विकास के नाम से मैं कविताएं लिखता हूं। एक मुक्तक देखिएगा कि खा

और एक हिंदी गीत कि साथ हो तुम अगर सब मेरे पास है।

0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: कार्यक्रम विविधा में आप सुन रहे थे विकास शुक्ला से काव्य पाठ। इसी के साथ विविधा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ से अनुप्रसारित होगा। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शुभारंभ।

0: राष्ट्रहित की भावना के साथ करें बिजली और ईंधन की बचत। 21 जून को दोबारा होगी नीट यूजी 2006 की परीक्षा, 2026 की परीक्षा। विद्यार्थियों को अपनी पसंद के शहर में मिलेगा सेंटर। अगले वर्ष से ऑनलाइन होगी परीक्षा। पेट्रोल और डीजल 3 रुपये महंगा, प्रदेश में अब 95 से 97 रुपये पेट्रोल और 88 से 91 रुपये प्रति लीटर की दर से मिलेगा डीजल। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का चेन्नई सुपर किंग्स से मुकाबला, मैच खत्म होने तक लागू किया गया ट्रैफिक डायवर्जन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए से अधिक की 79 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, टूलकिट और आवास की चाबियां भी प्रदान की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्षो में तेजी से हुए विकास के चलते आज उत्तर प्रदेश देश के विकास इंजन के रूप में उभर रहा है। पश्चिम एशिया संकट का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों से प्रधानमंत्री की अपील का पालन करते हुए बिजली और ईंधन की बचत करने और छोटे छोटे प्रयासों से देश को मजबूती देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नेशन फर्स्ट की भावना के साथ हर नागरिक को देश हित में सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए।
1: कि ईंधन से जुड़े हुए मामले हो, खाद्यान्न से जुड़े हुए मामले हो, फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ मामला हो, या फिर मैं सभी सराफा व्यवसायियों से भी अपील करूंगा, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि विदेश से सोना मंगाने की बजाय हमारे घरों में जो सोना है उसी की मरम्मत कराना, हम सब अगर उस दिशा में कार्य करेंगे, देश का पैसा बचाना है, इस वैश्विक संकट से हम अपने देश को उभारने का काम करेंगे।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज को दिशा देने में प्रबुद्ध जन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार विकास को गति देने के साथ ही बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार की गारंटी देने का काम कर रही है।
1: आज स्वास्थ्य की सुविधा है, इंसेफ्लाइटिस बुरी तरह समाप्त, नौजवान के लिए पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था है, उसके रोजगार की गारंटी है, नौकरी की गारंटी है, बेटी की सुरक्षा की गारंटी भी है, विकास की भी गारंटी है। प्रबुद्ध जनों से मेरी यही अपील है, इसको चर्चा पर चर्चा का विषय बनाना चाहिए।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। श्री प्रधान ने बताया कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से ऑनलाइन यानी सीबीटी के माध्यम से होगी।
2: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने थोड़ी एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं, 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: शिक्षा मंत्री ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
3: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं।
0: दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। राज्य के प्रमुख शहरों में अब पेट्रोल की कीमत औसतन 95 से 97 रुपए प्रति लीटर और डीजल की दरें लगभग 88 से 91 रुपए प्रति लीटर हो गई हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। प्रदेश में तेज आंधी, तूफान, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं से हुई जनधन की हानि को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर

0: संचालित करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि तत्काल वितरित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पशु हानि से प्रभावित लोगों को भी नियम के अनुसार सहायता प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को प्रभावित परिवारों से मुलाकात करने और हालात का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राहत आयुक्त कार्यालय के कंट्रोल रूम को 2400 घंटे सक्रिय रखते हुए राहत और सहायता कार्यों की निरंतर निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार प्रदेश के 26 जनपदों में खराब मौसम के कारण 111 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 72 लोग घायल हुए हैं। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर आज से बिना टोल शुल्क के यात्रा की सुविधा खत्म हो गई है। कल रात 12 बजे से इस एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सड़क मार्ग पर 15 दिनों के लिए बिना टोल टैक्स के यात्रा करने की सुविधा दी थी। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर में 29 मई को माता भगवती मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित होगा। ये ध्वजारोहण राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही साध्वी रितंभरा के हाथों किया जाएगा। आयोजन को लेकर मंदिर परिसर में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले इस कार्यक्रम में करीब 2000 महिलाओं को आमंत्रित किया जाएगा। आईपीएल में आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से हो रहा है। मैच को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यातायात को सुचारू रखने के लिए इकाना स्टेडियम के आसपास ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के लखनऊ कार्यालय में आज एक दिवसीय समीक्षा शिविर का आयोजन किया गया। सम्मेलन में उपक्षेत्रीय कार्यालय गोंडा, कानपुर, झांसी, फतेहपुर और लखनऊ के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। राज्य राजधानी क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के उप महानिदेशक डॉक्टर सुचिता गुप्ता ने बताया कि पारिवारिक आय के सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है, जो अगले साल 31 मार्च 2027 तक चलेगा। इस सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों को सरकारी नीतियों और योजनाओं को बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा।
2: ये सर्वेक्षण जरूरी था क्योंकि योजनाओं को बनाने में कहीं ना कहीं हमें इनकम की जरूरत होती है, और अगर हमें इनकम सही से मिल रही है तभी हम बहुत सारी योजनाओं में हम टारगेट बना पाएंगे, क्योंकि हर इनकम क्लास के जो लोग होते हैं उनकी जरूरतें अलग अलग तरह की होती है। तो सभी के लिए योजनाएं बन पाए अच्छी तरह से और टारगेट किया जा सके किस तरह की योजनाएं कितने लोगों को चाहिए होंगी, कितने हाउस होल्ड को चाहिए होंगी, तभी हमारा डेटा सही मायने में यूजफुल होगा।
0: कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का उद्घाटन किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए श्री शाही ने कहा कि खरीफ का मौसम शुरू होने वाला है, जिसका ध्यान रखते हुए प्रदेश सरकार की प्राथमिकता किसानों को उन्नतशील बीज उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि खेतों में हरी खाद बढ़ाने और रासायनिक खाद के कम प्रयोग का प्रयास किया जा रहा है। अम्बेडकर नगर में आज सभी 899 ग्राम पंचायतों ने एक साथ ग्रीन चौपाल का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पेट्रोल डीजल की खपत घटाने, हरित परिवहन को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रस्ताव पारित किए गए। इस दौरान ग्राम प्रधानों ने पेट्रोल डीजल की खपत घटाने और कार पुलिंग, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के साथ ही हरित परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने का सामूहिक प्रण लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शुभारंभ। कहा, राष्ट्रहित की भावना के साथ करें बिजली और ईंधन की बचत। 21 जून को दोबारा होगी नीट यूजी 2026 की परीक्षा। विद्यार्थियों को अपनी पसंद के शहर में मिलेगा सेंटर। अगले वर्ष से ऑनलाइन होगी परीक्षा। पेट्रोल और डीजल 3 रुपए महंगा। प्रदेश में अब 95 से 97 रुपए पेट्रोल और 88 से 91 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा डीजल। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का चेन्नई सुपर किंग्स से मुकाबला। मैच खत्म होने तक लागू किया गया ट्रैफिक डायवर्जन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर 33,523 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मेरी माटी मेरा देश ये कार्यक्रम लेकर आ गई है आपकी रेडियो हम सफर मुगुल दीवारी। तो कैसे आप सभी श्रोताओं, में उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग खुश और स्वस्थ होंगे। अभी अपनी सेहत का बेहद ख्याल रखना जरूरी है। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि बीते दिनों मेरे घर में लगभग सभी लोग बीमार थे, खुद मैं भी बीमार थी। हुआ क्या कि सुबह बहुत गर्मी थी, शाम होते ही मौसम सुहाना, घने बादल, ठंडी ठंडी हवा और फिर झमाझम बारिश। बहुत ही प्यारा मौसम हो गया। अब आप ही बताओ क्या करता है इस मौसम में आप सभी का मन? कुछ चटपटा खाने खाना? तो मेरे साथ भी यही हुआ। मैं बैठ गई प्याज की पकौड़ियाँ लेकर और इलायची वाली चाय के साथ उसका लुत्फ उठाने। थोड़ी देर बाद मौसम का मूड स्विंग हुआ, धूप निकल आई और हवा बंद, बादल भी गायब। शुरू हो गया मेरे पेट में दर्द। डॉक्टर के पास गई तो लंबी सी दवाइयों की लिस्ट और परहेज उसने मुझे बता दिया, क्योंकि मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया था। मुझे क्या ही पता था कि इस मौसम के चक्कर में ये सब हो जाएगा। अब ये भी नहीं है कि ऐसा सिर्फ मेरे साथ हुआ। हॉस्पिटल्स के आगे जो भीड़ लगी थी, दवाइयों के दुकान के आगे जो लंबी कतार लगी थी, उसे देखकर ये एहसास हो रहा था कि मौसम के बदलते मिजाज का शिकार हर दूसरा इंसान है। अब मौसम के बदलते हुए मिजाज के बारे में बात करते हुए मेरे मन का भी जो मिजाज है ना, वो बदल रहा है और ऐसा कर रहा है कि हम कुछ गाना सुन लें।
2: टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन लेट्स स्टार्ट द फन।

0: ये मौसम का जादू है पक्का। तो श्रोताओं, अगर हम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार या पूरे नॉर्थ इंडिया की बात करें तो पिछले कुछ सालों में मौसम का पैटर्न बहुत तेजी से बदला है। सोचिए जरा, पहले गर्मी का मतलब होता था मई जून की तपती गर्मी, बरसात का मतलब होता था जुलाई अगस्त में लगातार बारिश, और सर्दी का मतलब नवंबर से जनवरी तक कड़ाके की ठंड। लेकिन अब मार्च के महीने में भी तापमान 40 डिग्री तक पहुंच रहा है, अप्रैल में आंधी चल रही है, मई में मानसून से पहले बरसात और दिसंबर तक चलते हुए पंखे। भाई चल क्या रहा है? तो हो ये रहा है श्रोताओं कि हम प्रकृति के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं, हम छेड़छाड़ कर रहे हैं प्रकृति के साथ। कैसे? वाह, कितना मासूम सा सवाल है ना ये कि कैसे। तो वो ऐसे श्रोताओं कि अपने जिंदगी को आसान और बेहतरीन दिखाने के चक्कर में अपने फायदे के लिए पेड़ पौधे हम खुद काट रहे हैं, जमीन को बंजर कर दिया जा रहा है, प्रदूषण को बढ़ने से रोकना तो दूर, वो जहां है वहीं थम जाने के लिए भी कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं हम लोग, जिससे धरती गर्म हो रही है और इससे ही क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। ऐसा सोचने की गलती हम तो नहीं कर सकते कि सिर्फ ये किताबी बातें हैं, इसका दुष्परिणाम भी हमें रोजमर्रा की जिंदगी में देखने को मिल रहा है। तो बातें आगे भी होंगी, फिलहाल एक और गीत सुनते हैं जिसमें हमारा मन कर रहा है कि हम उन खूबसूरत वादियों में फिर से लौट जाएं, जहां पे सब कुछ बहुत खूबसूरत होता था, बहुत निराला होता था, मौसम अपने टाइम के हिसाब से आता और जाता था।
1: 3501852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता

दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज और 196.1 मीटर्स पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।

श्रोताओ, क्या आप जानते हैं कि एक बड़ा पेड़ अपने आसपास का तापमान 2 से 4 डिग्री तक कम कर सकता है, लेकिन पेड़ तो काटे जा रहे हैं। ये हर दूसरे दिन बारिश, आंधी, वो भी बिना मौसम के क्यों हो रहा है? क्योंकि जब धरती बहुत गर्म होती है तो हवा में नमी बढ़ जाती है और फिर अचानक तापमान बदलता है और बादल तेजी से बनते हैं, फिर होती है झमाझम बारिश। श्रोताओ, आपने गौर तो किया ही होगा कि पहले मौसम धीरे धीरे बदलता था तो हम खुद को उसी सांचे में ढालने की तैयारी कर लेते थे। अब सब कुछ अचानक होता है तो तबीयत भी खराब होने लगेगी। आम सी बात हो गई है एनर्जी का खत्म हो जाना। कोई काम भी नहीं किया फिर भी थकान है। कभी इतनी नींद आती है कि आंखें खोलने का मन नहीं करता और कभी रात भर करवटें बदलते रहते हैं। सिर दर्द, जुकाम, खांसी तो जैसी आम समस्या हो गई है। चिड़चिड़ापन, सब्र का ना होना, गुस्सा आना, इन सब की वजह गौर से समझा जाए तो मौसम ही है। अब करवट बदलने से मुझे तो एक गाना याद आ रहा है। क्या आप सब लोगों को भी वही गाना याद आ रहा है? चलिए इस भारी भरकम मौसम को, मतलब हमारे बातों से जो मौसम बदला है, उसको थोड़ा सा विराम देते हैं और सुनते हैं ये गाना।

बात हुई समस्याओं पर बात, अब सॉल्यूशन की तरफ चलना चाहिए क्योंकि वक्त भी बहुत कम बचा है हमारे पास। तो श्रोताओं, इस मौसम में खुद को फिट रखना बेहद जरूरी है। वो कहते हैं ना कि बिन पानी सब सुन, तो ये तो बिल्कुल भी ना करें कि प्यास लगेगी तभी हम पानी पियेंगे, ना जी ना। मौसम कोई भी हो, बॉडी को पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए होता है, ठीक है। आप स्वस्थ भी रहेंगे और चेहरा आपका ग्लो भी करेगा, बाल भी शाइनी रहेंगे और खूबसूरत से लगेंगे। सादा पानी पी पी कर अगर बोर हो गए हैं तो फ्लेवर बदल लें, नींबू पानी पिए, पुदीना पानी, जूस पिए, फ्रूट्स खाएं, लस्सी, छाछ कुछ भी पिए। धूप में बिना सर ढके ना निकलें, पानी और छाता लेकर निकलें। बेवजह घर से बाहर ना निकलें तो ज़्यादा बेहतर है। तेल मसाला से जितनी दूरी हो उतना बेहतर है। दाल सब्जियां खाएं, हर वो चीज़ खाएं जिसकी तासीर ठंडी हो, ना कि सिर्फ वही खाएं जिस खाने में ठंडा लगे, वो पेट में जाकर गर्म करेगा। एक्सरसाइज और योग करें, सुबह शाम टहलने की कोशिश करें और भरपूर नींद लें। साफ सफाई का ध्यान रखें, बिना धोए कुछ ना खाएं, खिड़कियां खोल कर रखें भले सुबह शाम ही सही। बाहर का खाना ना बाबा ना, थोड़ी मेहनत करें, घर पर बनाएं कुछ हेल्दी और चटपटा सा, सेहत के साथ साथ आपकी तारीफ भी हो जाएगी। और हाँ, संगीत का साथ तो कभी ना छोड़ें क्योंकि मन को स्वस्थ रखने में संगीत का योगदान बहुत ज़्यादा होता है। सिर्फ तन ही नहीं, एक खूबसूरत से जिंदगी पाने के लिए तन और मन दोनों का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी होता है। श्रोताओं, नकारात्मक इंसान और नकारात्मक विचार दोनों से दूर रहें। कोशिश करें कि हर वो काम करें जो आपको खुशी दे, साथ ही साथ दूसरों को भी खुशी दे। और हाँ,

इस बदलते मौसम में बीमार, बूढ़े बुजुर्ग और बच्चों का विशेष ख्याल रखें। तो चलिए, बाकी बातें फिर कभी होंगी, अभी तो टाटा बाय बाय कहने का वक्त हो चला है। तो आपकी रेडियो हमसफर मुकुल तिवारी छोड़े जाती है आपको इस खूबसूरत से गीत के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। महफिल कव्वाली श्रोता, इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म हंसते जख्म की इस कव्वाली के साथ, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और बलवीर ने। गीतकार हैं कैफिया आज़मी और संगीतकार हैं मदन मोहन।

अभी आपने सुना हंसते जख्म फिल्म में मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं अमर अकबर एंड थनी में मोहम्मद रफी की आवाज़ में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले, मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

बरसात की एक रात, इस फिल्म में आप सुन रहे थे मन्ना डे, आशा भोसले और सुधा मल्होत्रा को। गीतकार थे साहिर लुधियानवी और संगीतकार थे रोशन। इसी के साथ महफिल कव्वाली कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

खामोशी इस फिल्म में आप सुन रहे थे अलका याग्निक और हरिहरन की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत। संगीत था जतिन ललित का। छत्रपट संगीत कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म ओमकारा से। गीत को लिखा है गुलजार ने, संगीत है विशाल भारद्वाज का, आवाजें हैं श्रेया घोषाल और विशाल भारद्वाज की।

0: ओमकार फिल्म के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओ, वक्त है समाचारों का, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्तर पर ऊर्जा सुरक्षा के लिए हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय

0: खिलाड़ियों ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उनको फ्री ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। यह एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
3: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कंप्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वायुसेना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
0: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यत्तिंग के साथ पक्षीय वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यह बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनीतिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने

0: के रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
1: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स की रणनीतिक साझेदारी के तीन स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
0: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानून से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीनॉक के टॉप हेल्प नंबर 1444 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
2: युद्ध जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टिलरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एमिनिशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री बृजेंद्र शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक

0: एवं पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। दिल्ली में विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध है। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले दो दिन केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कायकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
2: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.97 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: भारतीय वुशू टीम ने मकाओ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्हें महिलाओं के 79 किलोग्राम भार वर्ग के स्मैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज ही कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's support for safe and uninterrupted navigation through Strait of Hormuz for regional stability and energy security. BRICS foreign ministers call for democratic global governance and stronger multilateral action on peace and climate challenges. CBI arrests one of the kingpins in UG 2026 paper leak case. West Bengal government suspends 3 IPS officers in connection with RG Corps rape and murder case. Met department forecasts heat wave conditions in Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Bidarbh till tomorrow. Indian Wushu team bags 2 gold, 1 silver and 2 bronze medals

0: bronze medals in Macau. The women athletes in particular put up a stellar display by securing both gold medals from the six-member contingent. In the women's 75-kilogram category, Border Security Force athlete Shivani defeated a Russian opponent to clinch the gold medal. Aparna also produced a brilliant performance in the 52-kilogram category to secure India's second gold medal. In the 48-kilogram category, Indian Air Force athlete Kushal Kumar claimed silver medal. At the Asian Under-17 Boxing Championships, Indian young boxers concluded the historic campaign today by winning 2 golds and 7 silver medals in Tashkent, Uzbekistan. India also bagged 8 bronze medals in the Under-17 category. With this, the total number of medals won by the boys and girls teams of the country combined reached 17 in this category. Earlier in the Asian Under-15 Boxing Championships, India won a total of 27 medals, including 9 gold, 6 silver and 12 bronze medals. In Asian Weightlifting Championships, Harjinder Kaur won bronze medal in the women's 69-kilogram category snatch event by lifting 96-kilogram in Gandhinagar today. Harjinder also lifted 121-kilogram in the clean and jerk event and finished 4th overall with a total lift of 217-kilogram. In Thailand Open Badminton, India's top men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the semifinals in Bangkok. They defeated Japanese pair of Takumi Naura and Ochi Shogami in straight games in the quarterfinal match today. However, PV Sindhu and Lakshya Sen lost the singles quarterfinal matches. In IPL cricket, Chennai Super Kings were 153-5 in 80 overs against Lucknow Super Giants in Lucknow when reports last came in. Earlier, Lucknow Super Giants won the toss and opted to field. The sacred Pipavav relics of Lord Buddha were accorded an emotional farewell at the Leh airport today after the conclusion of a 14-day-long grand exposition in Ladakh. Over 1 lakh devotees paid obeisance to the holy relics, making it one of the largest spiritual gatherings organized in the Union Territory. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's support for safe and uninterrupted navigation through Strait of Hormuz for regional stability and energy security. BRICS foreign ministers call for democratic global governance and stronger multilateral action on peace and climate challenges. CBI arrests one of the kingpins in 8UG 2026 paper leak case. West Bengal government suspends 3 IPS officers in connection with RG Kaur rape and murder case. Indian Wushu team bags 2 gold, 1 silver and 2 bronze medals at Sanda World Cup in Macau. And India concludes Asian Under-17 Boxing Championships with historic 2 gold and 7 silver medals at Tashkent. And that is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इलाकाई इस्तेहकाम और तवानाई की यकीनी फराहमी की खातिर आबनाए हुरमुज के रास्ते महफूज और बिना रुकावट जहाज रानी के तहत भारत की हिमायत का इरादा किया है। ब्रिक्स वज़राए खारजा ने कयाम अमन और आबो हवा की तब्दीली के चैलेंजों के सिलसिले में जमहूरी आलमी बंदोबस्त और ज्यादा मजबूत कसीर रुखी कार्रवाई पर जोर दिया है। सीबीआई ने नेट यूजी 2026 का सवालिया पर्चा लीक होने के केस में सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। मगरबी बंगाल सरकार ने आरजी कर आबरूरेजी और कत्ल केस में 3 आईपीएस अफसरों को मुअत्तल कर दिया है। मौसमियात महकमे ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक शदीद गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की है। मकाऊ में सांडा वर्ल्ड कप में भारतीय वुशु टीम ने सोने के 2, चांदी का 1 और कांसे के 2 तमगे जीते हैं। और ताशकंद में 17 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने सोने के 2 और चांदी के 7 तमगे जीतकर तारीख रकम की है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आबनाए हुरमुज के रास्ते महफूज और बिना रुकावट जहाज रानी के तहत भारत की हिमायत का इरादा किया है और आलमी सतह पर तवानाई और खुराक की यकीनी फराहमी के साथ साथ इलाकाई इस्तेहकाम के लिए आबनाए हुरमुज की अहमियत को उजागर किया है। अबूजाबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ आला सतह की बातचीत के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र

0: मोदी ने अमारात पर हालिया हमलों की सख्त मजम्मत की। मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में जनाब मोदी आज सुबह मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने अमारात के रहनुमाओं और वहां के आवाम के साथ भारत की यगानगत का इआदा किया। बातचीत के बाद जनाब मोदी ने गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल करने पर मुत्तहिदा अरब अमारात के रहनुमाओं के तहीं तशक्कुर का इजहार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि वो तवानाई, सरमायाकारी और सप्लाई निजाम समेत अहम शोबों में इश्तराक को मुस्तहकम बनाए जाने के मुतमन्नी हैं। तफसील हमारे नामनिगार से।
1: मुज़ाकरात के नतीजे में कई मुआहदे तय पाए। इनमें तवानाई के शोबे में भारत के स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के दरमियान मुआहदा शामिल है। इस मुआहदे का मकसद भारत के स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम के जखायर में यूएई की शराकतदारी को बढ़ाकर 30 मिलियन डॉलर तक करना शामिल है। इसके साथ ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और ADNOC के दरमियान एक तवानाई एलपीजी सप्लाई का मुआहदा तय पाया। दिफाई शोबे में दोनों ममालिक ने स्ट्रेटजिक दिफाई शराकतदारी के लिए एक फ्रेमवर्क पर दस्तखत किए हैं। इसमें सरकारी बड़ी सलामती, साइबर दिफा और मालूमात का तबादला शामिल है। इसके अलावा भारत में यूएई के जरिए 5 बिलियन अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी का भी ऐलान किया गया। दोनों ममालिक ने वाडीनार में जहाजों की मरम्मत के लिए क्लस्टर कायम करने और बहरी शोबे में हुनरमंदी के फरोग के लिए एक फ्रेमवर्क पर भी दस्तखत किए। इसके साथ ही भारत के CDAC और यूएई के G24 के दरमियान 8 एक्साफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर को कायम करने पर भी समझौता हुआ। अबूधाबी से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचने पर सदारती हवाई अड्डे पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का बाजाबता खैर मकदम किया गया। इस मौके पर सदर अन्नयान बजाते खुद मौजूद थे। जनाब मोदी का तैयारा जब इमारात की फिजाई हदूद में दाखिल हुआ तो मुत्तहिदा अरब अमारात के F-16 लड़ाका जेट तैयारों ने इसे अपनी हिफाजत में ले लिया, जिससे प्रोटोकॉल के अहम जज्बे का इजहार होता है। इमारात का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद वजीर आजम अपने दौरे के दूसरे मरहले में नेदरलैंड रवाना हो गए हैं। जनाब मोदी 6 दिन के अपने दौरे में इसके बाद स्वीडन, नॉर्वे और इटली जाएंगे। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय सफीर दीपक मित्तल ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अबू धाबी के दौरे में भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने तवानाई, टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी और तिजारत के शोबे में इश्तराक को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए कई कलीदी फैसले किए हैं। इस दौरे में अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक सेरेब्रास चिप पेश की। जदीद तर्ज के इन चिप्स से भारत के आइंदा कायम होने वाले 8 एक्साफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग मराकज को तकवियत मिलेगी। इंडिया AI मिशन को नुमाया अंदाज से फरोग हासिल होगा और मुल्क के नए सिलसिले की मसनूई जहानत की सलाहियत मुस्तहकम हो सकेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद को जल्द भारत का दौरा करने के लिए मदऊ किया। ब्रिक्स के वज़ीर ख़ारिजा ने आलमी हुक्मरानी के अमल में इस्लाहात करने और इसे मुस्तहकम बनाने के तहीं अपने अहद को दोहराया है। ब्रिक्स वज़ीर ख़ारिजा ने अपनी मीटिंग के बाद एक दस्तावेज में ज्यादा मसावियाना, जमहूरी और जवाबदेह बैनुल अक़वामी और कसीर रुखी निज़ाम की जरूरत पर जोर दिया। इन वजीरों ने आलमी सतह पर बढ़ती हुई गिरोहबंदी और बेएतमादी का नोटिस लिया और बैनुल अक़वामी अमन और सलामती को मुस्तहकम बनाने की खातिर इज्तिमाई इकदाम पर जोर दिया। इन वजीरों ने सिफारती और सियासी वसीलों के तवसुत से आलमी चैलेंजों से निमटने की जरूरत को उजागर किया ताकि महाज आराई के खतरात को कम किया जा सके। साथ ही उन्होंने बुनियादी वजूहात पर तवज्जो देकर टकराव की रोकथाम की अहमियत पर भी जोर दिया। इन वज़रा ख़ारिजा ने मुश्तरका कुर्रे अर्ज और आबोहवा की तब्दीली जैसे मुस्तकबिल को लाहक चैलेंजों से निमटने के लिए कसीर रुखे निज़ाम के तहीं अपने अहद को उजागर किया। ब्रिक्स के वजीरों ने आबोहवा की तब्दीली और कुदरती आफात के खतरात से निमटने के लिए बुनियादी ढांचे के निजाम को मजीद मुस्तहकम बनाए जाने की अहमियत भी उजागर की। उन्होंने इस बात की सताइश की कि भारत की सदारत में ब्रिक्स लगातार कोशिशों और सरगर्मियों के जरिए तआवुन बढ़ाने के लिए ज्यादा बड़ा रोल अदा करेगा, जिसमें इंसानियत और आवाम को मरकजी हैसियत दी गई है। ब्रिक्स वज़रा खारजा की मीटिंग के बाद नई दिल्ली में नामानिगारों को जानकारी देते हुए वजारत खारजा में इकतसादी ताल्लुकात शोबे के सेक्रेटरी सुधाकर दलेला ने कहा कि सभी ब्रिक्स अराकीन और साझेदार मुल्कों ने मजबूती, इख्तिरा, इश्तराक और पायदार निजाम की तामीर के मौजू के तहत भारत की

0: difficult and very important, because one of the things that we are witnessing now is, and of course, juxtaposing it with our discussion earlier with the UAE, if you look at the trajectory of Indian foreign policy in the last decade, two geographies where India has invested most, where India is tied in most, where India is openly embracing a sense of commitment, these two geographies are the Middle East and Europe. And I think the Prime Minister is signaling that as the world goes through a chain of great power competition, contestation, these two critical geographies will remain central for India's developmental priorities, for India's strategic priorities, as well as for India's tech priorities. And I think this is where what is going to happen during this visit. This is going to be about New Delhi's trying to position itself as a credible manufacturing technology and investment hub as we see a global supply chain reconfiguration. And Europe certainly is very important in that respect. Then, of course, you have the energy transition that we were talking about. We were talking about it in a certain context when it came to UAE. But if you think about Europe, India is attempting to diversify its suppliers, its technology partnerships, its green transition imperatives. So cooperation on renewables, green hydrogen, clean technologies is going to be figuring out a lot when Prime Minister goes from Netherlands all the way to Nordic countries. So I think in that sense, energy, economy, and then tech, India's growing emphasis on emerging tech and innovation ecosystems, semiconductors, AI, resilient supply chains, defense tech, startup collaborations, these are all critical now for India's external partnerships. So now from a traditional focus on political solidarity to a far more transactional and capability-oriented engagement with major economies is what is defining India's European outreach. And I think that is what we are going to see in country after country the Prime Minister goes, whether it is Netherlands, whether they're after Sweden, Norway, Italy. I think this is how we are going to see the outcome from that. We should assess the outcome from that perspective, that India is no longer content with symbolic diplomacy. It is seeking tangible gains, whether it's technology access, energy resilience, investment flows, and a strategic influence. And at a time when there is geopolitical fragmentation, India, what it is trying to do is basically leverage its growing economic weight to emerge as a pivotal actor in these two critical geographies, where India has traditionally not been that important, but today certainly India's economic weight is giving it such a heft that it can have a bilateral partnership with the UAE and it can have a bilateral engagement with the Nordics. So we will have the India-Nordic summit happen next week. So it is, I think, in that sense, a transformative moment in India's ties with both West Asia and Europe.
1: Before we proceed further into the discussion, focusing on the second leg of the Prime Minister's visit, which is to the Netherlands, here's an interview of the Indian Ambassador to the Netherlands, Kumar Tuhin, who described the Prime Minister's visit to the country as a significant one, while speaking exclusively to Akashwani correspondent Sushrut Sharma. आइए सुनते हैं इसके प्रमुख अंश.
2: प्रधानमंत्री तीन दिवसीय यात्रा पर नीदरलैंड आ रहे हैं. इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं भारत के राजदूत श्री कुमार तुहिन सर. सर, कितना इम्पोर्टेंट है ये विजिट?
3: यह यात्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि हमारे संबंध नीदरलैंड से बहुत मजबूत हैं. लेकिन यह एक ऐसा मौका होगा जबकि दोनों देशों के नेता नीदरलैंड में नई सरकार बनने के बाद पहली बार सामने सामने मिल रहे होंगे. तो इस मौके पर आज तक जो हमारी प्रगति हुई है उसको रिव्यू करना, हमारी जो प्रोग्रेस है उनको कंसोलिडेट करना और आगे एक नई दिशा देने का एक बहुत बढ़िया मौका है.
2: सर, कौन कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां पे दोनों देश आपसी सहयोग के मुद्दों पर बात करेंगे और उनको और एक्सप्लोर करेंगे?
3: पहले से जो हमारे जो सेक्टर्स हैं, जैसे कि ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, और जो पानी का क्षेत्र है, और कृषि का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में तो पहले से ही बहुत कुछ काम हो रहा है. हम ये आशा करते हैं कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के शीर्ष नेताओं को मौका मिलेगा कि जो नए इमर्जिंग जो कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर का क्षेत्र है या एनर्जी का क्षेत्र है, मैरिटाइम कोऑपरेशन का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में भी हमारी आज की प्रगति को रिव्यू करना और हमें एक नई दिशा और नए निर्देश देने का एक अवसर.
2: सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में उस क्षेत्र में हमारे यहाँ पे आरएनडी के फील्ड में कुछ भी हो रहा है, तो क्या आगे हम मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के क्षेत्र में भी कुछ एक्सप्लोर करते हैं?
3: जी, नीदरलैंड्स विश्व की सबसे प्रख्यात सेमीकंडक्टर कंपनियों की जगह है और पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश के जो हमारी जो प्राथमिकताएं हैं उन्हें सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को भी बढ़ाने का काफी बड़ा काम है. तो इसलिए ये कंप्लीमेंट्री एक तरह के हमारों का स्ट्रेंथ है और हमारी भूमिकाएं हैं, जिसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि डच कंपनियां जो कि अभी भारत में मौजूद है लेकिन उनकी और बढ़ने की अभी आशा है और पोटेंशियल है, उसको हम एक नए स्तर पर लेके जा पाएंगे.
2: तो ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में भी आजकल बहुत बात हो रही है, नीदरलैंड्स में एक पायलट है, लेकिन इंडिया भी इसमें उभरता हुआ

0: लीडर नजर आ रहा है। सर, इस क्षेत्र में से कौन से फील्ड्स हैं जहाँ पे ये हमको बहुत बेनिफिट करेगा? हम सुन रहे हैं कि कुछ क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में भी ग्रीन हाइड्रोजन का एक रोल है, अलग है एनर्जी सिक्योरिटी।
1: जी, सो नीदरलैंड्स क्लाइमेट के एरिया में सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के इलाके में काफी बढ़िया करते हैं। हमारे देश में भी आपको पता है कि क्लाइमेट, वातावरण और साथ साथ कृषि मार्ग बहुत महत्वपूर्ण इलाके हैं। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो डच कंपनियों के पास जो उनकी जो तकनीक है, उनके पास जो आधुनिक तकनीक है, उनका जो ज्ञान है, उनको हम लोग भारतीय कंपनियों के साथ जोड़ सकें। यहाँ के रिसर्च इंस्टीट्यूशन को हम भारत के जो शैक्षणिक संस्थान है, हमारे जो अनुसंधान संस्थान, उनसे जोड़ सकें, ताकि हम दोनों देशों के बीच में एक म्यूचुअली जो बेनिफिशियल एक तरह का जनरेशन है उसको और ले पाए।
0: सर, सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, सस्टेनेबल एनर्जी को भी नीदरलैंड जाना जाता है। उस क्षेत्र में ऐसे कुछ उदाहरण जैसे मीडिया में भी प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन लाइफ को शुरू किया है, उसका एक उदाहरण यहाँ से जो हम तब से शोकेस कर सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री जी के मिशन लाइफ है, उसके संबंध में मैं कहूंगा कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है जो कि हम लोग उसको देख सकते हैं और बहुत तरीके से हम लोग उसको अपने आप ला सकते हैं। जैसे अगर आपको उदाहरण दूं साइकिल, तो साइकिल का इस्तेमाल यहाँ पे इतना बढ़िया है, इतना ज्यादा है कि आप दो शहरों के बीच भी, अगर वो 40-50-60 किलोमीटर दूर भी हो, वो आप साइकिल चला के जा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर देखें यहाँ पे जितने इनोवेटिव तरीके से पानी का इस्तेमाल होता है, ये देश जो है सो समुद्र से कई मीटर नीचे होने के बाद भी आप पानी, जब कभी बाढ़ होता या पानी की कभी शॉर्टेज होता या पानी सही स्थिति में नहीं होता, 7 लोगों तक, उन सब की टेक्निक इनके पास है। तो मैं सोचता हूँ कि इन सबको हम अपने मिशन लाइफ में डिफरेंट जो उसके आयाम है, विभिन्न आयाम है, उनसे हम कुछ जोड़ सकते हैं। भारत में हम लोग एक नया बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध हम लोग इसमें स्थापित कर सकते हैं।
0: धन्यवाद सर, आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए बहुत
1: शुक्रिया। बहुत
2: धन्यवाद। In Indian context, how can this partnership benefit our growth priorities? We've set ambitious goals for ourselves. We have a certain window in which we need to leapfrog towards development, and therefore these partnerships with the smaller countries here in the region, but very, very technologically advanced, they can help us majorly in our growth priorities, isn't it?
3: Indeed, and when we look at Sweden, Tina, the partnership that we have with Sweden focuses on technology partnerships, innovations, sustainability, and of course strategic relations. And there have been high level interactions between the two nations. The momentum has increased, of course, both bilaterally as well as multilaterally when we look from whole Europe's perspective. And the focused areas remain green transition, smart cities, AI, and healthcare. When we look at cooperation with and collaboration with India, so there has been a lead IT initiative also for industrial transition and expanding defense industrial collaboration with Sweden. So in the areas of innovation and technology, we are collaborating in digitalization, IoT, AI with Sweden, and there have been ministerial level discussions also in early January 2026, and these discussions focused on science, tech and space exploration and collaboration between the two nations. Then green energy remains a very important area. There's a high focus on climate initiatives. That's where Sweden is also contributing a lot, and that's where India-Sweden Industry Transition Partnership has started. And the key cooperation areas include renewable energy, green hydrogen, and different types of green economic projects. When we look at defense industrial cooperation, in 2019, a security agreement was signed between the two nations. So the collaborations are continuously growing. And Swedish firms like Saab, they have been investing in local manufacturing in India. When we look at economic partnership, strong investment ties with over 250 Swedish companies are now present in India. There's a focus on manufacturing, urban development, and of course, sustainable development in different cities. And diplomatic and strategic ties have already gone to the next level, wherein we can see different regular dialogues on different international issues also, and these collaborations that span different areas, different dimensions. So the focus now remains on elevating ties in the areas of space collaboration, novice technologies, and also city development. And there is a strategic alignment wherein we can see that this relationship is very important for both the countries from a technology partnerships point of view, for making supply chains more resilient, and digital transformation also. So this bilateral relationship between the two nations now has transitioned from traditional diplomatic or political ties to very modern, technology-oriented, futuristic, substantive partnership addressing future-oriented

मीडियम वेव 196.1 मीटर था 1530 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जिसका नाम है रजनीगंधा। तो शुरुआत हो तो श्रोताओं, हमारे पहले गीत की फरमाइश की है शिमला से गोविंदा ने। इन्होंने कहा है कि इनको सुनना है जोशीला फिल्म का किशोर कुमार का गाया ये गीत, जिसके गीतकार हैं साहिल लुधियानवी और संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

अगली गीत की फरमाइश की है प्रिया उपाध्याय ने। इन्होंने सुनना चाहा है किशोर कुमार की आवाज में पड़ोसन फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है राजेंद्र कृष्णन ने और संगीत है आर डी बर्मन का, और ये फरमाइश आई है दिल्ली से।

अभिमान। इस फिल्म में आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत। संगीत है एसडी बर्मन का और इस गाने की फरमाइश आई है आसाम से मुकेश वर्मा की।

श्रुतम, अभी जो आपने गीत सुना उसकी फरमाइश आई थी लखनऊ से। फरमाइश करने वाले थे विशाल जायसवाल, विनीता जायसवाल और आर्या ने। गीत का नाम था, गीत को हमने लिया था फिल्म सफ़र से। आवाज़ से किशोर कुमार की, गीतकार थे इंदिवर और संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। अगली गीत की फरमाइश आई है राजस्थान से, विजय कुमार सोनी ने किया है इस गाने की फरमाइश। मिली फिल्म के इस गीत को लिखा है योगेश ने और संगीतकार हैं एस

रजनीगंधा कार्यक्रम में अब बारी है जिस गाने की, उस गाने की फरमाइश की है प्रत्युष ने, और इन्होंने फरमाइश करी है अलीगढ़ से। फिल्म का नाम है अमर प्रेम, आवाज एक बार फिर से किशोर कुमार की है। आनंद बख्शी के लिखे गीत को सुरों में पिरोया है आर डी बर्मन ने।

रजनीगंधा कार्यक्रम की सबसे अंतिम फरमाइश आई है गुजरात अहमदाबाद से। फरमाइश करने वालों का नाम है दिव्योम, ओमकार और रेखा। इन्होंने इजाज़त फिल्म के उस गीत की फरमाइश की है जिसे गाया है आशा भोसले ने। गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

आशा भोसले के गाय फिल्म इजाजत के इस गीत के साथ ये फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनी गंधा अब यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। शुदा वक्त हुआ है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं शुभ्रा तलेगांवकर का गाया राग सरस्वती में ख्याल गायन।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शुभ्रा तलेगांवकर से राग सरस्वती में ख्याल गायन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं समाचार जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हुर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। हुर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम

0: के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एएमसीए निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे प्रसारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की गतिविधियों को देखने का पूरा अधिकार है और ये सत्र के सीधे प्रसारण के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीआई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय पूर्णिमा सामंत कड़ाकोटी। Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
2: Hormuz ko free, open aur safe banaye rakhna. ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा है।
1: Prime Minister Modi arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Mr. Modi expressed gratitude to the UAE leadership for the warm reception, noting in a social media post that he looked forward to strengthening cooperation across key areas including energy, investment and supply chains. Concluding his UAE visit, the Prime Minister left for the second leg of his tour to Netherlands. Thereafter, Mr. Modi will visit Sweden, Norway and Italy during the six-day tour. Foreign ministers of BRICS have reiterated their commitment to reform and strengthen global governance. In the outcome document, the ministers called for a more equitable, democratic and accountable international and multilateral system. They noted rising global polarization and distrust and urged collective action to